हम स्वागत करते हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा।

आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं। सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। समाचारों के तुरंत बाद सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी जिक्र किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें तथा मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी

टीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरका परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

جدا. किताबें अनगिनत हैं और समय कम है. ज्ञान का रहस्य ये है कि जो जरूरी है उसे लें, उसे लें और उसके अनुसार जीने की कोशिश करें. ये कथन स्वामी विवेकानंद का है. ये था आज का चिंतन और अब भक्ति संगीत.

ढक के अपने शोर से, वरना सिर्फ शस्त्र से ये जंग खेली जाएगी। जागो रे।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस समय सुबह के 6:30 हो रहे हैं। आइए आपको देते हैं जानकारी झरोखा के अंतर्गत आज दिनभर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। इस झरोखा के बाद 6:35 पर सुनिए श्री रामचरितमानस का भाग 192। संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला ऐसी लागी लगन का भाग 7। कलाकार गायक अनूप जलोटा, प्रस्तुति मनीषा जैन की। और कार्यक्रम का समय होगा सुबह और शाम 6:45। भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे सुबह 7 और 7:30 पर। सुनिए युगल गीतों का कार्यक्रम हम है राही प्यार के। सुबह 8 होंगे समाचार और 8:15 पर त्रिवेणी कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी, और यही कार्यक्रम दोपहर 2 पुनः सुना जा सकता है। सुबह 8:30 पर सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम के अंतर्गत नए गीत। आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री फरीदा जलाल पर। इस कार्यक्रम का समय होगा सुबह और रात्रि 9:30। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। रंग तरंग कार्यक्रम का समय होगा दिन में 11 और दोपहर 12। सुनिए हिंदी में समाचार। 12:05 पर होगा यादों की महफिल कार्यक्रम। सुरीला सफर। इस कार्यक्रम में तय कीजिए हमारे साथ सफर दोपहर 1 और आप इस कार्यक्रम में कमेंट्स द्वारा फेसबुक पर जुड़ सकते हैं। दोपहर 2:15 पर होंगे समाचार और 2:30 पर सुनिए सदाबहार नगमे। सखी सहेली कार्यक्रम का समय होगा दोपहर 3 और दोपहर 4 सुनिए सेहतनामा के पिटारा कार्यक्रम के अंतर्गत सेहतनामा। तराने नए पुराने ये कार्यक्रम होगा शाम 5:30 से लेकर 6:30 तक। इसी बीच 6 आप हिंदी में समाचार भी सुन सकेंगे।

शाम 6:30 पर सुनिए झरोखा यानी कि कार्यक्रमों की रूपरेखा। संध्या रंजन ये कार्यक्रम होगा शाम 6:35 पर। जयमाला कार्यक्रम होगा शाम 7:00 और शाम 7:45 पर। स्मृतियों के स्वर में सुनिए सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवीश परमार से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का भाग एक। हवा महल में सुनिए झलकी ये भी खूब रही, लेखन उर्मिला मिश्रा का, निर्देशन चंद्रप्रभा भटनागर का। चित्रलोक कार्यक्रम होगा रात्रि 8:15 और 8:45 पर। सुनिए समाचार संध्या। शीर्षक संगीत का कार्यक्रम आपके लिए ये होगा रात्रि 9:00 और 10:00 सुनिए छाया गीत। आलेख और स्वर जयंत प्रात्रिकर का और प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात्रि 10:30 पर सुनिए कार्यक्रम ढलती जाए रात और रात 11:00 रंग तरंग। ये थी जानकारी आज दिनभर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की और ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। अभी आपने सुना झरोखा। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस का भाग 192।

अवध का राजपद अस्वीकार करते हुए भरत पश्चाताप के आंसुओं में डूब जाते हैं। राज सिंहासन पर बैठने का प्रस्ताव सुनकर उन्हें उस प्राणी का स्मरण हो आता है जिसकी ग्रह दशा विपरीत हो गई हो, जो वायु रोग से पीड़ित हो और ऊपर से जिसको बिच्छू ने डंक मार दिया हो, और इन सब लक्षणों से मुक्ति पाने के लिए जिसे मदिरा पिलाई जा रही हो। ये कैसा उपचार है भला? कैकेयी का पुत्र होने के नाते संसार में जो कुछ उनके योग्य था, विधाता ने उन्हें सब कुछ दे दिया। विडंबना ये है कि दशरथ का पुत्र और श्रीराम का छोटा भाई होने का गौरव उन्हें व्यर्थ ही मिला। उनके मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि कुमाता कैकेयी को छोड़ और कौन कहेगा कि जो कुछ हुआ वो अच्छा ही हुआ है। भरत को ये भय नहीं कि जगत उन्हें बुरा कहेगा, उन्हें अपना परलोक बिगड़ने की भी चिंता नहीं। उनके हृदय में तो बस एक ही आग प्रज्वलित है कि वो श्री राम तथा सीता के दुख का कारण बने। भरत लक्ष्मण के भाग्य की सराहना करते हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग कर श्री राम के चरणों में मन लगाया और इस प्रकार अपना जीवन सार्थक किया।

0: संगीत सरिता में भक्ति भाव पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि हैं जाने माने गायक श्री अनूप जलोटा। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने। आज सुनते हैं इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी।
1: सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, भागम भाग के इस जीवन में संगीत हमारे मन को शांति प्रदान करता है। संगीत में अगर भक्ति की धारा हो तो वो संगीत हमें एक अलौकिक संसार में ले जाता है। भक्ति संगीत पर आधारित श्रृंखला ऐसी लागी लगन, इसकी सातवीं कड़ी के साथ हम उपस्थित हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अनूप जलोटा जी। एक बार फिर से आपका हम स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार सर।
2: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: स्वागत कर रहे हैं तबले पर आशीष झा जी का और हारमोनियम पर अजय जोगलेकर जी का। अनूप जी, आपने अपने भजनों में बहुत सारे राग रागिनियों का प्रयोग किया है, यूं कहें कि घुमावदार सुरों का प्रयोग किया है। अपने गायन में गमक, मीड़, खटका, मुरकी, ये सब कुछ देखने को मिलता है। उसके बावजूद एक आम श्रोता बड़े ध्यान से, तन्मयता से सुन सकता है, समझ लेता है। तो ये जो बारीकी के साथ आप खेल करते हैं, उसके बारे में हमें विस्तृत बताइए।
2: सच तो ये है कि किसी भी गायकी के अंग पर अधिकार प्राप्त करने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती, लेकिन जब वो साधना हो जाए, जब वो सध जाए, तो उसको कुछ इस तरह गाना चाहिए कि लोगों को आसान लगे, लोगों को मुश्किल नहीं लगना चाहिए। लेकिन जब वो गाने की कोशिश करें तो उनको मुश्किल लगे, सुनने में उन्हें आसान लगे, लेकिन जब कोशिश करें तो उनको लगे नहीं, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, फिर ये निकलेगा गले से। तो हमने वही कोशिश की है कि छोटी छोटी मुर्कियां, छोटी छोटी ताने, उसको ऐसे सहज ढंग से हम ले लेते हैं कि सामने वाले को लगता है तो आसान होगा
1: जी,
2: लेकिन जब उसको करने की कोशिश की जाएगी तो पता लगेगा कि आसान नहीं है, इसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। ये हमारे गुरु ने इस तरह सिखाया हमको। अब जैसे एक भजन है, रंग दे चुनरिया
1: जी,
2: मैंने बहुत साल पहले ये भजन आनंद कुमार जी से सुना था, बहुत अच्छे गायक है वो। तो मैंने फिर उसको अपने ढंग से, उस भजन को थोड़ा सा और बढ़ाया, अपने ढंग से गाता हूं। तो सुनने में वो भजन बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब गाने लगो तो लगता है कि आसान नहीं है, इसके अंदर जो काम है
1: जी,
2: उसके लिए

0: वाह, बहुत सुंदर, एकदम मंत्रमुग्ध होकर हम सुन रहे थे। यहाँ पर एक सवाल जहन में आया है, वो ये कि शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत का जैसे भेद यहाँ पर मिट जाता है, आप शास्त्रीय संगीत के साथ साथ किस तरह से सुगम संगीत तैयार करते हैं, हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: शास्त्रीय संगीत मैंने सीखा और सबसे पहले शास्त्रीय संगीत ही गाना शुरू किया मंच पे। फिर मुझे लगा कि यदि मैं ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहता हूं तो माध्यम इसी शास्त्रीय को सुगम करना होगा, और वही मैंने किया, उसी को सुगम किया है। है ये शास्त्रीय है लेकिन इसको एक सुगमता दी है, और उस माध्यम से ये ऐसे लोगों तक पहुंच गया जो शास्त्रीय नहीं सुनते थे और उनकी रुचि शास्त्रीय संगीत की ओर बढ़ गई, ये मैंने कोशिश की है।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अनूप जी, फिर से वही वक्त आ गया है जो हमें नहीं पसंद है अनुमति लेने का वक्त आ गया है, तो आज की इस कड़ी से श्रोताओं से अनुमति लेते हैं और कहते हैं नमस्कार। कल अगली कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित होंगे, तो हमारे श्रोताओं को सुनते रहना है ये श्रृंखला संगीत सरिता कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर।
2: ऐसी लागी लगन, आप सुन रहे हैं जानी मानी गायक अनूप जलूटा से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित हमारी ये श्रृंखला। हारमोनियम पर संगत की है अजय जुगलेकर ने, तबले पर संगत आशीष झा की है। कल सुनिए इस श्रृंखला की अगली कड़ी।
3: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं प्यार की राहें इस फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे मुकेश ने गाया है। कानू घोष का लिखा ये गीत है और संगीत है प्रेम धवन का।

0: तलत महमूद और सुधा मल्होत्रा की आवाज में अभी आपने सुना ये गीत फिल्म सिम सिम मर्जीना से। प्रेम धवन की रचना थी और एआर कुरैशी ने इसे संगीतबद्ध किया था।
1: सुनिए
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
0: भूले बिसरे गीत ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए अब आपको सुनवाते हैं मुबारक बेगम की आवाज में केदार शर्मा का लिखा ये गीत जिसकी लय बनाई है स्नेहल भटकर ने। फिल्म का नाम हमारी याद आएगी।

छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए सुनिए राही फिल्म का गीत, आवाज लता मंगेशकर की। प्रेम धवन के बोल हैं जिस पर सुरों को सजाया गया है अनिल बिस्वास द्वारा।

श्रोताओं, अगला गीत आपको सुनवाएंगे मगर आज सुबह 9:30 बजे आज के फनकार कार्यक्रम में सुनना ना भूलिएगा कलाकार अदाकार फरीदा जलाल को। कार्यक्रम है आज के फनकार और समय सुबह 9:30 बजे। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं लाडली फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को संगीत से सजाया है अनिल बिस्वास ने। गीत की रचना की है बहजाद लखनवी ने।

अभी हमारे श्रोता विविध भारती के कार्यक्रमों को सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:30 हुए हैं। लेकर हाजिर हैं अपना दैनिक कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज कार्यक्रम नमस्ते रोहतास के साथ है आपका रेडियो दोस्त विनोद। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं रोजाना की तरह इस सुविचार से। गौतम बुद्ध का कथन है, अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन की वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। गौतम बुद्ध।

18 मई की महत्वपूर्ण घटनाओं पर नजर डालें तो आज ही के दिन 2006 को नेपाल नरेश को कर के दायरे में लाया गया था। आज ही के दिन 2008 को पार्श्व गायक नितिन मुकेश को मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय लता मंगेशकर अलंकरण से सम्मानित किया था। और आज ही के दिन 2008 को भारतीय मूल के लेखक इंदिरा सिन्हा को उनके किताब एनिमल पीपल हेतु कॉमनवेल्थ सम्मान प्रदान किया गया था। नजर डालते हैं आज जन्मे व्यक्तियों पर जिनका जन्म आज के दिन इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। इसमें नाम आ रहा है 1682 को जन्मे शाहू जी महाराज का, जो छत्रपति शिवाजी का पौत्र तथा शंभू जी और येशुबाई का पुत्र थे। उनका जन्म आज ही के दिन 1682 को हुआ था, छत्रपति महाराज शाहू जी का। और जन्म हुआ था आज ही के दिन 1914 को एस जगन्नाथन का, जो भारतीय रिजर्व बैंक के 10वें गवर्नर रहे। उनका जन्म आज ही के दिन 1914 को हुआ था। जन्म हुआ था आज ही के दिन 1981 को रामलिंगन चेट्टियार का, जो एक वकील और संविधान सभा के सदस्य रहे। उनका भी जन्म आज ही के दिन 1881 को हुआ था। अब हम नजर डालेंगे उन व्यक्तियों पर जो आज के दिन इस दुनिया को छोड़ चले गए, यानी अलविदा कह गए। आज निधन हुआ था 2017 को रीमा लागू का, जो हिंदी फिल्मों की शानदार अभिनेत्री रही। उनका निधन आज ही के दिन 2017 को हुआ था। निधन हुआ था प्रसिद्ध धार्मिक गुरु जय गुरुदेव का 2012 में आज ही के दिन। और प्रसिद्ध भारतीय योगाचार्य रहे पंचानन महेश्वरी का निधन आज ही के दिन सन 1966 को हुआ था। और आज ही के दिन निधन हुआ था 1934 को मुकुंद दास का, जो भारतीय बंगला भाषा के कवि, गीतकार, संगीतकार और देशभक्त रहे। उनका भी निधन आज ही के दिन 1934 को हुआ था।

ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 18 मई वर्ष का 138वां दिन, लीप वर्ष में यह 139वां दिन है। साल में अभी और 227 दिन शेष हैं।

श्रोताओं, आज के इतिहास के आखिर में नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों पर। तो आज हम मना रहे हैं पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस, जो 1974 में आज ही के दिन हुआ था, उसी की याद में आज हम मना रहे हैं पोखरण परमाणु विस्फोट दिवस। और हम साथ में मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। श्रोताओं, कार्यक्रम को गति देने से पहले सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत श्रेया घोषाल की आवाज में। रश्मि बिरा के लिखे गीत को जीत गांगुली ने संगीत दिया है और फिल्म है सनक।

अभी आपने इस खूबसूरत गीत को सुना श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म सनक से। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए नजर डालते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्थानांतरण प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब बिहार के राजस्व कर्मचारी घर बैठे ऑनलाइन माध्यम से स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था का लाभ रोहतास जिले के राजस्व कर्मियों को भी मिलेगा। विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार कर्मचारी 13 से 31 मई तक कर्मचारी स्थानांतरण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिले में भीषण गर्मी और लू ने लोगों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। रविवार को जिला का अधिकतम तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह से ही तेज धूप और गर्म पछुआ हवा के कारण लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया। दोपहर होते होते सड़कों पर सन्नाटा पसर गया और बाजारों में भी सामान्य दिनों की तुलना में कम भीड़ दिखाई दी। ग्रामीण उपभोक्ताओं को बिजली संबंधित समस्याओं को त्वरित एवं प्रभावी समाधान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्युत विभाग द्वारा 19 मई यानी मंगलवार से पंचायतवार बिजली समाधान सहयोग शिविर की शुरुआत की जा रही है। यह विशेष अभियान विद्युत आपूर्ति प्रमंडल भवना अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में आयोजित किया जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को अपने गांव के निकट ही विभागीय सेवाओं का लाभ मिल सके। बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में प्रश्न पत्र 4 सेट में मिलेंगे। आगामी

7 जून को आयोजित होने जा रही है बिहार बीएड परीक्षा को लेकर यह निर्देश जारी किया गया है। परीक्षा सुबह 11 बजे से 1 बजे तक होगी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में 10:30 के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा। परीक्षार्थियों को जिस नंबर का ओएमआर सीट मिलेगा, क्वेश्चन बुकलेट भी उसी नंबर का होगा। परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले केंद्र को प्रश्न पत्र का सील पैकेट उपलब्ध कराया जाएगा।

बहपुरा गांव में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। विश्व रक्तचाप दिवस व आयोजित विशेष कार्यक्रम में जागरूकता अभियान भी चलाई गई।

रोहतास जिला एथलेटिक्स संघ के तत्वाधान में जिला मुख्यालय सासाराम के एसपी जैन महाविद्यालय में के मैदान में तीन दिनों से चल रहे हैं जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन रविवार को पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हुआ। प्रतियोगिता का ओवरऑल चैंपियन द डीपीएस विक्रमगंज बना 83 अंक लेकर पूरे प्रतियोगिता का चैंपियनशिप का खिताब दिया गया। रोहतास जिला एथलेटिक्स संघ के सचिव विनय कृष्ण ने बताया कि प्रतियोगिता का उप विजेता बनने का गौरव उच्च विद्यालय कोचोश को 76 अंक के साथ प्राप्त हुआ, जबकि तीसरा स्थान उच्च विद्यालय सेमरी शिवसागर को दिया गया।

भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार एवं जनजातीय समुदायों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जनजातीय आदि न्याय महाअभियान अंतर्गत धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 कार्यक्रम का आयोजन रोहतास जिले में किया जाएगा। यह अभियान जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले की भावना पर आधारित है। इसी के साथ सुन लेते हैं एक और गाना कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में। इंदिवर के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत है, फिल्म है जुर्म।

अभी आपने जुर्म फिल्म से इस गाने को सुना, कुमार सानू और साधना सरगम के आवाज में। बोल इंदिवर के थे, राजेश रोशन का संगीत था। श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में अब हम नजर डालेंगे आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। लगभग सभी अखबारों ने अपने अपने तरीके से अलग अलग खबरों को प्राथमिकता देते हुए पहले पन्ने पर जगह दिया है। हिन्दुस्तान लिखता है, अदाणी बिहार में 60,000 करोड़ निवेश को तैयार। बालू पत्थर ओवरलोडिंग पर 5 लाख का जुर्माना, हिंदुस्तान के हवाले से खबरें हैं। अगली खबर दैनिक जागरण से लेते हैं। दैनिक जागरण लिखता है, नेचर सफारी का रख रखाव और पर्यटकों की सुविधाओं का रखे ख्याल, ये कथन है बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी का। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ब्रह्मा कुंड परिसर में रविवार को राजगीर में 1 महीने तक चलने वाले प्रसिद्ध पुरुषोत्तम मास मेले का शुभारंभ किया। सीएम पूरे विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चार, विशेष पूजा अर्चना व ध्वजारोहण कर इस विराट मेले का विधिवत उद्घाटन किया। दैनिक जागरण के हवाले से यह खबर है कि लिखता है अपने तरीके से कि अदाणी समूह बिहार के अगले 2-3 साल में 50 से 60 हजार करोड़ का निवेश करेगा। अगली खबर लेते हैं प्रभात खबर से। प्रभात खबर लिखता है, मलमास मेले में

सुविधाओं का ख्याल रखें सम्राट चौधरी। शिक्षक स्कूल से 34 मीटर के दायरे में ही बना सकेंगे हाजिरी, ये खबर है प्रभात खबर लिखता है। और पहले पन्ने पर जगह देते हुए लिखा है, विभाग की ओर से संचालित ई शिक्षा कोष ऐप के शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने को लेकर नया नियम लागू किया गया है। अब शिक्षकों को स्कूल परिसर के 34 मीटर के दायरे में के भीतर रहकर ही अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। इससे पहले उपस्थिति दर्ज करने के लिए 500 मीटर तक का दायरा निर्धारित था। अगली खबर है दैनिक भास्कर से। दैनिक भास्कर लिखता है, 12वीं दोबारा कॉपी जांच वाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटा देंगे। सीबीएसई 12वीं के नतीजों में जिन छात्रों को लगता है कि उन्हें ज्यादा नंबर आने चाहिए थे पर कम आए हैं तो वो पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करें। सीबीएसई बोर्ड ने छात्रों के विरोध के बाद पुनर्मूल्यांकन फीस में भी बड़ी कटौती कर दी है। अब स्कैन कॉपी के लिए 700 की जगह 100 रुपये ही देने होंगे। यही नहीं, प्रति सवाल दोबारा जांचवाने के लिए अब 100 की जगह 25 रुपये ही लगेंगे। शिक्षा सचिव संजय कुमार ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये घोषणा की। श्रद्धालु यहां से अच्छी यादें लेकर जाएं, यह हमारी जिम्मेदारी, सम्राट चौधरी दैनिक भास्कर के हवाले से खबर है। और पहले पन्ने पर सचित्र छापा है, राजगीर में हर 3 साल पर लगने वाला पुरुषोत्तम मास मलमास मेला रविवार को शुरू हो गया। ब्रह्मकुंड परिसर में सीएम सम्राट चौधरी ने यज्ञशाला के पास ध्वजारोहण कर मेले का उद्घाटन किया। सीएम ने पूजा अर्चना की, महाआरती में भी हिस्सा लिया। नजर डालते हैं कुछ मौसम समाचारों पर। पटना समेत पूरे बिहार में भीषण गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग के अनुसार पटना में अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि 20 मई से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और पटना समेत पूरे बिहार में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार मौसम सेवा केंद्र के अनुसार पटना, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, औरंगाबाद, अरवल, गया, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर और जमुई समेत कई जिलों में अगले 2 दिनों तक तापमान 38 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई है।

इन्हीं सारी खबरों के साथ दीजिए इजाजत प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास से अपने रेडियो दोस्त विनोद को नमस्कार।

नमस्कार श्रोता, आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से दैनिक कार्यक्रम नमस्ते रोहतास सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। अगला प्रसारण समाचार प्रभात सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
1: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक की संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
2: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के

0: प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की।
4: कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए यूडीएफ कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजय जयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
5: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।
6: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम

0: विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल V.A. वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट UG प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने HD देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और AI में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। होर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमरीका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जंचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। NDA सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृहमंत्री का ये बयान हिन्दुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृहमंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और NDA की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नव भारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्य बल के बेहतर इस्तेमाल

0: माल पर ध्यान देने होंगे।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8:15 हुए हैं। सुनते हैं एक देशभक्ति संगीत। इस गीत को हमने लिया है फिल्म गद्दर से। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल हैं, उत्तम सिंह का संगीत है। तो आइए सुनते हैं देशभक्ति संगीत फिल्म गद्दर से।

अभी आपने एक देशभक्ति संगीत सुना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में, फिल्म था गदर। श्रोताओं, अब सुबह के 8:20 हुए हैं। अब हम सुनेंगे पत्रों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी। कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं रिफ्यूजी फिल्म का एक गाना अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को अनु मलिक ने संगीत दिया है, सुनना चाहा है आप सबों ने। छत्रपति संभाजी नगर से आप हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, आप सबों ने सुनना चाहा है रिफ्यूजी फिल्म का ये गाना।

इसी गाने के लिए एक और पत्र आया है इंदिरा बिहार रायगढ़ से। वसीम अकरम नूरजहां, डब्लू अकरम नूरजहां, वली अकरम नूरजहां, उल्लाह अकरम नूरजहां, राजनंद गांव से आप हैं याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा और इरफान आसमा। जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिबा तिवारी, आप सबों ने भी रिफ्यूजी फिल्म का इसी गीत के लिए ख्वाहिशमंद हैं।

कार्यक्रम पसंद आपकी की अगली पेशकश आशा भोसले और अनवर की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे गीत को अनु मलिक ने संगीत दिया है और फिल्म है सोहनी महिवाल। सुनना चाहा है आप सबों ने। आप श्रोता है डोंगर गांव जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से। राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये, ये श्रोता है इसी गाने के ख्वाहिशमंद। सरगुजा मैन पाठ से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा। बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम। जील रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार और उल्लाह आसमा बेलदार। आप सबों ने सुनना चाहे सोहनी महिवाल फिल्म का ये गाना आशा भोसले और अनवर के आवाजों में।

0: कार्यक्रम की अगली पेशकश फिल्म हंसते जख्म से मोहम्मद रफी की आवाज में। कैफी आजमी के बोल हैं, मदन मोहन का संगीत है, फिल्म है हंसते जख्म। सुनना चाहे आप सब उन्हें। आप हैं मोहल्ला लोहार की गुड्डू, मोहम्मद चांद अंसारी, मोहम्मद सद्दाम अंसारी, मोहम्मद नौशाद आलम, मोहम्मद अंसारी, रिजवान अंसारी और दिल नवाज अंसारी। ये श्रोता हैं विवेक कुमार रुंटा, रितेश कुमार पंडित, मोहल्ला गांधी नगर सासाराम से, लोकेश कुमार साहू, सासाराम से, और जमाल अंसारी का। आप सबने सुनना चाहा है हंसते जख्म का ये गीत।
1: आएगी तो आएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी।

कार्यक्रम के आखिर में सुन लेते हैं एक और गीत फिल्म सफर से। इंदिवर के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है, फिल्म है सफर। कोल सिटी बरका काना से इस गाने की ख्वाहिशमंद श्रोता है अफजल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निपी साहनी और मोहम्मद अफजल इब्राहिमी। जमशेदपुर से आप हैं डॉक्टर तस्नीम कौशल, डॉक्टर ईशिता साहनी, डॉक्टर प्रियंका मोदी, डॉक्टर सोनम वली और मोहम्मद अफजल मलिक। ये श्रोता है लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आदिबा कौर। बिहारी कलम वली अंसारी और फर्जी वली अंसारी। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम के आखिर में अपने मनपसंद का यह गीत किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म सफर से।

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: फिल्म सफर के इसी गीत के साथ अब संपन्न होते हैं पत्र आधारित कार्यक्रम पसंद आपकी। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM मैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8:45 हुए हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: और इस गीत के बाद

is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश से आज से भोजपुरी समाचार के प्रसारण की होगी शुरुआत। राज्य के विभिन्न केंद्रों से शाम 6:05 से समाचारों का होगा प्रसारण। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए कल से पंचायत स्तर पर शुरू होगा राज्यव्यापी सहयोग शिविर। राज्य में नई खनिज संशोधन नियमावली लागू हुई, बालू पत्थर की ओवरलोडिंग पर 5 लाख रुपए तक का लगेगा जुर्माना। और पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में, मौसम विभाग ने आज बक्सर, पूर्वी चंपारण और शेखपुरा जिले में लू की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। आकाशवाणी पटना का प्रादेशिक समाचार एकांश आज से भोजपुरी समाचार का प्रसारण शुरू कर रहा है। भोजपुरी समाचार आकाशवाणी पटना समेत राज्य के विभिन्न केंद्रों से शाम 6:05 से प्रसारित किए जाएंगे। बुलेटिन की शुरुआत के अवसर पर वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे।
1: आकाशवाणी पटना रोहा

0: देखे खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभे खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: भोजपुरी समाचार बुलेटिन को न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुना जा सकता है। इसके अलावा ये समाचार प्रादेशिक समाचार एकांश के यूट्यूब चैनल AIR News_Patna पर भी उपलब्ध होंगे। गौरतलब है कि आकाशवाणी पटना पहले से ही हिंदी, उर्दू और मैथिली भाषाओं में प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों का प्रसारण कर रहा है। प्रदेश में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए कल से पंचायत स्तर पर राज्यव्यापी सहयोग शिविर की शुरुआत हो रही है। 7 निश्चय 3 के सबका सम्मान जीवन आसान विजन के तहत इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं और प्रशासनिक तंत्र को सीधे जनता के द्वार तक पहुंचाना है। ये शिविर प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित किए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: सहयोग शिविरों में जिलाधिकारी, अनुमंडलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी खुद मौजूद रहकर स्थानीय स्तर पर मामलों का निपटारा करेंगे। इन शिविरों के माध्यम से राशन, पेंशन, आवास, मनरेगा, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि विवाद, दाखिल खारिज, सीमांकन, जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सरकार ने निर्देश दिया है कि शिविर में प्राप्त शिकायतों का समाधान अधिकतम 30 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। ऐसा नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर से भी इन शिकायतों की सीधी निगरानी की जाएगी। जनता की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1100 और सहयोग पोर्टल भी क्रियाशील कर दिया गया है। समाचार कक्ष से मैं सविता पारीक।
1: राज्य में बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2026 प्रभावी हो गई है। इसके तहत बालू पत्थर के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: नियमावली के तहत पट्टाधारी द्वारा वाहन पर वैध चालान से अधिक मात्रा में बालू या पत्थर लादने की स्थिति में अब पहली बार ऐसे प्रत्येक वाहन पर 5,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 1 महीने में जुर्माना का भुगतान नहीं करने या 1 से अधिक बार उल्लंघन होने पर खनन पट्टा को 3 माह तक के लिए निलंबित भी किया जा सकता है। इसके बाद भी उल्लंघन बरकरार रहने पर जिलाधिकारी को अस्थायी रूप से खनन पट्टा रद्द करने का अधिकार दिया गया है। नियमावली के प्रावधान के तहत लघु खनिज का परिवहन केवल विशिष्ट रंग से रंगे और ढके हुए वाहनों से ही करना होगा। बिना ढके लघु खनिज के परिवहन पर अब प्रति ट्रैक्टर 5,000 जबकि अन्य बड़े वाहन के लिए 25,000 जुर्माना वसूला जाएगा। खनिज परिवहन के दौरान वाहन में लगे GPS डिवाइस से छेड़छाड़ करने या उसे बंद करने पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। आशीष रंजन, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम से 80 अग्निशमन वाहनों और AI आधारित आधुनिक अग्निशमन नियंत्रण कक्ष का लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जलाशयों के आसपास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत इको टूरिज्म की सुविधा विकसित करने के निर्देश दिए हैं। पटना में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। श्री चौधरी ने पर्यटन के विकास के अन्य संभावित क्षेत्रों पर भी अधिकारियों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए। पटना के लोक भवन में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत गोवा, महाराष्ट्र और सिक्किम का स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए तीनों राज्यों के निवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सभी भारतीयों को प्रत्येक राज्य के विशेषताओं को जानना जरूरी है, इससे हम अपने देश को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। प्रदेश में वर्ष 2025 के दौरान शराब पीने के मामलों में 1,28,470 लोगों की गिरफ्तारी हुई। इनमें पटना जिले में सबसे अधिक 15,675 जबकि शिवहर में सबसे कम 1

0: 1078 लोग गिरफ्तार हुए। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री मदन सहनी ने बताया कि शराब बिक्री और सेवन के मामले में 941,857 छापेमारी हुई, वहीं 107,851 केस दर्ज हुए। बीते वर्ष 47,06,391 लीटर शराब जब्त हुई। श्री सहनी ने बताया कि अवैध शराब कारोबार से जुड़े 10,428 वाहन जब्त किए गए। प्रदेश में गुमशुदा या लापता बच्चों का पूरा विवरण मिशन वात्सल्य पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के प्रावधानों को थाना स्तर पर लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय के स्तर से इससे संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया जारी की गई है। इसके तहत अगर कोई बच्चा मिल जाता है तो इसकी जानकारी भी इस पोर्टल पर दर्ज कराते हुए डाटाबेस को अपडेट रखना है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_पटना को फॉलो कर सकते हैं। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अधिकतर स्थानों पर तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। विभाग ने आज बक्सर, पूर्वी चंपारण और शेखपुरा जिले में लू की चेतावनी जारी की है।
2: दिनांक 18 मई राज्य के बक्सर, पूर्वी चंपारण एवं शेखपुरा जिलों में उष्ण लहर चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास का डेहरी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बक्सर का अधिकतम तापमान 42.8, कैमूर का 42.6 और शेखपुरा का 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं औरंगाबाद का अधिकतम तापमान 41.7 तथा गया, पटना, जीरादेई और जहानाबाद का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। भीषण गर्मी को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने 8वीं तक की कक्षाओं को दिन के 11 बजे तक ही संचालित करने का आदेश जारी किया है। जिले के सभी सरकारी, निजी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र इसके दायरे में आएंगे। यह आदेश 21 मई तक लागू रहेगा। अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने कहा है कि जल्द ही चौकबनी से देवघर के लिए नई रेल सेवा की शुरुआत होगी। फारबिसगंज रेलवे स्टेशन पर अमृतसर न्यू जलपाईगुड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के अवसर पर उन्होंने कहा कि इसके साथ ही चौकबनी कटिहार मेमू सेवा की भी शुरुआत होगी। ई शिक्षा कोष ऐप पर अब शिक्षकों को स्कूल परिसर से 34 मीटर के दायरे में ही रहकर अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। पहले यह दायरा 500 मीटर निर्धारित था। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बिहार और झारखंड को जोड़ने वाले मनिहारी साहेबगंज गंगा नदी सेतु निर्माण कार्य इस वर्ष दिसंबर महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। कटिहार के जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है।
3: मनिहारी साहबगंज जो पुल बन रहा है वो दोनों राज्यों के बीच की कनेक्टिविटी के लिए एक महत्वपूर्ण अवयव है और इसका हम लोग रेगुलर रिव्यू भी करते रहते हैं। पीडी साहबगंज के द्वारा इसमें बताया भी गया है रिव्यू में कि इस साल के अंत तक दिसंबर 2026 तक ये पुल का उनका पूरा करने का प्लान है और उसी हिसाब से कार्य योजना बना करके वो लोग काम कर रहे हैं। इसकी हम लोग समीक्षा साप्ताहिक रूप से पीएमजी की बैठक में करते रहते हैं और उम्मीद है कि ये पुल दिसंबर तक बन जाएगा तो लोगों को कनेक्टिविटी में आसानी होगी।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की परीक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन और उत्तर पुस्तिका सत्यापन शुल्क में कमी की है। सीबीएसई ने शुल्क को 700 रूपये से घटाकर 100 रूपये करने की घोषणा की है। स्कूल शिक्षा सचिव संजय कुमार ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन में यदि किसी छात्र

0: छात्र के अंक बढ़ते हैं तो उसे शुल्क वापस कर दिया जाएगा। बकरीद का त्योहार 28 मई को मनाया जाएगा। पटना स्थित इमारत-ए-शरिया और मरकजी मजलिस रुयते हिलाल खान का मुजीबिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल बकरीद का चांद नजर नहीं आया, इसके चलते 19 मई को जिलहिज्जा की पहली तारीख होगी। सासाराम रेलवे स्टेशन पर खड़ी भभुआ सासाराम पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन की एक बोगी में आज सुबह आग लग गई। आग लगते ही यात्रियों के बीच भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जनरल बोगी D3 में चलने की गंध महसूस हुई, इसके बाद बोगी के भीतर धुआं पड़ने लगा। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गया जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र के गंभीरा गांव के पास 12 चट्टी विधायक ज्योति देवी के साथ असामाजिक तत्वों ने दुर्व्यवहार किया, साथ ही उनके सुरक्षाकर्मियों से हाथापाई भी की गई। विधायक की शिकायत पर मोहनपुर थाने में 7 नामजद सहित 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र के चमनपुर गांव में कनकई नदी में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। वहीं सहरसा जिले के नवहट्टा में कोसी नदी में नहाने के दौरान 2 किशोरियों की डूबने से मौत की खबर है। सीतामढ़ी जिले के नानपुर थाना क्षेत्र के मोहनी महुआगाछी में अपराधियों ने एक CSP संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी और रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। पश्चिम चंपारण जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक वाहन से 1,32,00,000 रुपए मूल्य का गांजा बरामद किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, राजगीर में एक माह तक चलने वाले मेले का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन, मलमास मेले में श्रद्धालुओं को सुरक्षा सुविधा मिलेगी। दैनिक जागरण लिखता है, अदानी समूह बिहार में अगले 2 से 3 साल में 50 से 60 हजार करोड़ का निवेश करेगा। प्रभात खबर ने लिखा है, बेगूसराय में देशव्यापी साइबर ठगी का खुलासा, एक अकेले खाते के खिलाफ 205 शिकायतें। दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, रेडीमेड गारमेंट हब बना पूर्वी चंपारण, कपड़ों की 493 फैक्ट्रियों ने बदली चंपारण की तस्वीर। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, देश के 8 राज्य भीषण गर्मी की चपेट में, पारा 40 डिग्री के पार। आज अखबार लिखता है, सूबे के सभी 534 मॉडल स्कूल 20 मई से चलेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश से आज से भोजपुरी समाचार के प्रसारण की होगी शुरुआत। राज्य के विभिन्न केंद्रों से शाम 6:05 से समाचारों का होगा प्रसारण। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए कल से पंचायत स्तर पर शुरू होगा राज्यव्यापी सहयोग शिविर। राज्य में नई खनिज संशोधन नियमावली लागू हुई, बालू पत्थर की ओवरलोडिंग पर 5,00,000 रुपए तक का लगेगा जुर्माना। और पूरा प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में, मौसम विभाग ने आज बक्सर, पूर्वी चंपारण और शेखपुरा जिले में लू की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: उपभोक्ता आयोगों में शिकायतों की ई फाइलिंग करना हुआ और भी आसान।
2: घर बैठे ही ई जागृति पोर्टल www.e-jagriti.gov.in पर कहीं से भी खुद से रजिस्टर कर अपना केस दर्ज कर सकते हैं। 5,00,000 रुपए तक के मामलों पर कोई शुल्क नहीं।
1: ई जागृति पोर्टल उपभोक्ताओं का अपना डिजिटल मंच, शिकायत दर्ज करें और त्वरित समाधान पाएं।
2: जागो ग्राहक जागो। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में जारी।

non-division. अभी हमारे श्रोता आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:06 हुए हैं। जान लेते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी सुबह के 9:10 पर हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका सुनेंगे। आज के फनकार विविध भारती से सुनेंगे सुबह 9:30 पर, और हिंदी समाचार सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुबह 10:00। सुबह 10:05 पर घूमता माइक्रोफोन सुनेंगे कार्यक्रम। लोक माधुरी भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम सुनेंगे सुबह 10:30 पर, और भोजपुरी एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रसधार सुन पाएंगे सुबह 10:45 पर। पूर्वाहन के 11:00 चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र विविध भारती के कार्यक्रम सुन पाएंगे, और पुनः हाजिर होंगे आप सबों के सेवा में शाम 5:10 पर कार्यक्रम वंदन के साथ। कार्यक्रम घर आंगन महिला सखियों का कार्यक्रम सुन पाएंगे शाम 5:30 पर, और ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर सुनेंगे शाम 6:00। शाम 6:30 पर सांझ गीत का कार्यक्रम सुनेंगे कुछ भोजपुरी फिल्म संगीत।

आयोजित कार्यक्रम बुनियाद सुनेंगे शाम 7 बजे और सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास सुन पाएंगे शाम 7:15 पर। प्रादेशिक समाचारों का समय होगा आकाशवाणी के पटना केंद्र से शाम 7:25 पर और शाम 7:50 पर सुनेंगे ई मनपसंद ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम और शाम 8:45 पर पुनः चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र जहां से सुनेंगे समाचार संध्या। भोजपुरी लोक गीतों का कार्यक्रम लोकधारा का समय होगा रात्रि 9 बजे से और हमद सुन पाएंगे वंदगी में शाम 9:15 पर। आज के फनकार विविध भारती से रिले किए जाएंगे रात्रि 9:30 पर और हिंदी एल्बम सॉन्ग्स कार्यक्रम रसरंग सुनेंगे रात्रि 10 बजे से। कार्यक्रम चित्रपट तराने का समय होगा रात्रि 10:30 पर और अगले दिन का कार्यक्रम प्रसारण सुनेंगे रात्रि 10:55 पर। रात्रि 11 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार, 11:05 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अंग्रेजी समाचार। सभा का समापन रात्रि 11:10 पर।

अभी आपने सुना आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:10 हुए हैं। सुनते हैं हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका। कार्यक्रम गीत मालिका का पहला गाना सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में, समीर के बोल हैं, नदीम श्रवण का संगीत है, फिल्म है धड़कन।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आपने सुना कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में खूबसूरत सा गीत जीत फिल्म से। बोल समीर का था, नदीम शोहन का संगीत था। कार्यक्रम के आखिर में सुन लेते हैं एक और गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गुलजार के बोल हैं, आरडी बर्मन का संगीत है और फिल्म है आंधी।

आसाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:30 हुए हैं। अगला प्रसारण विविध भारती से आज के फनकार। इस प्रसारण के तुरंत बाद सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार।

0: पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी
1: गोल्डी, ये क्या ज्यादती है भाई। भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर, बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
2: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

वो जो बहुत खूबसूरत हैं, चुलबुली हैं, भोली हैं, भोले भोले चेहरे से बड़ी सहजता से संवाद बोल देती हैं, जो कभी सहनायिका थी अभिनेता राजेश खन्ना की। प्यारी भोली मासूम आवाज में बोलने वाली फनकार, आज उन्हीं पर केंद्रित है हमारा ये कार्यक्रम। इनका नाम है फरीदा जलाल।

0: प्यार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: अगर आपने फिल्म आराधना देखी होगी तो इस दृश्य को जरूर देखा होगा। इनके साथ अभिनेता थे राजेश खन्ना। इस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था। फरीदा जलाल का फिल्मी कैरियर सन 1967 से फिल्म तकदीर से शुरू हुआ।

1949 में फरीदा जलाल का जन्म हुआ था नई दिल्ली में। शुरू की युवा आयु में जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो इन्होंने कई फिल्मों में अलग अलग भूमिकाएं की, सखी के रूप में, बहन के रूप में, और ये भूमिकाएं सराही गईं। फिल्म तकदीर में गोपाल की छोटी लड़की की भूमिका निभाई।

सन 1973 में एक फिल्म आई थी लोफर। इस फिल्म में अभिनेत्री फरीदा जलाल ने रूपा की भूमिका निभाई थी, जो कि गोपीनाथ की बेटी है। इसी फिल्म का गाना सुनिए।

0: चर्चित फिल्में बहारों की मंजिल 1968 में, महल 1969 में, आराधना पुरस्कार, नया रास्ता 1970 में, गोपी देवी, पारस में बेला देवी नाम से भूमिका को जीवंत किया और इस फिल्म पारस के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का इन्हें अवार्ड दिया गया। एक और पुरस्कार इन्हें दिया गया BFJA अवार्ड। इस फिल्म में अभिनेता संजीव कुमार की बहन की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाई थी। आइए सुनते हैं पारस फिल्म का गाना।
1: अरे या या या या या या या।

1968 में महल, 1969 में आराधना पुरस्कार नया रास्ता, 1970 में गोपी देवी, पारस में बेला देवी नाम से भूमिका को जीवंत किया और इस फिल्म पारस के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का इन्हें अवार्ड दिया गया। एक और पुरस्कार इन्हें दिया गया BFJA अवार्ड। इस फिल्म में अभिनेता संजीव कुमार की बहन की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाई थी। आइए सुनते हैं पारस फिल्म का गाना।

0: करना आपके ना जीते रहो जुगनी कहती है बासमती की जुगनी कहती है बासमती की।
1: सन 1971 में अमर प्रेम प्यार की कहानी जिंदगी जिंदगी रिवाज बुनियाद हीरा बॉबी जिसमें इन्होंने चरित्र अभिनेत्री के रूप में काम किया जिसे फरीदा जलाल ने बहुत ही सहजता से निभाया। बॉबी फिल्म में एक ऐसी धनी लड़की की भूमिका निभाई जो मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। उस अमीर लड़की को हीरो पसंद इसलिए करता है क्योंकि उसके पिताजी चाहते हैं कि इस अमीर लड़की से उनका बेटा शादी कर ले। फिल्म पारस के बाद इन्हें एक और पुरस्कार दिया गया फिल्म मजबूर के लिए, यानी कि मजबूर फिल्म की कहानी सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखा था। अभिनेता अमिताभ बच्चन इसमें हीरो थे। इस फिल्म में फरीदा जलाल ने उनकी बहन की भूमिका निभाई थी। बहुत ही बेबसी और मजबूरी का अभिनय किया था फरीदा जलाल ने जो बहुत लाजवाब था।

फरीदा जलाल ने 40 वर्ष की उम्र तक सिने जगत में अभिनय किया। 1983 और 1990 के बीच में फिल्मों से ब्रेक लिया और बेंगलोर जाकर शिफ्ट हो गईं। 1990 वर्ष के दौरान फरीदा जलाल ने अपना फिल्मी करियर फिर से शुरू किया और कई मेजर हिट फिल्म में चरित्र अभिनेत्री का किरदार निभाया। 1991 में हिना फिल्म में बीबी गुल की भूमिका निभाई और इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड से नवाजा गया। 1991 के बाद भी कई फिल्में आईं जिसमें इन्होंने तरह तरह की चरित्र अभिनेत्री की भूमिका निभाई। फिल्म पायल, बेखुदी, कल की आवाज, दिल आशना है। 1993 में गर्दिश। सन 1994 में फिल्म आई थी मम्मो, जिसमें फरीदा जलाल ने महमूदा बेगम अनवर अली उर्फ मम्मो का किरदार निभाया था। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, बहुत ही दमदार अभिनय था। इस फिल्म के लिए फरीदा जलाल को 2 अवार्ड मिले, एक तो फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए और दूसरा अवार्ड बंगाल की जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया। सन 1995 में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म रिलीज हुई, जिसमें लाजवंती यानी लाजों की भूमिका फरीदा जलाल निभाया और इन्हें अवार्ड दिया गया फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का।

सन 2000 में हे राम फिल्म में कस्तूरबा गांधी की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाई। इस भूमिका को बहुत सराहा गया। यही फिल्म हिंदी और तमिल में साथ साथ बनाई गई। ये फिल्म थी हे राम। सहनायिका बहन, पत्नी, माँ, ढाई माँ, दादी माँ, इस तरह की भूमिकाएं आगे चलकर फरीदा जलाल को मिली और सभी भूमिकाओं में इन्होंने अपने खास अंदाज में जान फूंक दी। सन 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर, 2015 तक अनेक चरित्रों को पर्दे पर इन्होंने साकार किया। सन 2012 में फरीदा जलाल को ए ग्रैंड प्लान फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया हार्लेम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल।

1990 के बाद की कई फिल्में बहुत चर्चित रहीं। फिल्म राजा हिंदुस्तानी, कहो ना प्यार है, कभी खुशी कभी गम, फरीदा जलाल ने कई टेलीविजन सीरियल में भी काम किया जिसमें देख भाई देख हिट सीरियल था। फरीदा जलाल ने कॉमेडी रोल भी अदा किए। थोड़ा जादू थोड़ी नजाकत, इसमें आपने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया, यूं कह सकते हैं कि लीडिंग रोल था। सन 2005 में मुंबई में 50वें फिल्म फेयर अवार्ड के स्टेज पर इन्होंने एंकरिंग की। साथ में थे सैफ अली खान और सोनाली बेंद्रे। पंजाबी फिल्म यारिया में एक विशेष भूमि

फरीदा जलाल का एक बेटा है यासीन। अभिनेत्री फरीदा जलाल के अभिनय को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। फरीदा जलाल हमेशा उन्नति करें। हम सब विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें शुभकामनाएं देते हैं।

आज के पनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित था अभिनेत्री फरीदा जलाल पर। शोध, आलेख और स्वर शहनाज अख्तरी का। कार्यक्रम का संपादन किया आकांक्षा सिंह ने। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायद हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अनमोल यादें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत की। श्री मोदी दो दिन के स्वीडन दौरे पर कल गोथेनबर्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार किसी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत स्वीडन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की प्रशंसा की। गोथेनबर्ग पहुंचने के तुरंत बाद श्री मोदी ने प्रवासी भारतीय समुदाय से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। श्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 वर्ष बाद नॉर्वे की ये पहली यात्रा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि स्वीडन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले उद्योगपतियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत में गहरी रुचि दिखाई है। यूरोपीय उद्योगपतियों के गोलमेज सम्मेलन के बाद विदेश मंत्रालय के पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ उद्योगपतियों ने हाल के वर्षों में भारत में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का उल्लेख किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया के दो देशों के दौरे पर रहेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये दौरा दोनों देशों के साथ भारत मित्रता के दायरे को और बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरे का उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग को बढ़ाना और रक्षा औद्योगिक साझेदारी को मजबूत करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। श्री सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। शपथ लेने वाले 21 मंत्रियों में सतीशन सहित 14 विधायक पहली बार मंत्री बन रहे हैं। राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को मंत्रियों की सूची सौंपने के बाद श्री सतीशन ने कहा कि यूडीएफ मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक साथ शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा को जन्मदिन की बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एचडी देवेगौड़ा ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन के दौरान देश के लिए बेहतरीन योगदान दिया है। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने एचडी देवेगौड़ा को धरती का सपूत बताया। श्री शाह ने कहा कि किसानों और ग्रामीण भारत के लिए उनके आजीवन समर्पण ने देश पर अमिट छाप छोड़ी है। भारत ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में 1 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक जीते हैं। जियांग शान में छठे संस्करण की तुलना में भारत की ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: समाचारों से पहले हमारे श्रोता

0: भारती के कार्यक्रम आज के फनकार सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:05 हुए हैं। सुनते हैं कार्यक्रम घूमता माइक्रोफोन।
1: घूमता माइक्रोफोन कार्यक्रम के सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को अख्तर इमाम अंजुम का नमस्कार। दोस्तों, हर माह के पहले एवं तीसरे सोमवार को हम आपके लिए ये कार्यक्रम लेकर उपस्थित होते हैं, जो आपकी जानकारी, लाभ एवं जागरूकता के लिए होता है। या तो हम किसी दिवस की चर्चा करते हैं या समाज सेवकों के योगदान एवं उनकी स्मृति का व्याख्यान करते हैं। आपने रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, प्रौद्योगिकी दिवस, परिवार दिवस, उच्च रक्तचाप दिवस, हाइपरटेंशन एवं सशस्त्र सेवा दिवस भी मनाया एवं मना रहे हैं। आज विश्व एड्स वैक्सीन दिवस है एवं एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाने, टीके के अनुसंधान के महत्व को समझाने और उन वॉलेंटियर्स वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य सेवकों के प्रयासों को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। हम सभी एड्स की रोकथाम के उपायों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आज हमने एड्स एवं गुप्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से बात की है। आइए सुनते हैं हम लोग उनकी बातचीत। सबसे पहले आप आकाशवाणी के श्रोता को पहले अपना परिचय कराएं।
2: मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद सिंह हुआ, सदर अस्पताल सासाराम में एसटीडी काउंसिलर कम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वायरल मार्कर के पद पे।
1: अच्छा, तो आप आकाशवाणी के श्रोता को, चूंकि आज विश्व एड्स वैक्सीन दिवस है, तो बताएं कि विश्व एड्स वैक्सीन दिवस क्यों मनाया जाता है।
2: सबसे पहले इसमें मैं बता दूं कि ये वैक्सीन दिवस जो है, इसका उद्देश्य एक सुरक्षित और प्रभावी लोगों के बीच संदेश जाने का है।
1: अच्छा अच्छा।
2: चूंकि ये संदेश के माध्यम से, चूंकि अभी इसमें है क्या कि जो वैक्सीन हम लोग के यहाँ अभी पूरे विश्व में अभी जो 100% क्योर बोलना चाहिए वो अभी लागू नहीं है।
1: अच्छा अच्छा।
2: लेकिन ये वैक्सीन दिवस क्यों मनाते हैं?
1: ऐसा भी है कि उपलब्ध भी नहीं है, ऐसा भी?
2: हाँ, उपलब्ध भी नहीं है अभी। इस पे काम चल रहा है, अभी उपलब्ध नहीं है।
1: अच्छा अच्छा।
2: और ये 18 मई 1997 को ये जो हमारे दक्षिण अफ्रीका के जो विल क्लिंटन,
1: अच्छा अच्छा,
2: जो एक बहस के दौरान पार्लियामेंट में उन्होंने डिस्कस किया था, और उस डिस्कस में 10 साल के अंदर उन्होंने ये तय किया था, अपने वैज्ञानिकों को ये निर्देश दिया था कि आप इसको पूरा करें।
1: अच्छा।
2: और उसी दिन, उसी को हम उसके अगले साल 98 से 18 मई को हम वैक्सीन दिवस मनाने का काम करते हैं।
1: अच्छा, मतलब एक उसी समय से वैक्सीन दिवस मनाया जा रहा है।
2: जी जी जी।
1: तो कुछ इसमें ऐसे भी विषय हैं जो प्रासंगिक हैं, इसे भी बताएं कि कौन कौन से प्रासंगिक हैं।
2: देखिए, सबसे पहले प्रासंगिक के दृष्टिकोण से हम इसके पीछे से लेके और अब तक का एक बैकग्राउंड को हम लोग जानेंगे। इस दिवस को तो पहले हम लोगों ने मनाना बता दिया कि 18 मई को मनाया जाता है, और इसके आयोजन पूरे विश्व में किया जा रहा है। अभी हमारे केवल इंडिया की बात नहीं है, ये पूरे विश्व में हो रहा है। दूसरी चीज, इस दिन का महत्व इसलिए है कि क्या वैज्ञानिकों ने तय किया था कि हम लोगों ने इस काम को पूरा करेंगे।
1: अच्छा अच्छा।
2: और इसी दृष्टिकोण से हम उस दिवस को वैज्ञानिकों के सामान्य और सम्मान दोनों दिवस के रूप में हम लोग उसको,
1: मतलब वैज्ञानिकों के सम्मान के लिए मुख्य रूप से ये मनाया जाता है।
2: चूंकि वो इसके बारे में जन जागरूक भी उन्हीं लोगों के माध्यम से, चूंकि अभी तक हमारा कितना इस पे प्रोग्रेस हुआ वो हम लोग बताते हैं। अभी 26 तक में हमारे यहाँ इंडिया में नहीं बल्कि विश्व में 25 में दिसंबर में एक फिर पुनः इसका प्रयास किया गया था, लेकिन अभी उसका सार्थक

0: रिपोर्ट हम लोग के बीच में नहीं आया है।
1: अच्छा।
0: अब वो सार्थक रिपोर्ट तब आएगा जब वो वैक्सीन का एक जो टाइमिंग है उस टाइमिंग को जो पूरा होगा जिसपे प्रयोग किया जा रहा है।
1: अच्छा।
0: उस टाइमिंग के हिसाब से तब उसको आगे के लक्ष्य की बात की जाएगी कि नहीं हमारा ये अभी क्योर हो चुका कि
1: वैज्ञानिक शोध किया जा रहा है, प्रयोग किया है, मतलब जो भी चीज है मुख्य कारण यही है,
0: मुख्य कारण
1: वैक्सीन दिवस मनाने का।
0: और वैक्सीन हम लोग का इसलिए भी नहीं बन पा रहा है कि हम लोग के यहाँ ये जो HIV के जो वायरस हैं,
1: अच्छा,
0: वो बहुरूपिया के तौर पे हैं।
1: अच्छा,
0: अभी हम जिस रूप में उसको लेकर के वैक्सीन का तैयारी करेंगे कर रहे हैं, थोड़े देर में उसका रूप बदल जाता है।
1: अच्छा,
0: तो वो वैक्सीन हमारा इसलिए उस पे कारगर नहीं हो पाता है।
1: अच्छा,
0: तो इसमें अभी सतत प्रयास चल रहा है।
1: अच्छा अच्छा, चलिए, तो एड्स से बचाव के लिए कौन कौन से तरीके को अपनाना उचित होना चाहिए? मान लीजिए कुछ वैक्सीन नहीं है, कुछ और भी तरीके हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: इसे हमारे श्रोता को आप बताएं।
0: जिसमें सबसे पहले हम कौन कौन से तरीके हैं अपनाने के लिए, तो इसमें सबसे पहला चीज आता है कि बचाव ही इसका इलाज है। अब बचाव की बात आती है तो फिर कौन कौन सा बचाव की बात हम करेंगे, तो उसमें सबसे पहला चीज है जो हमारे विश्व में सबसे असुरक्षित यौन संबंध जो है, इससे 85% लोगों को संक्रमित होते हैं।
1: अच्छा, अच्छा।
0: तो 85% के बाद जो 15% जो बचता है उसमें नीडल सिरिंज भी आता है, असुरक्षित ब्लड भी आता है, और उसके अंतर्गत हमारे यहाँ जो प्रेग्नेंट वोमेन है उनके द्वारा जो पॉजिटिव वोमेन है, उनके द्वारा जो बच्चे आते हैं उनको वो पॉजिटिव होते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले असुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए, उसमें कंडोम्स का उपयोग करना चाहिए। तो कंडोम के साथ साथ इसमें जो नीडल सिरिंज होता है वो हमें हर बार नया नीडल सिरिंज का उपयोग करना चाहिए। तीसरा जो होता है, जो ब्लड की जहां बात आती है, तो हमें ये सबको जानकारी रखना चाहिए कि जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ब्लड सेंटर है हम वहां अपना ब्लड डोनेट करें और वहां से ब्लड लें, क्योंकि ये ब्लड अगर दूषित रहेगा, बहुत सारे लोग करते क्या है कि हमारे रिलेटिव में किसी का तबीयत खराब हुआ, हमने ब्लड दिया, वो ब्लड चढ़ गया और उस ब्लड में क्या क्या बीमारी है ये पता नहीं रहता है। और ब्लड बैंक से जब हम ब्लड का संचालन करेंगे तो वहां पे जांचा परखा ब्लड ही रहता है और वही ब्लड मिलता है, तो हमारी जीवन सुरक्षित रहती है।
1: अच्छा अच्छा।
0: चौथा जो है, गर्भवती माँ से जो आने वाले बच्चे हैं उस पीरियड में हम सभी गर्भवती माँ से आग्रह करते हैं, उनके गार्जियन से आग्रह करते हैं कि उस पीरियड में अगर वो HIV पॉजिटिव हैं तो सदर अस्पताल या नियरेस्ट जहां भी सेंटर है उस सेंटर से आप जुड़ाव रखें, क्योंकि बच्चा जैसे ही होगा उस बच्चे को भी जन्म लेते ही 24 घंटे के अंदर उसको दवा चलाया जाता है, जिससे हम लोग अभी लगभग सभी बच्चे को बचा रहे हैं।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो ये आवश्यक है, ये जानकारी सभी को फैलाने की जरूरत,
1: मतलब उसके लक्षण से बचना है,
0: बचना है।
1: अच्छा, ये तो बात हो गई। ये बताइए कि आप लोगों में बहुत सारे सिस्टम है और विभाग है, ये PREP क्या है?
0: PREP जो है प्रोलेक्सिस,
1: और ICTC क्या है?
0: सबसे पहले हम ICTC बोल लेते हैं, तो उसके बाद हम PREP पर बात करेंगे। ICTC सेंटर जहाँ पे हमारे HIV का जांच होता है।
1: अच्छा अच्छा।
0: और ये HIV के बिना जांच के केवल शरीर के चेहरा देखने से कोई बता नहीं सकता है, तो HIV का जांच के लिए वो सेंटर है और वो पूर्णतः निःशुल्क है, वहाँ कोई पैसा नहीं लगता है। कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से या डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से किसी भी तरह से अगर वहाँ आएंगे तो उनका HIV का अपने बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगा। अब PEP की बात होती है, तो ये PREP जो ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट किन की आवश्यकता है, किन को दिया जाता है और किन को आवश्यकताएं होती है, तो इसमें सबसे पहला चीज जानना है कि ये आवश्यकताएं तब महसूस हुई जब हम जानते हैं कि फलाना आदमी HIV पॉजिटिव है और उसके साथ हम कंसर्न में आ गए। कंसर्न में कैसे आ गए? चाहे वो असुरक्षित यौन संबंध हो, उसके ब्लड से कहीं सेफ्टी से हो, नीडल सिरिंज से सेफ्टी से हो, कि अगर हमें लगा कि अगर उसका नीडल किसी पॉजिटिव व्यक्ति को उससे दिया गया है वही हमको प्रीक हो गया, तो इसमें PEP का बात आती है। और तब ये आती है जबकि उसका कंफर्मेशन हो। अब कंफर्मेशन का मतलब कि अगर हमारा नीडल आप में अगर चुभ गया तो ऐसा नहीं है कि आपको PEP की जरूरत है, ऐसा नहीं है। तब जरूरत है कि अगर हम पॉजिटिव हैं और

0: सारा पॉजिटिव वाला नीडल आपको अगर जुट आपके शरीर में अगर पिंच हो गया या आपने किसी को किसी के साथ संबंध बना लिया तो वैसी स्थिति में प्रोलैप्सी लक्षण नहीं, ये उसके हिसाब से जो विषाणु है उसके शरीर में प्रसार नहीं करें उसको रोकने के लिए वो दवा चलता है। वो दवा 18 दिन या फिर 30 दिन का उसका एक डोज होता है, उसके आधार पे ही चलता है।
1: तो चूंकि मनाया जाने वाला दिवस एड्स दिवस भी है और एड्स वैक्सीन दिवस भी है, तो दोनों फोकस क्यों अलग अलग है और इसमें क्या क्या अंतर है ये बताएं।
0: सबसे पहले अंतर हम बता देते हैं, विश्व जो एड्स दिवस है वो हम लोग 88 से हमारे पूरे ऑल इंडिया में मनाया जा रहा है। ये दिवस एक बृहद पैमाना पे मनाया जाता है क्योंकि एक जागरूकता के लिए, इसमें सबसे पहला है कि लोग को अवेयर किया जाता है, जागरूक किया जाता है। और वैक्सीन दिवस जो है उसको हम अपने अंदर कितना आत्मसात करते हैं, उसको हम अपने शरीर में कितना इम्प्लीमेंट करते हैं, वो दिवस इसके लिए मनाया जाता है। लेकिन अवेयरनेस के लिए जो एड्स डे है वो पूरे ऑल इंडिया में या विश्व में कहिए वो अवेयरनेस के हिसाब से मनाया जाता है। दोनों में फर्क कितना है कि वैक्सीन जैसे हम किसी मेडिसिन को लेते हैं अपने बचाव के लिए, उसको हम वैक्सीन मान लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं तो, और अवेयरनेस का मतलब कि हम ये बात दूसरों तक पहुंचाएं, उसको अवेयरनेस हम बोलेंगे।
1: तो आपने बहुत सारी बातें बताई एड्स से संक्रमण या उसके बचाव के तरीके, लेकिन मुख्य रूप से इसका उपचार बता दीजिए।
0: हाँ, इसका उपचार की बात अभी होती है। सबसे पहले अगर कोई भी व्यक्ति HIV पॉजिटिव हो गया तो उसके पहले हम उसके बॉडी के और सारे भी चेकअप करवाते हैं। हाँ, ये चेकअप और करवाते हैं इसलिए करवाते हैं कि HIV अपने आप में कोई बीमारी नहीं है।
1: अच्छा,
0: इसमें बहुत सारे बीमारियों का जो समूह एक साथ आ जाता है उसके चलते हम एड्स में परिवर्तित नहीं हो, और उन सारे चीजों को देखते हुए पहले जांच की बात होती है। जैसे LFT होता है, KFT होता है, शुगर की बीमारियां होती है, TB की बीमारियां होती है, ये सारे हम पहले जांच करा लेते हैं। और जांच कराने के बाद में एंटी रेट्रोथेरेपी ART सेंटर हमारा एक है, हमारा विंग है, पूरे बीसेक्स का विंग है, और उसके माध्यम से जांच के बाद जो चीज स्थिति सामने रहता है उसके हिसाब से HIV का तो हम इलाज करते हैं, साथ में उसके साथ और भी जो बीमारियां होती है उसका भी इलाज उसके साथ संभव किया जाता है।
1: बताइए ये दिवस मुख्य रूप से वैज्ञानिकों एवं समय सेवकों को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है जो वैक्सीन की खोज में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो उन्हें आप क्या कहेंगे?
0: हम उन्हें धन्यवाद ये देना चाहेंगे कि आपके कड़ी मेहनत से इसमें बहुत सारी जो संभावनाएं आ रही है उसको आपने फेस कर रहे हैं। और जब तक कोई काम आदमी दृढ़ता के साथ उसको फेस नहीं करेगा तब तक आदमी लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा। तो आप लक्ष्य में लगे हुए हैं, इसलिए आप अभी सभी वैज्ञानिकों को जो इससे जुड़े हुए हैं सभी को बहुत बहुत आभार है।
1: अच्छा, हमारे जिला में इस संबंधित कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं एवं होंगे, इसके थीम को आप बताएं कुछ?
0: हमारे यहाँ जिले में अभी HIV से बचाव के लिए जो कार्यक्रम के साथ हम लोग का जुड़ाव है उसमें सबसे पहला चीज है कि हम लोग टेस्टिंग का व्यवस्था हमारे जिला में है, जिला में ही नहीं सभी PHC में भी है, और PHC के साथ साथ हमारे जो अभी वर्तमान PD हैं सुमित कुमार जी, इनके अथक प्रयास और मेहनत से हम लोगों को जो टास्क मिल रहा है उस टास्क से हम लोग गांव-गांव तक ये टेस्ट की बात अभी सुनिश्चित करने की बात हो रही है। टेस्ट गांव-गांव तक हम लोग करने का हम लोग का प्रयास है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जांच के बाद जो है HIV के इलाज के लिए ART सेंटर खुला हुआ है, क्योंकि ART सेंटर के बिना किसी का इलाज संभव नहीं है, तो हमारे यहाँ वो भी सेंटर है। दूसरा चीज, ये बीमारी किसी को फैले नहीं उसके लिए कंडोम वितरण, लुब्रिकेंट की बात, और हमारे यहाँ जो ग्रुप हाई रिस्क ग्रुप है जैसे ID हो गए उनके लिए निडिल सिरिंज की व्यवस्था NGO के माध्यम से वो कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है।
1: अच्छा, और ये बताइए कि सरकार की ओर से क्या क्या समाधान है, सहयोग है, क्या दबाव है, और जनता समाज हित में क्या आप लोग करना चाहते हैं? सरकारी
0: सबसे पहले सरकार के हिसाब से जो पॉलिसी है, अगर कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव है तो हम लोग किसी के सामने उस व्यक्ति का परिचय किसी के सामने नहीं रखते हैं कि ये व्यक्ति पॉजिटिव है। हम लोग जितने भी काम कर रहे हैं सभी गोपनीयता रखते हैं, 1-to-1 इसलिए हम लोग बात भी करते हैं, उनकी समस्या क्या हो रही है उसका समाधान

0: की बात हो रही है। समाधान में चाहे वो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित हो या फिर सामाजिक सुरक्षा से संबंधित हो, सरकार सभी बिंदुओं पर पहल करती है।
1: खूबी की बात यह है कि सरकार के आदेश के पालन के हिसाब से सब काम सब होता काम है।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: और हो रहा है,
0: हो रहा।
1: चलिए, बहुत बड़ी बात है। तो पहला विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया गया था?
0: पहला वैक्सीन दिवस ये 18 मई 1998 को मनाया गया था।
1: अच्छा, तो क्या एड्स का टीका मरीजों के लिए उपलब्ध होता है या नहीं?
0: अभी तो अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है।
1: अच्छा।
0: हमारे वैज्ञानिक इस पे लगातार शोध में लगे हुए हैं, और जैसे ही ये शोध पूर्ण हो जाएगा लोगों के बीच अवेलेबल हो जाएगा।
1: अच्छा अच्छा, तो आकाशवाणी के श्रोता को आप आज कुछ संदेश भी देना चाहेंगे जिससे जागरूकता में तेजी आए एवं मरीजों को कुछ महत्वपूर्ण सलाह हो सके?
0: अभी आपके माध्यम से आपके जितने भी श्रोतागण इस बात को सुनेंगे, सबसे मेरा पहले तो विनम्र आग्रह होगा, आग्रह इस बात का होगा कि ये बचाव केवल जानकारी के कारण ही हम किसी को बचा सकते हैं या अपने भी बच सकते हैं। तो ये हम सबसे आग्रह करेंगे कि इसके जितने रूट हैं, रूट का मतलब चार जो रूट से ये बीमारियां आती है, असुरक्षित यौन संबंध, असुरक्षित नीडल सिरिंज और असुरक्षित ब्लड और गर्भवती माँ से होने वाले बच्चे को, तो इसकी जानकारी लोगों तक बढ़ाने का प्रयास करेंगे आप।
1: हाँ।
0: ताकि इसमें हर एक कड़ी को जोड़ने के बाद ही ये लार्ज स्केल पे जाएगा, सामान्य लोगों के बीच जाएगा, और वो उस चीज को फॉलो करेंगे तो हम बच सकते हैं और फिर लोग भी बच सकते हैं। इसलिए हम सबसे आग्रह करेंगे कि आपके पास अगर ये जानकारियां आ रही है तो लोगों को ये जानकारियां देने का काम अवश्य करेंगे।
1: और उसकी सुरक्षा का सेंटर बना हुआ है,
0: और सुरक्षा का सेंटर जो बना हुआ है हमारे जिला अस्पताल है और साथ में प्राइमरी हॉस्पिटल है, जहाँ जहाँ भी हमारे स्वास्थ्य सेंटर
1: है, सरकार भी बहुत सारी सुविधाएं दे रही है, तो उसका लाभ लेना चाहिए।
0: बिल्कुल, लाभ लेना चाहिए और सारे जगहों पे सारी सुविधाएं अवेलेबल है।
1: तो चलिए, आपने श्रोता को भी बहुत अच्छे संदेश दिए, इसके लिए आकाशवाणी की ओर से आपको धन्यवाद।
0: सभी को मेरे तरफ से नमस्कार है, धन्यवाद है।
1: दोस्तों, आप सुन रहे थे विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मद्देनजर एड्स एवं गुप्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बातचीत। तो अब आइए लेते हैं एक गीत का आनंद।
2: विशाल पिंजरे में

श्रोता दोस्तों, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मद्देनजर एड्स एवं गुप्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बातचीत एवं गीत का आनंद लेने के बाद हम आपसे कहेंगे कि एड्स के प्रति हम आप सभी को जागरूक होना है, उसके संक्रमण से बचना है एवं उसके उपचार हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से करना है एवं कराना है संक्रमितों को संपर्क। ध्यान देना है अपने स्वास्थ्य पर, जिसके लिए केंद्रीय एवं राज्य सरकार भी है प्रयत्नशील। दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम घूमता माइक्रोफोन कैसा लगा? उठाइए कलम और लिख भेजिए आप एक पत्र, हमें रहती है प्रतीक्षा आपके पत्र की। हमारा पता है कार्यक्रम घूमता माइक्रोफोन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड 821115, और दीजिए यहीं से अख्तर इमाम अंजुम को अनुमति। स्वर एवं संकलन अख्तर इमाम अंजुम, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।

हमारे श्रोता घूमता माइक्रोफोन सुन रहे थे आकाशवाणी के सासाराम केंद्र FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। संकलन एवं वाचन था अख्तर इमाम अंसुम का, प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। कुछ ही देर में सुनेंगे भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 10:30 हुए हैं। सुनते हैं भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी। कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं भरत शर्मा व्यास की आवाज में खूबसूरत सा गीत। मधु पांडे निर्मल के लिखे इस गीत को भरत शर्मा व्यास ने संगीत दिया है और एल्बम का नाम है राजा पियजनी।

कार्यक्रम लोक माधुरी के आखिर में सुन लेते हैं एक निर्गुण गीत मदन राय की आवाज में। संत कबीर के बोल हैं, भरत शर्मा ब्यास का संगीत है।

मदन राय के गाए इसी भोजपुरी एल्बम लोकगीतों के साथ कार्यक्रम लोक माधुरी अब यहीं संपन्न होता है। सुबह के 10:45 होने वाले हैं, सुनते हैं भोजपुरी एल्बम्स सॉन्ग्स कार्यक्रम रसधार। कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं सेतु सिंह की आवाज में, माफ कीजिएगा, तनु प्रियंका की आवाज में खूबसूरत सा गीत। बहु विद्यार्थी ने इसे लिखा है, अंजनी सिंह ने संगीत दिया है और एल्बम है राजा जी के रचल विधान। तो ये सुनते हैं तनु प्रियंका के आवाज में।

0: सामाजिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: अगला गीत खेसारी लाल यादव की आवाज में विशाल भारती के बोल हैं, मोनू सिन्हा का संगीत है, एल्बम है जूने में।

कार्यक्रम के आखिर में सुन लेते हैं एक और गीत सेतु सिंह की आवाज में। साजन सरहदी के बोल हैं, मधुकर आनंद का संगीत है, एल्बम है राम जी के रचल विधान।

तनु प्रियंका के गाए इसी गीत के साथ भोजपुरी एल्बम गीतों का कार्यक्रम रसधार अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। पूर्वाह्न के 11 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण सुनेंगे विविध भारती से थोड़ी देर में।

सभी सुनने वालों को नमस्कार। रंग तरंग कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ये है लकी अली की आवाज, असलम के बोल और लकी अली का संगीत।

0: Absolutely.
1: जैसे कि आप जानते हैं, विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता, और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्त

काशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने, देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त, आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

सोनू निगम की आवाज में आपने सुने फैज अनवर के बोल और साजिद वाजिद की धुन, और अब सुनते हैं सोनू निगम की ही आवाज में ये गाना। नुसरत बद्र के बोल हैं सोनू निगम की।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

रंग तरंग प्रोग्राम में आइए अब आपको सुनवाते हैं तेरे बिना एल्बम से अभिजीत की आवाज में नुसरत बद्र के बोल और सप्तर्षिका संगीत।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, इस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की इतनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

रंग तरंग प्रोग्राम में आइए अब आपको सुनवाते हैं अदनान समी और आशा भोसले का गाया हुआ ये गाना। बोल रियाजुर रहमान सागर के हैं।

आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से रिले होने वाले समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन की अपनी दो दिन की यात्रा के बाद नॉर्वे के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व

0: के सम्मान में स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर वे उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन आज से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी डी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
1: वडशेरी दामोदर मेनोन सतीशन नियम वी स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याजमाय विश्वस्तयुम।
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे,

0: क्षेत्र को एक उज्जवल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 321 अंक गिरकर 74,917, जबकि निफ्टी 113 अंक लुढ़क कर 23,530 पर था। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

यादों के महफिल कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गाना, मैंने प्यार किया फिल्म से। एसपी बाल सुब्रमण्यम की आवाज है, असद भोपाली के बोल रामला।

यादों के महफिल कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं हम साथ साथ हैं फिल्म का गाना, कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सखी सहेली।
2: आइए अब आपको सुनवाते हैं खुशबू फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है आशा भोसले ने, लिखा है गुलजार ने और धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

अभी आप सुन रहे थे ये गीत हम आपके हैं कौन फिल्म से। लता मंगेशकर और कुमार सानू की आवाजें थी, रविंद्र रावल के बोल थे, और अब सुनवा रहे हैं आपको ये गाना।

फिल्म लोफर का ये गाना आपने सुना, आशा भोसले का गाया हुआ। आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और आइए अब आपको सुनवाते हैं आराधना फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, सुरों में पिरोया है सचिन देव बर्मन ने।

0: सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैला

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल प्रोग्राम में आइए अब आपको सुनवाते हैं वास्तव फिल्म का गाना सोनू निगम की आवाज में। गीत लिखा है समीर ने, धुन बनाई है जतिन ललित ने।

होता है

हाँ, हाँ। जीते रहो।

फिल्म पारस का ये गाना आप सुन रहे थे। आशा भोसले और साथियों की आवाजों में वर्मा मलिक के बोल थे, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। और आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म मजबूर का ये गाना किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: आपकी खूबसूरत आंखों में समा सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता
1: हूँ। ये है फिल्म महल का गाना, आशा भोसले की आवाज में। साथ में आप सुन रहे हैं देवानंद की आवाज।

मौसम सुहाना है, दिलकश जमाना है, फिर भी उदासी है।

आशा भोसले और डैनी की आवाजों में आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म काला सोना का गाना। मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है राहुल देव बर्मन ने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा आदेश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला सफर।

सुरीला सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राजुल का सादर नमस्कार। और आज का सुरीला सफर है बन रहा कुछ अलग ही ढंग से, क्योंकि आपके संदेशों में बात है आज की और गुजरे हुए कल की।

तो अब आपको बता देते हैं आज का टेक्स्ट। जैसे हमारे कुछ श्रोता जो कि फेसबुक पेज पर जहां पर गीत भी मिलते हैं और मीत भी मिलते हैं, वहां पर उन्होंने ये टेक्स्ट देख ली होगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए हम बता देते हैं आज की ये इबारत। कई बार कुछ ऐसा होता है कि गुजरा हुआ वक्त चुपके से दबे पांव मन में चला आता है और किसी जादूगर की तरह साकार कर देता है वो बीता हुआ पल। जब कोई मिला या कोई बिछड़ गया, कुछ टूट गया, कुछ छोड़ दिया या कुछ पा लिया, वो पल जहां मन के बावरे पंछी संग रोके नहीं रोकी उमंग, या जहां किनारे पर डूब गई दिल की कश्ती, यादों की उन गलियों में भटकता ही रहे मन, लेकिन सितारे मेहरबान हो तो पुकार लेता है वर्तमान, ओ मितवा आ जा रे। इस गली में कहीं खो सकता है आपका आज, जल्दी से आगे बढ़कर थाम लीजिए अपने आज का हाथ, क्योंकि वक्त कभी ठहरता नहीं, तो चलिए उसी राह पर जिस पर खड़ा है आज अभी यहीं। तो ये है आज की इबारत और इस इबारत को लेकर आपने चुन लिए हैं गीत। भाई गीत, गीतों की इस लिस्ट में बहुत लंबी सी लिस्ट है और हमारे कुछ साथियों ने बताया है बहुत सारे गीतों के बारे में। एक श्रोता ने बताया है, कई बार यूं भी देखा है, गुजरा हुआ जमाना चुपके से दिल दे दे, चला जाता हूं किसी की धुन में, जादूगर सैया, इस तरह के उन्होंने करीब 15 गीत छांटे हैं। वाह क्या बात है, गीतों के मामले में कितने संपन्न हैं हमारे श्रोताओं की याददाश्त। वाकई इस बात का हमें कई बार ये भी लगता है कि कितने ज्यादा गीतों से जुड़े हुए लगाव है आप सभी को। एक श्रोता का जो संदेश है वो कह रहा है कि उसमें कुछ यूं कहा गया है कि आज की भारत ने मन के पक्षी को अतीत में ले गया। सही कहा गया है, आप भूगोल बदल सकते हैं, इतिहास नहीं। प्रत्येक व्यक्ति का एक अतीत होता है जो जिंदगी के हर मोड़ पर दस्तक देता है। यह अतीत सुनहरा या कड़वा हो सकता है, मगर वे लम्हे जीवन भर पीछा नहीं छोड़ते। बेहतर है बीते अतीत के बुनियाद पर जीवन को बुलंद कर वर्तमान में जीना ही सार्थकता है, क्योंकि वर्तमान ही हकीकत है। समय की रफ्तार कभी धीमी नहीं होती, लेकिन उसकी गहराई में छिपे यादों के मोती अक्सर हमारे दिल के आंगन में बिखर जाते हैं। कभी कभी हवा का एक झोंका, किसी पुराने पन्ने की खुशबू, या रास्ते में मिला कोई जाना पहचाना चेहरा हमें गुजरे जमाने की गलियों में वापस ले जाता है। वो लम्हे जो पीछे छूट गए थे अचानक सामने आकर दिल को एक अनूठे सुकून और भीगी हुई उदासी से भर देते हैं। वाह क्या खूबसूरत बात कही है। तो बताइए कि आज कई बार वो याद जो ताजा हो जाती है किसी ऐसे ही पुराने पन्ने की खुशबू के साथ, या हवा के किसी झोंके के साथ, या किसी जाने पहचाने चेहरे के साथ, कभी बहुत साल पहले गुजरी थी जो बात, वो बात ताजा हो जाती है। तो उस बात के बारे में हमें बताएं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पुरानी यादों या बीते हुए वक्त की खुशनुमा या कठिन परिस्थितियों के पल जब भी स्मृति पटल पर पूर्व दीप्ति बनाने लगते हैं तो मन में एक भावुक संवेदना जागती है। ऐसे में मन का पंछी पुरानी यादों को एक नई उमंग और उम्मीद के साथ फिर से उड़ान भरने लगता है और एक सकारात्मक सोच मन में आती है कि फिर एक बार कोई प्यार से पुकार ले। अपनी सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम में शामिल गद्यमय इबारत की इबादत की इबारत से निकले शब्दों में कई बार कुछ ऐसा गुजरा वक्त चुपके से दबे पांव मन आपका आज चला आता किसी जादूगर साकार बीता पल मिला जल्दी गली मितवा आगे बढ़ थाम लीजिए, जैसे संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण परक शब्दों की ही भरमार नहीं अपितु संबोधन परक शब्द भी हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि गुजरा हुआ जमाना बीता हुआ वक्त और पुरानी यादें किसी जादूगर की तरह चुपके चुपके हमारे वर्तमान में लौट आती हैं। समय और यादों का ये सफर इतना गहरा होता है कि कई बार कुछ खट्टी मीठी यादें, कुछ पुरानी बातें और कुछ मधुर स्मृतियों के गीत अचानक दिल में उतर जाते हैं। भले ही आप दूर हो पर वो पल तो अचानक ही सजीव होकर आपके साथ हो जाता है। बहुत सुंदर बात कही आपने, और उन्हीं स्मृतियों के बारे में हम पूछ रहे हैं, उन्हीं खट्टी मीठी यादों के बारे में आप पूछ रहे हैं हम आज, जो आज से 20-25 साल पहले या 30 साल पहले या आज से 10 साल पहले गुजरी हों और आपको आज भी याद करा देती हूं। ये गाना सुनिए और बताइए।

हमारे एक श्रोता ने खुशी जाहिर की है कि वाह, मेरी लिस्ट का पहला ही गाना मिल गया। बिल्कुल सही बात। जवाब भी आए हैं बहुत ढेर सारे, ज्यादातर दिनेश ठाकुर या अमोल पालेकर जी की बात हुई है। एक श्रोता ने राजेश खन्ना का भी नाम लिखा है, ये रजनीगंधा फिल्म का गाना है। योगेश के बोल सलील चौधरी का संगीत और गाना बैकग्राउंड में चलता है। दरअसल शुरू ये विद्या सिन्हा के चेहरे से होता है और बाद में फिर दिनेश ठाकुर और अमोल पालेकर भी इस गाने में नजर आते हैं। तो भाई ये जो गाना है कि कई बार यूं भी देखा है, ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है तो मन तोड़ता है जब वो सीमा रेखा और कूद जाता है जाके जल्दी से अतीत की गलियों में। ऐसा जब कुछ आपके साथ हुआ हो उस वक्त के बारे में हम आपसे पूछ रहे थे। बताइए हमें, आज से 10, 15 या 20 साल पहले ऐसी कौन सी बात हुई थी जो आज भी याद करके या तो आप हंस पड़ते हैं या फिर दूसरों को हंसी आ जाती है। संदेश है एक श्रोता का, कहते हैं कि समय किसी के रोके नहीं रुकता, वक्त का पहिया लगातार घूमता रहता है, उसको पकड़कर चलने में ही समझदारी है। वक्त के साथ ही लोग मिलते और बिछड़ते हैं। हमारा बीता हुआ कल वापस तो नहीं आ सकता, इसलिए हमें भविष्य की चिंता छोड़ आज में जीना चाहिए। बिल्कुल सही बात। एक और श्रोता कहते हैं कि बीता हुआ वक्त लौट कर तो नहीं आता, लेकिन उसकी यादें हमें यह एहसास जरूर दिलाती हैं कि हमारे जीवन में हमने जीवन में कितना कुछ जिया है। कुछ अधूरे सपने, कुछ अधूरी बातें, कुछ बिछड़े रिश्ते, यही सब मिलकर मन एक ऐसी व्यथा पैदा करता है जिसे

शब्दों में पूरी तरह बयां करना आसान नहीं होता। इन्होंने कुछ पंक्तियां भी लिखी हैं। यादें हमारे भीतर चुपचाप सांस लेती रहती हैं, कभी रात की खामोशी में, कभी बारिश की बूंदों में, तो कभी अकेलेपन की किसी लंबी शाम में। वे फिर दस्तक देती हैं। बहुत सुंदर। एक और श्रोता ने आज शीर्षक से कुछ बात कही है। आज कोई ठहरा हुआ समय नहीं, बल्कि ये वो द्वार है जहां मनुष्य अपनी चेतना को जागृत करके शाश्वत सत्य का साक्षात्कार कर सकता है, क्योंकि जीवन केवल आज में ही धड़कता है। जो व्यक्ति आज में जीता है, वो किसी भी कार्य को पूर्ण समग्रता से कर सकने की क्षमता रखता है। यही पूर्णता ही ध्यान यानी मेडिटेशन है। वाह, क्या बात है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि अतीत के सबसे मोहक पलों में से एक होता है बीता हुआ समय। समय अपने अंदर कितना कुछ समोए रहता है। किसी अपने का मिलना बिछड़ना, यादों के तिलिस्म के ना जाने कितने दरवाजे हैं, मगर जीवन तब जीवन की तरह खिल उठता है जब कोई अपना हमें पुकार लेता है। ऐसे लोग जीवन की सबसे बड़ी सौगात लेकर आते हैं। ऐसे में उनका हाथ और साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि ये वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जो है वो बस आज में है, इसी पल में है। बहुत सुंदर बात कही है। और एक और श्रोता ने बताया है कि सुरीला सफर में कुछ गाने गुजरा हुआ जमाना, वक्त, पल, मितवा, कश्ती आर सच वर्ड्स ऑन विच टूडेज सुरीला सफर विल गो ऑन, द रेस्ट डिपेंड्स ऑन द लिस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आपकी लिस्ट में इसने, आपने जो शब्द चुने हैं, देखिए उन पर गाने आ रहे हैं या नहीं, और सोचिए तो कोई गाना आपके ख्याल में आ रहा है या नहीं। लेकिन अब जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, उसे सुनकर आपको बताना है फिल्म का नाम और किस कलाकार पर फिल्माया गया है।

बिल्कुल सही जवाब भेजा हमारे श्रोताओं ने। मधुबाला पर फिल्माया गया है शीरी फरहाद फिल्म का ये गाना है। लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना, तनवीर नकवी के बोल थे और एस मोहिंदर का संगीत था। श्रोताओं ने अपनी कुछ यादें भेजी हैं। जब मैं छोटा था तब मुझे उस समय की रिलीज हुई नई फिल्मों के गाने बहुत ज्यादा पसंद आते थे, पर जो जो समय बीतता गया मुझे ज्यादा पुराने गाने ज्यादा पसंद आने लगे। आज के समय में तो मुझे नए गाने बहुत कम पसंद आते हैं। क्या बात है। एक और श्रोता कह रही है कि आजकल किसी छोटे बच्चे को शरारते करते देखती हूँ तो अपने बच्चों का बचपन याद आ जाता है। तब की उनकी शरारतें कभी गुस्सा दिला जाती थी, आज याद कर मन को गुदगुदा जाती हैं। वो वक्त कितना जल्दी गुजर गया जिसे फिर से जीने का मन करता है। काश वो गुजरा हुआ जमाना फिर से आ जाता। बिल्कुल सही बात है, वो पल बीत जाते हैं लेकिन हम उन्हें याद करते रहते हैं। हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, फिर भी हम कहते हैं कोई लौटा।

मेरे बीते हुए दिन वाकई। एक और श्रोता ने आज की इबारत को पढ़कर सुरीले सफर में गुजरे हुए पलों की बातों से संबंधित गीतों को तवज्जो दिया गया है। ऐसा लिखा है, हर इंसान के जीवन में गुजरे हुए पलों की यादें सुखद और दुखद दोनों हो सकती हैं। सबसे ज्यादा बचपन से जुड़ी हर लम्हा और उनकी यादें बहुत कचोटती हैं। काश कोई खोया हुआ बचपन फिर से लौटा दे, लेकिन ये यथार्थ नहीं है। मनोविज्ञान के अनुसार पुराने सुनहरे पल हमें अपने उसे जोड़ते हैं। पुराने पलों की उन बातें जो अच्छी हैं उनके लिए कृतज्ञता महसूस करें, लेकिन जो पल बीत गया उसको बदला नहीं जा सकता, उसे स्वीकार करने से शांति मिलती है। उन्होंने कुछ गानों के नाम भी दिए हैं। चलिए अब जरा देखते हैं कि अगला गाना आपकी लिस्ट से मैच करता है या नहीं। अपनी यादों को हमारे साथ साझा करने के साथ साथ एक बात और, आज विश्व संग्रहालय दिवस है, तो बताइए कि संग्रहालय में ज्यादातर गुजरे जमाने की इतिहास की उन अनमोल यादों को संजोया जाता है जो बहुत खास होती हैं। कभी आपने कोई संग्रहालय देखा है या बचपन में कभी गए हो उसके बारे में भी हमें बता सकते हैं। और अब ये गाना सुनिए और बताइए कि इस फिल्म के प्रमुख कलाकार कौन हैं।

0: सही जवाब के साथ आपके संदेश आ गए। संजीव कुमार और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया ये गाना फिल्म मन मंदिर में। गीत राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। और भाई संदेशों की तो क्या ही कहें। नौजवानी के दिन जब बचपना विदा ले रहा था और जवानी दस्तक दे रही थी, उस समय ट्यूशन में पढ़ने वाली एक सहपाठिनी का मेरी गलतियों पर मुस्कुराना याद है। वो निश्चल हंसी, उफ क्या बात है। तो भाई देखिए ना, किसी की हंसी, किसी की बात या किसी का टोकना भी याद रह जाता है। एक श्रोता कह रहे हैं कि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, जो बीत गया सो रीत गया, जो बच रहा वो यही पल है जिसका इस्तेमाल हम सब VBS के साथ कर रहे हैं। जी हाँ, विविध भारती के साथ आपका ये पल कैसा गुजर रहा है इस बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। बहुत सारे श्रोताओं ने जो भेजे हैं हमें गानों के, बताइए कि ये पल, ये जो गाने हैं, ये आपके लिस्ट से मैच कर रहे हैं या नहीं। एक श्रोता ने कई बार यूं भी देखा है, गुजरा हुआ जमाना, चुपके चुपके चल रही पुरवैया और जादूगर जैसे बहुत सारे गानों का अपना लिस्ट बना के भेजी है। एक श्रोता ने गुजरा हुआ जमाना वापस तो नहीं आ सकता ये कहते हुए अपना संदेश आगे लिखते हैं कि लेकिन हम कभी एकांत में बैठे पुरानी यादों में खो जाते हैं, तब उन बीते हुए लम्हों में खुद को महसूस करते पहुंच जाते हैं। मसूरी के कैंप्टी फॉल में नहाने, जहां यारों की टीम 44 साल पहले कैमरे लिए तस्वीरें खींच रहे थे। लौटते हरिद्वार में गंगा स्नान का वो दृश्य सामने आ जाता है, जब मना करने पर तेज धार में बहने लगे और 2-3 साथियों ने तत्परता दिखाते हमें गहरे पानी में जाने से बचा लिया। उससे भी 10 साल पहले वाल्मीकि नगर रिजॉर्ट में नेपाल और बिहार की सीमा में अभ्यारण्य में घूमने गए, जहां धुंधलाती शाम में एक जहरीले सांप से भेंट हुई और सभी साथियों के साथ कैसे बाल बाल बचे। ऐसे तमाम वो पल जो एक एडवेंचर थे भी याद आए। और परिवार के साथ वैष्णो देवी यात्रा, फिर दिल्ली में 2 दिन ऐतिहासिक इमारतों में घूमना, वो लाल किले में ली गई कई तस्वीरें अच्छे दिनों में पहुंचा देती हैं। बहुत सुंदर यादें हैं आपने संजोई। यादें संजोने के लिए हम कई बार तस्वीरें भी खींचते हैं। आप बताइए कि क्या कभी तस्वीरों का वो एल्बम आप पलटते हैं जो आपने आज से 20-25 साल पहले खींचा था। और हाँ, उस वक्त तो तस्वीरें भी दूसरी तरह से ली जाती थी। अब जो गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे सुनिए और बताइए कि वो आपकी लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं, और साथ ही बताइए संगीतकार का नाम।
1: ए,
0: अरे
1: चुपके से दिल दे दे,
0: नहीं ते
1: नहीं ते

राजेश खन्ना और माला सिन्हा पर फिल्माया गया मर्यादा फिल्म का यह गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आपने सुना। बोल आनंद बख्शी के थे और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। सही जवाब के लिए बेहद शुक्रिया। हमारे एक श्रोता ने बताया कि मैसूर का किला देखा, राजा का पुराना राजमहल है। विश्व संग्रहालय दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए एक श्रोता बता रहे हैं कि 1989 में मुंबई के संग्रहालय पुरानी वस्तुओं, यादगार चीजें, धरोहर, विरासत, ये म्यूजियम उन्होंने 2 बार देखा है। म्यूजियम में सबसे ज्यादा कौन सी चीज आकर्षित करती है, या जब भी देखा किस चीज को के सामने आप बड़ी, किस जो शोकेस में लगी रहती हैं तमाम चीजें, उनमें से किस शोकेस के सामने आप काफी देर तक खड़े रहे, अगर याद हो तो जरूर बताएं। और हां, तस्वीरों के एल्बम की बात भी तो रह गई, कौन सा एल्बम आप अभी तक बहुत सहेज कर रखते हैं और जब तक उसे पलट लेते हैं मौका मिलते ही। श्रोताओं के संदेश कह रहे हैं कि मेमोरीज आर लाइक फोटोज, यू कैन लुक बैक बट यू कैन नेवर गो बैक। बहुत सुंदर बात कही आपने, मतलब यादें तस्वीर की तरह होती हैं, आप उसे पलट कर देख सकते हैं लेकिन उसमें वापस नहीं जा सकते। आज के सुरीले सफर की बातें भी कुछ ऐसे बीते हुए लम्हों से जुड़ी लग रही हैं। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, वापस आती हैं तो सिर्फ उससे जुड़ी कुछ खट्टी मीठी यादें और बातें, किसी से कुछ मुलाकातें जिसे याद कर कभी हमारे मन का बावरा पंछी भी बार बार डूलने लगता है। बीते हुए पल की कसक याद करते हुए कभी उदासी भी छा जाती है, इसलिए भूतकाल को याद कर उसमें से कुछ बोध पाठ लेते हुए वर्तमान को जी भर के जी लेना चाहिए, क्योंकि आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें हंसी खुशी जिंदगी बिता दो। वक्त का पहिया न कभी रुकता है न रुकेगा, इसलिए आप भी दोपहर ठीक 1 बजे VBS के सुरीला सफर में जुड़ जाइए। क्या बात है। और आगे लिखते हैं कि आप सभी का जीवन सफर सुरीला और हंसी खुशी से भरा रहे, यही कामना करते हुए स्वागत है। बहुत बहुत सुंदर बात कही आपने, वाकई वर्तमान में जीना ही समझदारी है, और वर्तमान में जीते हुए ये गीत आपको किन की याद दिला रहा है हमें जल्दी से बताइए। और हाँ, संग्रहालय की बात और अपने एल्बम की बात भी जरूर बताइएगा।

इस गीत का जवाब हम जरूर बताएंगे, लेकिन एक सवाल पहले पूछ लेते हैं, क्या कभी वो छूटा हुआ प्यार भी याद आता है आपको? उसके बारे में अगर बताइए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये जो सवाल था हमारा कि इस गाने को सुनकर आपको किन की याद आती है, तो हमारे साथियों ने बताया सरस्वती चंद्र नूतन, फिल्म का नाम और अभिनेत्री का नाम इन्होंने बताया है। किसी श्रोता ने मोनीश जी का नाम भी, यानी मोनीश बहल शायद इनका मतलब है, उनका नाम लिखा है। एक श्रोता लिखती हैं कि मेरा जिला अहमदनगर स्थित कैवलरी टैंक संग्रहालय एशिया में अपनी तरह का एकमात्र और सबसे बड़ा सैन्य संग्रहालय है। फरवरी 1994 में स्थापित इस संग्रहालय में लगभग 50 दुर्लभ और ऐतिहासिक टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और तोपों का अद्भुत संग्रह है, जो भारतीय बख्तरबंद कोर के गौरवशाली इतिहास को दर्शाते हैं। बहुत सुंदर जानकारी साझा की आपने। तस्वीरों के बारे में हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जितने भी पुराने फोटो हैं सभी को सहेज कर रखती हूं, अपने भाई बहनों के साथ वाले फोटो और अपने बच्चों का बचपन का फोटो, परिवार का फोटो सभी। जब भी फुर्सत में रहती हूं जरूर पलट कर देखती हूं और कुछ उसमें से फोटो निकालकर उनसे संबंधित लोगों को शेयर भी करती हूं। वाह, ये तो पुरानी यादें ताजा करने का बड़ा ही सुंदर तरीका है। एक और श्रोता बता रहे हैं कि तस्वीरें खींचने और खिंचवाने का जबरदस्त शौक है और उनका संग्रह करना भी, न सिर्फ एल्बम में बल्कि मोबाइल, लैपटॉप, सबके मेमोरी में भी संभाल कर रखती हूं और गाहे बगाहे उन्हें पलट कर देखने का भी शौक।

परिवार में सबके शादी ब्याह की तस्वीरें अपने पास रखना अच्छा लगता है वाकई। और उस जब देखते हैं ना वो तस्वीरें, तो फिर याद आ जाती हैं वो सभी बातें और वो अच्छा हल्का फुल्का वक्त जो गुजरा था उस वक्त। एक और श्रोता कह रहे हैं कि मेरे ताऊजी की लड़की जो मेरी बहन थी, सन 1971 में उसकी शादी में हमारे सारे परिवार का एक साथ खींचा गया ब्लैक एंड व्हाइट बड़ा फोटो आज भी मेरे पास सुरक्षित है। उस समय मेरी उम्र 1 साल की थी और मैं अपने पापा की गोद में नजर आ रहा हूँ। उस फोटो की हमने तस्वीर में बनाकर रखा है, मतलब शायद फ्रेम कराकर रखा है आपने। वाकई ये तस्वीरें तो अनमोल होती हैं। एक और श्रोता ने साझा की है एक तस्वीर की बात। मेरी बेटी की तस्वीर जिसका एल्बम बार बार देखता हूँ, कितनी मासूम मुस्कुराती, आज वो 36 साल की हो गई मगर मुझे बच्ची ही लगती है। सच, वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। संदेशों की बात करें तो हमारे श्रोता बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ साझा करते हैं। एक साथ ही लिखते हैं कि आज की भारत यादों की एक ऐसे जादुई आईने जैसी है जिसमें हमारा बीता हुआ कल आज भी खुलकर सांस लेता हुआ महसूस होता है। सचमुच इंसान का मन भी एक अजीब मुसाफिर है जो वर्तमान की सड़क पर चलते हुए भी अक्सर अतीत की पगडंडियों पर मुड़ जाता है। कहां क्या छूटा और क्या मिला, इसी उलझन में भटकता रहता है। यादों के समंदर में डूबना तो आसान है पर जिंदगी किनारे पर ही जी जाती है। गुजरे वक्त की जंजीरें कितनी भी रेशमी क्यों ना हो, उन्हें तोड़कर आज के वर्तमान पल का हाथ थामना ही असल मायने में जीना है, क्योंकि जो ठहर गया वो कल था, आज तो चलते रहने का नाम है। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि आज इंसान के बीते समय वक्त पे चर्चा होने की संभावना है। कहावत है, गुजरा वक्त वापस नहीं आता, जिसका वर्तमान सही है भविष्य भी सही होगा। वक्त को पहचानो, अहमदाबाद की घटना ने बहुत कुछ सिखा दिया, पता नहीं पल में क्या हो जाए। वाकई बहुत छोटी सी जिंदगी है और इस जिंदगी को हंसी खुशी से ही बिताना चाहिए, सबसे मिलजुल कर रहते हुए। अब इस गाने को सुनिए और फिल्म का नाम बताइए।

अमरदीप फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल और सी रामचंद्र का संगीत याद किया है हमारे कुछ श्रोताओं ने। छोड़ दे सारी दुनिया सरस्वती चंद्र फिल्म के गाने की बात की है। नूतन और मनीष अभिनीत फिल्म सरस्वती चंद्र के इस गीत का फिल्मांकन जूनागढ़ गुजरात के गिरनार पर्वत की सीढ़ियों पर हुआ था। उन दिनों मैं और मेरा मित्र जो जूनागढ़ के नजदीक रहता था उसके साथ शूटिंग देखने वहां गया था, लेकिन हमारे वहां पहुंचने से पहले फिल्म यूनिट वहां से विदा हो गया था। हमारी बात रह गई हमारे मन में, कुछ कह ना सके उलझन में। क्या बात है। लेकिन कई बार ये प्रयास ही बहुत अपने आप में ऊर्जा भर देता है, उत्साह भर देता है। हमारे एक श्रोता ने ओडिशा कटक नगर के नंदन कानन प्राणी संग्रहालय के बारे में बताया है और कोणार्क सूर्य मंदिर के पास एक संग्रहालय बनाया गया है साइंस, जो सभी ग्रह और सूर्य के ऊपर बहुत सारे तथ्य दिखाता है। प्लैनेटोरियम की बात कर रहे हैं आप। और एक श्रोता कह रहे हैं कि इस उम्र के इस मोड़ पर पहले प्यार को सार्वजनिक करना जोखिम भरा काम है, क्योंकि मेरी पत्नी सुरीला सफर में भी साथ साथ सुनती है। क्या बात है। वाकई कई बार ऐसे जोखिम से तो बचना ही चाहिए। और बात हो रही है पुराने इश्क की, तो बड़ी सुंदर सी कविता साझा की है हमारे एक साथी ने। उन्होंने लिखी है, कभी कभी पुराना इश्क बरसों बाद भी दिल के किसी कोने में धीमी आंच सा जलता रहता है। ना वो आवाज देता है, ना कोई शिकायत करता है, बस अचानक किसी बारिश, किसी गीत या किसी खामोश शाम में याद बनकर उतर आता है। बहुत धीरे धीरे पढ़ने वाली कविता है, लेकिन समय की कमी के चलते मैं जल्दी पढ़ रही हूं। बड़ा ही सुंदर शब्द है। वो इश्क भी अजीब था, न पूरा मिला न कभी पूरा तरह बिछड़ा, बस जिंदगी की किताब में एक मुड़ा हुआ पन्ना बनकर रह गया। आज भी जब तन्हाई में धीरे से दरवाजा खटखटाती है, उसकी हंसी उसकी बातें मन में चुपके से चली आती हैं। मगर अब ना कोई गिला है, ना किसी के लौट आने की आस, क्योंकि कुछ मोहब्बतें मुकम्मल होकर नहीं याद बनकर ही खूबसूरत लगती हैं। बड़ी सुंदर बात कही आपने। और ऐसी यादों की बात करते हुए अब इस गीत की तरफ बढ़ रहे हैं। सुनिए और बताइए फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम।

बिल्कुल सही जवाब भेजा हमारे साथियों ने। हवस फिल्म का ये गाना संगीत उषा खन्ना का। और एक श्रोता ने बताया है कि बैंगलोर में संगीत म्यूजियम देखा है, बेहतरीन है, रिकॉर्ड रूम भी था, वहां गाना रिकॉर्ड किया था। क्या बात है, आपने तो बड़ी ही सुंदर स्मृति संजोली। एक और श्रोता कह रहे हैं कि आप कई बार ऐसे सवाल पूछ लेती हैं जिसका जवाब देना चाहकर भी जवाब नहीं दे सकते, जो जवाब देना खतरनाक हो जाता है। ओहो ठीक है, चलिए आपने छुपते छुपाते बात कही दी। संदेश भेजा है हमारे एक श्रोता ने, कह रहे हैं कि वक्त एक ऐसे परिंदे की तरह है जो कभी एक शाख पर दोबारा नहीं बैठता, जो लम्हा गुजर गया वो इतिहास बन जाता है। वक्त की उड़ान वाकई एक ऐसी हकीकत है जिसे ना तो रोका जा सकता है और ना ही बांधा जा सकता है। ये एक ऐसी खामोश रफ्तार है जो बिना किसी शोर के सब कुछ बदल देती है, बचपन की मासूमियत से जवानी के जोश और फिर बुढ़ापे के तजुर्बे तक, ये सफर इसी उड़ान की बदौलत तय होता है। इन्होंने एक शेर मुनीर साहब का साझा किया है हमारे साथ। वक्त की धूप हो या तेज हवाएं कौन, वक्त की धूप हो या तेज हवाएं मुनीर, कौन रुका है यहां, किसकी उड़ान बाकी है। एक श्रोता ने बताया कि पल एक ऐसी चैतन्य की अद्भुत व्यवस्था है जो ज्यादा देर किसी से नहीं जुड़ी रहती है। सुख आनंद गानों के साथ जुड़ता जरूर है लेकिन गानों से अलग भिन्न रहता है, इसलिए चैतन्य को हर गाने में आनंद मिलता है। पल पल हर पल विविध भारती के कार्यक्रम से सुखी रहता है और फिर सुख मरता नहीं है। क्या बात कही है, सुखी आनंद चैतन्य का स्वभाव है, इसलिए 24/7 पल हर पल व्यक्त रहती है। परंतु हम मानव को संसार की वस्तुओं में खुशी सुख है ऐसा अभिप्राय मान्यता मात्र है। बड़ी गहरी बात कही आपने। अब जरा इस गाने को सुनिए और बताइए कि ये गाना किस जगह पर फिल्माया गया है।

वाकई दुनिया फानी है और कुछ ही पलों का साथ रहता है सबका। हमारा आपका साथ भी अब शायद कुछ ही पलों का है और अगले गीत का शायद हम आपको थोड़ा सा हिस्सा ही सुनवा सके। जवाब बिल्कुल सही भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया। द बर्निंग ट्रेन फिल्म में गाना ट्रेन में फिल्माया गया, जितेंद्र नीतू सिंह आशा सचदेव पर, बिल्कुल सही जवाब। और एक याद ताजा की है, प्रेम की। आठवीं कक्षा में पढ़ते अधकचरे प्रेम की याद बहुत बात समझ पाए। मैं कक्षा में आगे बैठता तो एक 14 साल की लड़की बार बार हमसे मदद मांगती, ये सवाल बताओ, ये ट्रांसलेशन बताओ। मेरी आधी कुर्सी पर बैठ जाती, मैं उसकी कॉपी पर जवाब लिखकर डांट देता था। बाद में एक एक्सीडेंट में घायल वो बहुत दिनों की पीड़ा के बाद गुजर गई। उसकी सहेली ने बताया था वो तुमसे प्यार करने लगी थी। उफ उफ उफ, ये जो जानकारी बाद में होती है ये सच में दिल तोड़ देती है। एक और श्रोता ने अपनी 1990 में हुई शादी की जो पोस्टकार्ड साइज के 100 फोटो याद के लिए अभी भी सुरक्षित रखे हैं, क्या बात है। ऐसी यादें तो बड़ी ही खूबसूरत होती हैं और बड़े दिनों तक गुदगुदाती रहती हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि वर्तमान के महत्व के सुंदर भावों में व्यक्त करती है आज की इबारत। स्मृति कभी खुशियां देती है तो कभी बिछड़ने और टूटने का दर्द याद दिलाती है। मन अक्सर यादों की गलियों में भटक जाता है, लेकिन जीवन हमें यह संदेश देता है कि बीते कल में खोने के बजाय आज को संभालना जरूरी है। समय की कभी रुकता नहीं, इसलिए वर्तमान का हाथ थाम कर जीवन को जीना ही आज का सबसे बड़ा सच है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि समय और समझ दोनों एक साथ किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब तक समझ आती है तो समय निकल जाता है। वैसे समय में कल आज और आज कल में बदल जाएगा और जल्द ही एक समय ऐसा आएगा जो समय तेरा था वो तेरा होके तेरा ना रह जाएगा। बहुत गहरी बात कही आपने। इसी बात पर ये गीत सुनिए और बताइए कि आवाजें किन की हैं। साथ ही चलते चलते फिल्म का नाम भी बता दीजिए।

हम पुकारे रहे थे कि जवाब आ गया। फिल्म परिणय का गाना है ये, आवाजें मन्ना डे और वाणी जयराम की हैं। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अब इस कार्यक्रम का समय हो रहा है खत्म। तो सुरीला सफर में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारती।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में औद्योगिक संरचना का विकास हो रहा है और अब लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। पटना के गांधी मैदान में अग्निशमन वाहनों और एआई आधारित आधुनिक अग्निशमन नियंत्रण कक्ष का लोकार्पण एवं उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि प्रदेश में नए उद्योगों के लिए वातावरण तैयार हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के बाद अब उद्योगों की स्थापना पर विशेष बल दिया गया है और नए नए औद्योगिक घराने प्रदेश में निवेश के लिए आगे आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बिहारवासियों से बिहार की समृद्धि में योगदान देने के लिए लौटने की अपील भी की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सहयोग कार्यक्रम के तहत प्राप्त आवेदनों का 30 दिनों के भीतर निष्पादन किया जाना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस संबंध में सचेत किया। उन्होंने कहा कि निष्पादित कार्यों की रिपोर्ट समय अवधि के भीतर नहीं देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निवारण के लिए कल से पंचायत स्तर पर राज्यव्यापी सहयोग शिविर की शुरुआत हो रही है। 7 निश्चय 3 के सबका सम्मान जीवन आसान विजन के तहत इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं और प्रशासनिक तंत्र को सीधे जनता के द्वार तक पहुंचाना है। ये शिविर प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित किए जाएंगे। राज्य के अधिकतर हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज रोहतास, भभुआ और बक्सर जिले में कई स्थानों पर लू चलने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि पटना, नालंदा, जहानाबाद, जमुई, मुंगेर, औरंगाबाद समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भागों में अधिकतर स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा। इन भागों में अधिकतम तापमान में औसतन 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की जा सकती है। वहीं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सुपौल, अररिया समेत

0: राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भागों में कई स्थानों पर आज बारिश की संभावना है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आकाशवाणी पटना का प्रादेशिक समाचार एकांश आज से भोजपुरी समाचार का प्रसारण शुरू कर रहा है। भोजपुरी समाचार आकाशवाणी के पटना केंद्र समेत राज्य के विभिन्न केंद्रों से शाम 6:05 से प्रसारित किए जाएंगे। बुलेटिन की शुरुआत के अवसर पर वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। भोजपुरी समाचार बुलेटिन को न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुना जा सकता है। इसके अलावा ये प्रादेशिक समाचार एकांश के यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज _ पटना पर भी उपलब्ध होगा। गौरतलब है कि आकाशवाणी पटना से पहले से ही हिंदी, उर्दू और मैथिली भाषाओं में प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों का प्रसारण हो रहा है। रोहतास जिले के सासाराम रेलवे स्टेशन पर आज सुबह पटना सासाराम पैसेंजर ट्रेन की एक बोगी में आग लग गई। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि फायर ब्रिगेड और रेल कर्मियों के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया। श्री चंद्र ने बताया कि घटना के कारणों की जांच की जा रही है। केंद्रीय खनन एवं कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद दुबे ने आज नरकटियागंज रेलवे स्टेशन से दरभंगा जाने वाली मेमू सवारी गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नरकटियागंज दरभंगा मेमू ट्रेन सेवा शुरू होने से चंपारण और मिथिलांचल की बड़ी आबादी को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील कुमार और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन ने समाहरणालय सभागार में संभावित बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति से निपटने की पूर्व तैयारियों की समीक्षा की। सीवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र में पुलिस के साथ मुठभेड़ में आभूषण दुकान में लूटकांड का मुख्य आरोपी अंकित कुमार सिंह घायल हो गया। उसे दोनों पैर में गोली लगी है। पुलिस अभिरक्षा में सदर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। रोहतास के जिलाधिकारी उदिता सिंह ने आज जनजातीय गरिमा उत्सव का उद्घाटन किया। कल से 25 मई तक जिले के 5 प्रखंडों के 19 जनजातीय बहुल गांवों में उत्सव के तहत शिविर लगाए जाएंगे। शिविर में लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी के साथ साथ लाभार्थियों की पहचान कर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

0: ضلع میں کئی مقامات پر لو چلنے کے امکان کو لے کر یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ نے اپنی پیشگوئی میں کہا ہے کہ پٹنہ، نالندہ، جہان آباد، جموئی، منگیر اور اورنگ آباد سمیت ریاست کے جنوب مغرب، جنوب وسط اور جنوب مشرقی علاقوں میں بیشتر مقامات پر موسم خشک رہے گا۔ ان علاقوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں اوسطاً 2 سے 3 ڈگری سیلسیس کا اضافہ درج کیا جا سکتا ہے۔ وہیں مغربی چمپارن، مشرقی چمپارن، گوپال گنج، سپول اور ارریا سمیت ریاست کے شمال مغرب اور شمال مشرقی علاقوں میں کئی مقامات پر آج بارش کا امکان ہے۔ آکاشوانی پٹنہ کا ریجنل نیوز یونٹ آج سے بھوجپوری سماچار کا نشریہ شروع کر رہا ہے۔ بھوجپوری سماچار آکاشوانی کے پٹنہ کیندر سمیت ریاست کے مختلف مراکز سے شام 6:05 سے نشر کیے جائیں گے۔ بلٹن کی شروعات کے موقع پر والمیکی نگر کے رکن پارلیمنٹ سنیل کمار مہمان خصوصی کے طور پر موجود رہیں گے۔
1: آکاشوانی پٹنہ روہا سبھی خاطر لے کے آ رہا با بھوجپوری میں سماچار۔ आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभे खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहे बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
0: रोहतास जिले के सहसराम रेलवे स्टेशन पर आज सुबह पटना सहसराम पैसेंजर ट्रेन की एक बोगी में आग लग गई। इस हादसे में किसी की हलाकत की खबर नहीं है। वस्त मशरकी रेलवे के चीफ राबता अफसर सरस्वती चंद्र ने बताया कि फायर ब्रिगेड और रेल मुलाजमीन के ताउन से आग पर काबू पा लिया गया। जनाब चंद्र ने बताया कि हादसे की वजूहत की जांच की जा रही है। कानकनी और कोयला के मरकजी वजीर मामलिकत सतीश चंद्र दुबे ने आज नरकटियागंज रेलवे स्टेशन से दरभंगा जाने वाली मेमू सवारी गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नरकटियागंज दरभंगा मेमू ट्रेन सर्विस शुरू होने से चंपारण और मिथिलांचल की बड़ी आबादी को फायदा होगा। इस मौके पर वाल्मीकि नगर के रुकने पार्लियामेंट सुनील कुमार और दीगर मुअज्जज अफराद मौजूद थे। अररिया के जिला मजिस्ट्रेट विनोद दुहन ने कलेक्ट्रेट अहाते में मुमकिन सैलाब और खुशहाली की सूरतहाल से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। सिवान जिले के मैरवा थाना इलाके में पुलिस के साथ तसादुम में जेवरात की दुकान में लूट मामले का अहम मुलजिम अंकित कुमार जख्मी हो गया। उसे दोनों पैर में गोली लगी है। पुलिस हिरासत में सदर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। रोहतास के जिला मजिस्ट्रेट उदिता सिंह ने आज जनजातीय गरिमा उत्सव का इफ्तिताह किया। कल से 25 मई तक जिला के सभी ब्लॉकों के 19 कबायली अक्सरित वाले गांव में उत्सव के तहत कैंप लगाए जाएंगे। कैंप में लोगों को सरकारी मंसूबों की जानकारी के साथ साथ मुस्तफिदीन की शनाख्त करके मुख्तलिफ फलाही मंसूबों से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। आइए सुनते हैं रोजगार सूचना। बिहार लोक सेवा आयोग 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आलोक में कुल 1230 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। आयु सीमा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpsc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग BPSSC अधिनायक अनुदेशक हवलदार इंस्ट्रक्टर के कुल 122 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। आयु सीमा उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 जून 2026 है।

निवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpssc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। इंडियन आर्मी CSBO ग्रेड 2 के कुल 190 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। आयु सीमा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 31 मई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianarmy.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्टुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्टुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्टुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही।

0: संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा एआई गलियारे की शुरुआत से लेकर अगले पांच वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
1: इस यात्रा के दौरान छह प्रमुख उपलब्धियां सामने आईं। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी एआई कॉरिडोर यानी सीटैक का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र एआई, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले पांच वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन एसएमई और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी लीडिट के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
2: നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തയും
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रूपये हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने

0: सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने दो प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
1: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है, पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्लीवासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
2: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले यह सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
3: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले

0: एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। यह हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आपने ट्यून किया है देश का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति ये मीठा सा गीत हलाकू फिल्म से लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में सुनवा रहे हैं। शैलेंद्र के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने।

नजरों का दामन बिछाती ये प्यार की पुकार भला कौन अनसुना करेगा। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। तो आइए अब सुनते हैं मन की दहलीज से गुजरकर दिल के आंगन तक पहुंचता ये गीत क्या कह रहा है। तीन बहुरानिया फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में सुनवा रहे हैं। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से संवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब जो गाना सुनवाने जा रहे हैं वो वचन फिल्म से है। मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने गाया है, प्रेम धवन ने लिखा है और रविशंकर ने इसे संगीत से सजाया है। तो चलिए हाथों में हाथ लेकर और दिल को साथ लेकर सुनते हैं ये मीठा सा नगमा।

मोहब्बत की एक खूबसूरत सी इल्तिजा उड़न खटोला फिल्म से आपने सुनी लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा था शकील बदायूनी ने और धुन बनाई थी नौशाद ने। और अब सुनवा रहे हैं तुमसा नहीं देखा फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। ओपी नैयर का संगीत है, मजरूह सुल्तानपुरी का गीत है।

तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ देखो कसम से कहते हैं तुमसे हाँ तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ

जीवन की वीणा पर पसता रहे यूं ही मीठा मीठा प्राणों का राग और जीवन में छाई रहे बहार, इसी संदेश के साथ अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करते हैं।

0: सखी सहेली में सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। और हमारे साथ हैं
1: मंजरी वर्मा। पर आपकी इस स्टाइल ने मुझे एकदम चौंका दिया कि अब क्या बोलने वाली है।
0: यही तो, इसीलिए तुम देख रहे थे ना मंजरी, लेकिन बिल्कुल सजग सतर्क बैठी थी।
1: बिल्कुल।
0: नमस्कार। तो मंजरी का भी
1: हाँ, आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार।

0: और साथ में हमारी जो सखियां हमें सखा भाई सुन रहे हैं उन सभी को भी मेरा प्यार भरा, हम दोनों की तरफ से प्यार भरा नमस्कार कह लेते हैं। और आज आपके साथ काफी अरसा हो गया, जिसे कहते हैं सखी सहेली में हम लोग
1: मुद्दत हो गई
0: जमाने गुजर गए, आपसे मिलना हो ही नहीं पा रहा था और मुझे याद ही नहीं आ पा रहा था कि कब मैंने आपके साथ ड्यूटी करी थी। तो आज आपको देख कर इस मंच पर बड़ा अच्छा लगा कि फिर से हमारा आपका साथ होगा और फिर से बहुत सारी बातें होंगी।
1: तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये तो बताओ ना कि ये जो मुलाकात है ये खास बनने वाली है, तो इस खास बात में क्या क्या खास बातें हैं?
0: भाई खास बात है कि उत्तर प्रदेश के व्यंजन हम लेकर के आए हैं।
1: क्या बात है?
0: जिसमें बनारस की टमाटरी चाट और छेना दही बड़ा।
1: बस बस बस, मतलब मुंह में पानी भरने का इंतजाम तुमने पहले ही कर दिया।
0: पहले ही कर दिया। मुझे याद है कि एक मेरी चीज पेंडिंग हो गई, आपको पिलानी थी लस्सी आपने बोला था मुझे याद है। तो मैं वही सोच रही थी जब व्यंजन लेके आ रही थी, मैं सोच रही थी कि आज फिर राजू जी कोई चीज मुझे एक दे देंगी तो मेरे पास दो चीजें पेंडिंग हो जाएंगी पिलाने खिलाने की। तो चलिए ये तो हो गई बात है हमारे व्यंजन की। इसके बाद एक विषय हमने लिया है, मोबाइल के कारण जीवन साथी से तनाव। तो ये बड़ा अच्छा सा विषय, प्यारा सा विषय है।
1: ये तो बहुत ज्वलंत समस्या है क्योंकि ये तनाव तो घर घर गूंजने लगा है। कई बार सुनते हैं कि भाई हाँ मोबाइल में ही सब लगे हुए हैं। हाँ
0: जी।
1: और तो, आज एक खास दिन भी है
0: जी।
1: खास एक क्यों, दो खास दिन है। हाँ, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस है और
0: अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और कथा सुधा लेकर हम आए हैं। तो कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो, इसका भाग दो, यानी अंतिम भाग हम आज सुनेंगे।
1: बड़ी मजेदार कहानी है।
0: पिछली बार भी हमने सुनी थी और आज भी हम सुनेंगे।
1: हाँ।
0: तो बड़ा अच्छा लगेगा सुनकर के। लेकिन उससे पहले राजुल जी क्यों ना एक गीत सुन लिया जाए।
1: हाँ बिल्कुल, सुनने सुनाने की इतनी बातें हो रही तो बिल्कुल गाना तो बनता है।

0: तो मंजरी कितना प्यारा सा नीरज का लिखा हुआ ये गीत सुना हमने, सचिन देव बर्मन का संगीत, तेरे मेरे सपने फिल्म का, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें। और भाई सुनने शुरुआत में ही आपने कसम ले ली और कसम दे दी।
1: लेकिन वो किस चीज की थी?
0: साथ रहने की, जुदा ना होने की, और कथा सुधा में भी बराबर अपनी भागीदारी जताने की।
1: बिल्कुल। तो कथा सुधा जो हम आज सुनाएंगे तो उसके लिए एक संदेश आया है। ये लिखते हैं कि कोई दुख ना हो तो बकरी पाल लो। प्रेमचंद ने इस कहानी में मध्यम वर्गीय व्यक्ति की विवशता, उसकी कुंठा और पारिवारिक कलह को हास्य के माध्यम से बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। नौकर और बीबी के सामने मालिक की बेबसी पाठकों को गुदगुदाती भी है और सोचने पर भी मजबूर करती है। तो भाई इतनी अच्छी सी कहानी के लिए इन्होंने लिखा है, तो क्यों ना हम लोग कथा सुधा पहले सुना देते हैं।
0: चलो सुनते हैं पहले। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
2: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो। पिछले भाग में आपने सुना,
3: उन दिनों दूध की तकलीफ थी। आखिर एक दिन एक दोस्त से मैंने कहा, भाई आओ साझे में एक गाय ले ले, तुम्हें भी दूध का आराम होगा, मुझे भी। दूध आने लगा, रोज रोज की झंझट से मुक्ति मिली। तीसरे महीने चड्ढा का तबादला हो गया। मैं अकेले गाय न रख सकता था, गाय आधे दामों बेच दी गई। आखिर ये सलाह हुई कि एक बकरी रख ली जाए, लेकिन एक ही हफ्ते में दूध की मात्रा कम होने लगी। पंडित जी से हाल कहा तो उन्होंने कहा,
4: देहात की बकरी है, यहाँ बंधे बंधे दूध कम हो जाए तो ताज्जुब नहीं, इसे जरा टहला दिया कीजिए।
3: लेकिन शहर में बकरी को टहलाए कौन और कहां, इसलिए ये तय हुआ कि बाहर कहीं मकान लिया जाए। झटपट मकान बदला, एक काछी से तय कर लिया कि रोजाना बकरी के लिए कुछ हरियाली जाया करे। मगर इतनी कोशिश करने पर भी दूध की मात्रा में कुछ खास बढ़त नहीं हुई। मेरे खिदमतगार को बकरी लेकर बाग में जाना बुरा मालूम होता था। दूसरे दिन मैं दफ्तर से जरा जल्द चला आया और चटपट बकरी को लेकर बाग में जा पहुंचा। ये ख्याल आया, अगर सूखी पत्तियां खाने से दूध की मात्रा बढ़ गई तो यकीनन हरी पत्तियां खिलाई जाएं तो इससे कहीं बेहतर नतीजा निकले। और शाम को बकरी को साथ लेकर पत्तियां तोड़ने लगा। अचानक काछी एक तरफ से आ निकला,
5: आपके हाथ में ये लग्गा अच्छा नहीं लगता, लाइए मैं काट देता।
3: और देखते देखते हरी पत्तियों का ढेर लगा दिया। उसने थोड़ी सी पत्तियां बगल में उठा ली और बोला,
5: चलिए मैं रख देता हूं।

0: तो किसी को मुफ्त में दे देता। शाम होते ही चुड़ैल अपनी चीख पुकार शुरू कर देगी और घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। और आवाज भी कितनी कर्कश और मनहूस होती है। शास्त्रों में लिखा भी है, जितनी दूर उसकी आवाज जाती है उतनी दूर देवता नहीं आते। स्वर्ग की बसने वाली हस्तियां जो अप्सराओं के गाने सुनने की आदि है, उसकी कर्कश आवाज से नफरत करे तो क्या ताज्जुब। मुझ पर उसकी कर्ण कटु पुकारों का ऐसा आतंक सवार था कि दूसरे दिन दफ्तर से आते ही मैं घर से निकल भागा। लेकिन एक मील निकल जाने पर भी ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज मेरा पीछा किए चली आती है। अपने इस चिड़चिड़ेपन पर शर्म भी आ रही थी। जिसे एक बकरी रखने की भी सामर्थ्य ना हो वो इतना नाजुक दिमाग क्यों बने। और फिर तुम सारी रात तो घर से बाहर रहोगे नहीं, 8 बजे पहुंचोगे तो क्या वो गीत तुम्हारा स्वागत न करेगा। सहसा एक नीची शाखों वाला पेड़ देखकर मुझे बरबस उस पर चढ़ने की इच्छा हुई। सपाट तनों पर चढ़ना मुश्किल होता है, यहां तो 6-7 फुट की ऊंचाई पर शाखें फूट गई थी। हरी हरी पत्तियों से पेड़ लदा खड़ा था और पेड़ भी था गूलर का, जिसकी पत्तियों से बकरियों को खास प्रेम है। मैं इधर 30 साल से किसी रुख पर नहीं चढ़ा, वो आदत जाती रही, इसलिए आसान चढ़ाई के बावजूद मेरे पांव कांप रहे थे। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और पत्तियां तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा। यहां अकेले में कौन मुझे देखता कि मैं पत्तियां तोड़ रहा हूं। अभी अंधेरा हुआ जाता है, पत्तियों का एक गट्ठा बगल में दबाऊंगा और घर जा पहुंचूंगा। मगर इतने पर भी बकरी ने कुछ ची चपड़ की तो उसकी तो शामत ही आ जाएगी। अभी मैं ऊपर ही था कि बकरियों और भेड़ों का एक गोल न जाने किधर से आ निकला और पत्तियों पर पिल पड़ा। मैं ऊपर से चीख रहा था मगर कौन सुनता, चरवाहे का कहीं पता नहीं, कहीं दुबक रहा होगा, देख लिया जाऊंगा तो गालियां पड़ेगी। झल्लाकर नीचे उतरने लगा। एक एक पल में पत्तियां गायब होती जाती थी। उतरकर एक एक की टांग तोड़ूंगा, यकायक पांव फिसला और मैं 10 फीट की ऊंचाई से नीचे आ गिरा। कमर में ऐसी चोट आई कि 5 मिनट तक आंखों तले अंधेरा छा गया। खैरियत हुई कि और ऊपर से नहीं गिरा, नहीं तो यही शहीद हो जाता। बारे में मेरे गिरने के धमाके से बकरियां भागी और थोड़ी सी पत्तियां बच रही। जब जरा होश ठिकाने हुए तो मैंने उन पत्तियों को जमा करके एक गट्ठा बनाया और मजदूरों की तरह उसे कंधे पर रखकर शर्म की तरह छिपाए घर चला। रास्ते में कोई दुर्घटना नहीं हुई। जब मकान कोई 4 फल्लांग रह गया और मैंने कदम तेज किए कि कहीं कोई देख ना ले, तो वो काछी सामने से आता दिखाई दिया। कुछ ना पूछो उस वक्त मेरी क्या हालत हुई। रास्ते के दोनों तरफ खेतों की ऊंची मेड़े थी जिनके ऊपर नागफनी निकलेगा और भगवान जाने क्या सितम ढाए। कहीं मुड़ने का रास्ता नहीं, सिर झुकाकर इस तरह निकल जाना चाहता था कि कोई मजदूर है। तले की सांस तले थी, ऊपर की ऊपर, जैसे वो काछी कोई खूंखार शेर हो। बार बार ईश्वर को याद कर रहा था कि हे भगवान, तू ही आफत के मारे हुओं का मददगार है, इस मर्दूत की जबान बंद कर दे, एक क्षण के लिए उसकी आंखों की रोशनी गायब कर दे। वो यंत्रणा का क्षण जब मैं उसके बराबर 1 गज के फासले से निकला, एक एक कदम तलवार की धार पर पड़ रहा था, शैतानी आवाज कानों में आई।
1: कौन कौन है रे?

0: कहां से बत्तियां तोड़े लाता है, कौन है?
1: मुझे मालूम हुआ नीचे से जमीन निकल गई और मैं उसके गहरे पेट में जा पहुंचा हूं। रोए बरछियां बने हुए थे, दिमाग में उबाल सा आ रहा था, शरीर को लकवा सा मार गया, जवाब देने का होश ना रहा। तेजी से दो तीन कदम आगे बढ़ गया, मगर वो ऐच्छिक क्रिया न थी, प्राण रक्षा की सहज क्रिया थी कि एक जालिम हाथ गट्ठे पर पड़ा और गट्ठा नीचे गिर पड़ा। फिर मुझे याद नहीं क्या हुआ, मुझे जब होश आया तो मैं अपने दरवाजे पर पसीने से तर खड़ा था, जैसे गोया मिर्गी के दौरे के बाद उठा हूं। इस बीच मेरी आत्मा पर उपचेतना का आधिपत्य था और बकरी की वो घृणित आवाज, वो कर्कश आवाज, वो हिम्मत तोड़ने वाली आवाज, वो दुनिया की सारी मुसीबतों का खुलसा, वो दुनिया की सारी लानतों की रूह कानों में चुभी जा रही थी। बीवी ने पूछा,
2: आज कहाँ चले गए थे? इस चुड़ैल को जरा बाग भी ना ले गए? जीना मुहाल किए देती है ये, घर से निकलकर कहीं चली जाऊं ऐसा लगता है।
1: मैंने इत्मीनान दिलाया, भगवान आज चिल्ला लेने दो, कल सबसे पहला काम ये करूंगा कि इसे घर से निकाल कर बाहर करूंगा, चाहे कसाई को क्यों ना देना पड़े। अरे और लोग ना जाने कैसे बकरियां पालते हैं।
2: बकरी पालने के लिए कुत्ते का दिमाग चाहिए।
1: सुबह को बिस्तर से उठकर इसी फिक्र में बैठा था कि इस काली बला से क्यों कर मुक्ति मिले, कि सहसा एक गडरिया बकरियों का एक गल्ला चराते हुए आ निकला। मैंने उसे पुकारा और उससे अपनी बकरी चराने की बात कही। गडरिया राजी हो गया, यही उसका काम था। मैंने पूछा, क्या लोगे?
3: हुजूर 8 आने बकरी मिलते हैं।
1: मैं 1 रुपया दूंगा, लेकिन बकरी कभी मेरे सामने ना आवे। गडरिया हैरत में पड़ गया।
3: मरका ही है क्या बाबूजी?
1: अरे नहीं नहीं, बहुत सीधी है, बहुत सीधी है, बकरी क्या मारेगी, लेकिन मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता।
3: अभी तो दूध देती है।
1: हाँ, शेर सवा शेर दूध देती है।
3: दूध आपके घर पहुंच जाया करेगा बाबूजी।
1: तुम्हारी मेहरबानी।
3: कल से दूध पहुंचा दिया करूंगा बाबूजी।
1: जिस वक्त बकरी घर से निकली, मुझे ऐसा मालूम हुआ मेरे घर का पाप निकला जा रहा है। बकरी भी खुश थी, गोया कैद से छूटी है। गडरिये ने उसी वक्त दूध निकाला और घर में रखकर बकरी को लिए चला गया। ऐसा ग्राहक उसे जिंदगी में शायद पहली ही बार मिला होगा। 1 हफ्ते तक दूध थोड़ा बहुत आता रहा, फिर उसकी मात्रा कम होने लगी, यहां तक कि 1 महीना खत्म होते होते दूध बिल्कुल बंद हो गया। मालूम हुआ बकरी गाभिन हो गई है। मैंने जरा भी ऐतराज ना किया, काछी के पास गाय थी, उससे दूध लेने लगा। मेरा नौकर खुद जाकर दूध लाता था। कई महीने गुजर गए, गडरिया महीने में 1 बार आकर अपना रुपया ले जाता। मैंने कभी उससे फिर बकरी का जिक्र ना किया। उसके ख्याल से ही मेरी आत्मा कांप जाती थी। गडरिये को अगर चेहरे का भाव पढ़ने की कला आती तो वो बड़ी आसानी से अपनी सेवा का पुरस्कार दुगना कर सकता था। एक दिन दरवाजे पर बैठा हुआ था कि गडरिया अपनी बकरियों का गल्ला लिए आ निकला। मैं उसका रुपया लेने अंदर गया कि क्या देखता हूं कि मेरी बकरी 2 बच्चों के साथ मकान में आ पहुंची। वो पहले सीधी उसी जगह गई जहां बंधा करती थी, फिर वहां से आंगन में आई और शायद परिचय दिलाने के लिए मेरी बीवी की तरफ ताकने लगी। उसने दौड़कर 1 बच्चे को गोद में ले लिया और कोठरी में जाकर महीनों का जमा चोकर निकाल लाई और ऐसी मोहब्बत से बकरी को खिलाने लगी जैसे बहुत दिनों की बिछुड़ी हुई सहेली आ गई हो। न वो पुरानी कटुता थी, न वो मनमुटाव। कभी बच्चे को चुमकारती, कभी बकरी को सहलाती थी और बकरी डाक गाड़ी की रफ्तार से चोकर उड़ा रही थी। तब मुझसे बोली,

0: वाह, अरे कितने खूबसूरत बच्चे हैं।
1: हाँ बहुत खूबसूरत।
0: ये चाहता है इनमें से एक ले लूं, पाल लूं।
1: तबीयत नहीं भरी अभी तक।
0: तुम तो बड़े निर्मोही हो।
1: चोकर खत्म हो गया। बकरी इत्मीनान से विदा हो गई। दोनों बच्चे भी उसके पीछे पीछे फुदकते चले गए। देवी जी आंख में आंसू भरे ये तमाशा देखती रही। गडरिया ने चिलम भरी और घर से आग मांगने आया। चलते वक्त बोला,
2: कल से दूध पहुंचा दिया करूंगा बाबूजी।
1: देवी जी ने कहा,
0: और दोनों बच्चे क्या पियेंगे?
1: और मुझे रात को वो मर्मांतक घटना याद आ गई। मैंने कहा, दूध लाओ या न लाओ तुम्हारी खुशी, लेकिन बकरी को इधर ना लाना। उस दिन से न वो गडरिया नजर आया, न वो बकरी, और न मैंने पता लगाने की कोशिश की। लेकिन देवी जी उसके बच्चों को याद करके कभी कभी आंसू बहाकर रोती है।
3: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो का दूसरा और अंतिम भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है, सूत्रधार जी श्याम, बीवी ममता सिंह, पंडित जी दीपक केसावलेकर, काछी जयंत पात्रिकर, काछी की बीवी चंचल वर्मा, नौकर दीपक केसावलेकर, गड़रिया राजेश झा, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
4: मंजरी, देखिए एक हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बरसों पहले हमारे पास एक बकरी थी जिसे चरवाहे के घर तक छोड़ने के लिए मैं और मेरा कजन जाते थे, लेकिन आज इस बात को 50 साल बीत गया है, ना वतन में रहते हैं ना जगह है। सूरत शहर में तो फ्लैट की 9वीं मंजिल है। अब कोई दुख तो नहीं, केवल ये दुख है कि वो बचपन समय और दादाजी पिताजी काकाजी सब चले गए। कजन के साथ ही पुरानी यादें बांटूंगा।
5: क्या बात है, और वाकई में बहुत अच्छा लगा इनका किस्सा सुनकर के। और इसी के साथ समय हो चला है अंतराल का, तो लेते हैं अंतराल।

0: तो राजुल जी, अंतराल के बाद सभी का एक बार स्वागत करते हुए हम
1: फिर से स्वागत है
0: जी। और हम बात करने वाले हैं विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, जो हर वर्ष 18 मई को मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य HIV एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना है और ऐसी प्रभावी वैक्सीन के विकास के लिए वैज्ञानिकों, डॉक्टर और संस्थाओं के प्रयास को सम्मान देना है।
1: और इसकी रोकथाम के लिए, जो एड्स है इसकी रोकथाम के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी टीका खोजने की दिशा में चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधानों को भी बढ़ावा मिले, ये भी इस दिन का उद्देश्य है
0: जी। और ये दिवस पहली बार वर्ष 1998 में मनाया गया था। इसकी प्रेरणा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के एक भाषण से मिली थी, जिसमें उन्होंने एड्स वैक्सीन विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था।
1: दरअसल ये एक वायरस है HIV, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है, और यदि समय पर इसका इलाज ना हो तो ये एड्स का रूप ले सकता है। लोगों में एड्स के बारे में जानकारी बढ़े, सुरक्षित जीवन शैली के बारे में वो जाने, उसे अपनाएं, और वैक्सीन अनुसंधान हो ज्यादा से ज्यादा, संक्रमित लोगों के प्रति भेदभाव ना बरता जाए, क्योंकि कई बार एड्स से पीड़ित लोगों को घर में बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है।
0: जी बिल्कुल। और जो इसके बचाव के लिए है कि आप संक्रमित सुई या ब्लेड का उपयोग ना करना है, और समय समय पर HIV की जांच कराना है, अपने रिश्तों को भी अच्छे से बना के चलना है, जागरूकता और सही जानकारी इसके बारे में फैलाना जरूरी है। और संदेश ये देता है कि जागरूकता, शोध और सही

0: लोगों की एचआईवी एड्स मुक्त भविष्य की कुंजी है।
1: और विश्व एड्स टीकाकरण दिवस 2026 का जो टॉपिक है, विषय है, वो है पुनर्विचार करें, पुनर्निर्माण करें, आगे बढ़ें। ये विषय एचआईवी वैक्सीन अनुसंधान की दिशा में जो सारे विश्व में प्रयास चल रहे हैं उनको मजबूत करता है, जन जागरूकता को बढ़ाता है, रोकथाम रणनीतियों में जो नई नई बातें आती हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले इस बात की कोशिश करता है, और स्वास्थ्य सेवा को फिर से बहाल करके एचआईवी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का पर भी बल देता है।
0: जी, और इसी के साथ हम लोग गीत सुन लें।
1: हाँ, वो तो बहुत जरूरी है।

0: नया दौर फिल्म का ये मस्ती भरा गाना हमने सुना, और अब अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की बात करें।
1: बिल्कुल, मानव सभ्यता का इतिहास, संस्कृति, कला और परंपराएं किसी राष्ट्र की अमूल्य धरोहर होती हैं, और इन धरोहरों को सुरक्षित रखने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य संग्रहालय करते हैं। संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं का भंडार नहीं होते, बल्कि वे ज्ञान, शिक्षा और प्रेरणा के महत्वपूर्ण केंद्र भी हैं। इन्हीं के महत्व को समझने के लिए हर वर्ष 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है।
0: और इस दिन की शुरुआत वर्ष 1977 में हुई थी, जब इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम

0: निगम ने इस बात का निर्णय लिया था और इसका उद्देश्य तो यही है कि लोगों को संग्रहालयों की भूमिका और उसके महत्व के प्रति जागरूक करना। दुनिया में अनेक देशों में ये दिवस बहुत उत्साह से मनाया जाता है और बहुत सारे संग्रहालयों में प्रदर्शनी भी लगाई जाती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कार्यशालाएं होती हैं और साथ ही साथ शैक्षिक गतिविधियां भी होती हैं।
1: बिल्कुल राजू जी, और संग्रहालय जो है वो हमारे इतिहास और संस्कृति के संरक्षक होते हैं। इनमें प्राचीन मूर्तियां, ऐतिहासिक दस्तावेज, कलाकृतियां, हथियार, वस्त्र और वैज्ञानिक खोजों से संबंधित वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती हैं। ये हमें हमारे अतीत से जोड़ने और ये समझने में सहायता करते हैं कि मानव सभ्यता ने किस प्रकार विकास किया है। संग्रहालय जब भी हम लोग जाते हैं तो सभी को लेके जाते हैं, पिकनिक पर भी आपने देखा होगा स्कूल वाले भी बच्चों को लेके जाते हैं, तो संग्रहालय जाने से बच्चों को ज्ञान बढ़ता है और पुरानी चीजों को देखते हैं कि क्या चीजें थी जो हम नहीं जानते जिनके बारे में, वो बहुत सारी जानकारियां।
0: हाँ, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कई संग्रहालयों में उस समय के वस्त्र, पुराने पुराने वस्त्र की, जैसे एक संग्रहालय में देखा गया कि उस समय कैसा बनारसी के या किमखाप कैसा चलता था, मलमल कैसा होता था, तो ये सब देखने को मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है।
1: बहुत अच्छा लगता है, वजनदार चीजें जो दिखती हैं, ढाल तलवार ये सब, कितनी वजन वाली, कैसे वो लेके चलते होंगे हथियार, घोड़े पर दौड़ना, लड़ाई करना, उस समय के जमाने के जो होते हैं वो सब देख के तो एकदम अद्भुत लगता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और आजकल की बात करें तो डिजिटल युग में संग्रहालय आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं और अब ऑनलाइन प्रदर्शनियां और वर्चुअल टूर के माध्यम से लोग घर बैठे भी संग्रहालयों का अनुभव करते हैं। इसमें नई पीढ़ी में इतिहास और संस्कृति के प्रति रुचि बढ़ रही है।
0: तो ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि हम अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षित करें, उनको संरक्षित करने के उपाय करें और जागरूक भी रहें और हमें पता रहे कि ये संग्रहालय जो है वो हमारे गौरव और पहचान के प्रतीक हैं। हमें इनका सम्मान करना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को इनके महत्व से परिचित कराना चाहिए। वास्तव में संग्रहालय अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाली अमूल्य कड़ी है। देखो देखिए, जैसे जब हम बात करते हैं ना कि ये इनको संरक्षित करना चाहिए, तो कई बार ये कहा जाता है कि इस पर कोई भी अगर शोकेस लगा है तो उसमें अंदर जो चीजें बंद हैं वो तो चलिए सुरक्षित हैं, फिर भी हम उस शीशे पर बार बार हाथ लगाते हैं,
1: सब नहीं करना चाहिए।
0: और कई बार जो चीजें खुले में रखी हैं उनको भी हम उठाने की कोशिश करने लगते हैं, हालांकि वो थोड़ी सी दूर पर रहती हैं और बीच में एक
1: डोरी लगी
0: जिससे कि बाधक बाधा रहे, ना पहुंचा जाए, लेकिन फिर भी लोग ऐसा करते हैं। तो ये सब पुराने अच्छा बहुत समय से संजो कर रखा गया है, इनको इसी तरह से हम सुरक्षित रख सकते हैं कि हम अपने हाथ वहां तक ना पहुंचाएं।
1: सही बात है, और इस तरह से हम संग्रहालय में जाके देख सकते हैं और सभी को दिखा सकते हैं, और वहां पर जो बुक्स मिलती हैं राजुल जी उनके बारे में, उनको भी आप खरीद करके ला सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, जानकारियां अपना उपलब्ध आपको मिल जाएगी उस बुक्स।
0: कई संग्रहालयों में शोज भी होते हैं कि लाइट शोज होते हैं या कोई ड्रामा होता है या कोई नाटिका होती है, वो भी देखने का अगर मौका मिले तो जरूर देखिए, क्योंकि उससे और भी ज्यादा आपको पता लगेगा,
1: करीब पहुंच जाते हैं, उस समय के करीब पहुंच जाते
0: हैं,
1: है ना।
0: तो चलिए, हम करीब पहुंच रहे हैं
1: गीत के।
0: गीत के

0: तो राजुल जी, अब हम व्यंजन बता देते हैं पहले. स्ट्रीट स्टाइल बनारसी टमाटर चाट जो हमने वो बताएंगे.
1: मतलब आपने ये तय कर लिया है कि जो झगड़े वाली बात है ना मोबाइल को लेके, उसको आपने टाल दिया है सबसे आखिरी के लिए.
0: हाँ,
1: चलिए चलिए, पेट भर जाएगा तो झगड़े कम होते हैं, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए पहले व्यंजन बता देते हैं. बनारसी टमाटर चाट, इसकी सामग्री है कि 3 लाल पके टमाटर बारीक काट लें, 2 उबले आलू मैश कर लें, 2 बड़े चम्मच देशी घी या मक्खन, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर. इतना ही आप चाट मसाला ले लीजिए और 1/2 छोटा चम्मच काला नमक और सादा नमक अपने स्वाद के अनुसार लेना है और 1 बड़े चम्मच इमली की मीठी चटनी, 1 छोटा चम्मच चीनी या गुड़ और सजाने के लिए आपको सेव, बारीक कटा हरा धनिया, पापड़ी, मछली, थोड़ा सा मक्खन लेना है. और इसकी बनाने की विधि क्या है कि तवा या कढ़ाई गर्म करें, उसमें देसी घी डालें और जीरा हींग डालकर तड़काएं, इसमें अदरक हरी मिर्च डालकर भूनें, कटे टमाटर डालें और चम्मच से दबाते हुए पकाएं. टमाटर जब गल जाएं तो इसमें मैश किए हुए आलू डाल दें और इसमें सारे जो मसाले हमने बताए थे, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, काला नमक, चाट मसाला, इमली की चटनी और थोड़ा सा गुड़, चीनी डालें और क्योंकि खट्टा मीठा इसका स्वाद आएगा तो इसको लगातार आप चलाते रहें और ये गाढ़ा और चमकदार जब हो जाएगा तभी आप समझ लीजिए ये आपका तैयार है. और इसको गर्मा गर्म चाट या चाट को कुल्हड़ या कटोरी में निकाल लीजिए, ऊपर से मक्खन, सेव, पापड़ी और हरा धनिया डालकर तुरंत परोसे और बनारसी स्वाद का आप इसको मजा ले सकते हैं. और आप देशी घी या मक्खन दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.
1: तो हमारे एक श्रोता ने कहा है कि बनारस गया था लेकिन चाट नहीं खाई, अब की जाऊंगा तो जरूर खाऊंगा. तो मेरे ख्याल से अब तो उन्होंने पक्का इरादा कर लिया होगा कि जरूर खाएंगे. और एक श्रोता कह रहे हैं कि बनारसी व्यंजन की बात हो रही है तो ये तो लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, वहां जाकर ये चाट नहीं खाई तो क्या खाई, छेना दही बड़ा ये नहीं खाया है.
0: तो बस आप,
1: तो ये मिठाई है नमकीन,
0: ये आप पढ़ेंगे सामग्री
1: पता लग जाएगा. तो भाई, छेना दही बड़ा बनाने के लिए 250 ग्राम ताजा छेना या पनीर ले लीजिए, 2 बड़े चम्मच अरारोट या कॉर्नफ्लोर, 1 बड़ा चम्मच मैदा, 1 चुटकी इलायची पाउडर और तेल तलने के लिए ले लीजिए. अब दही में मिलाने हैं क्या क्या, 2 कप ताजा दही हो, उसमें 2-3 बड़े चम्मच चीनी, थोड़ा सा काला नमक मतलब मीठा नमकीन दोनों, भुना जीरा पाउडर और सजावट के लिए इमली की मीठी चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च पाउडर और भुना जीरा लेना है. और सेब या अनार के दाने ले सकते हैं. कैसे बनाएंगे कि छेने को हाथों से अच्छी तरह मसल लें ताकि वो बिल्कुल मुलायम हो जाए. अब इसमें अरारोट, मैदा और इलायची पाउडर मिलाएं और छोटे छोटे गोल बड़े बना लें. फिर कढ़ाई में तेल गरम करें, मध्यम आंच पर बड़े सुनहरे होने तक तलें, निकालकर टिश्यू पेपर पर रख दें. अब दही को तैयार करना है तो अच्छी तरह फेंट के उसमें चीनी, थोड़ा काला नमक और भुना जीरा मिला दें. अब बड़े को हल्के गुनगुने पानी में 2 मिनट डालकर निकाल लें, ज्यादा देर तक नहीं रखें नहीं तो वो फट जाएंगे. और अब उन्हें दही में डालें, ऊपर से इमली चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च और जीरा पाउडर डालें. छेना जितना मुलायम होगा उतना ही आपका बड़ा स्पंजी बनेगा. और इसको इसमें हल्का सा मीठा दही ऊपर से डाल सकते हैं, चाहे तो ऊपर से किशमिश और मेवे भी डाल सकते हैं. और खास बात तो यह है कि गर्मियों में

0: दिल की ये बेचैनी दुल्हन एक रात की फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे। राजा मेहंदी अली खान ने इस गीत को लिखा था और मदन मोहन ने धुन बनाई थी। और देखिए मंजरी, हम लोग जो कोई दुख ना हो बकरी पाल लो कहानी सुन रहे थे, तो हमारे एक और श्रोता ने अपना अनुभव बांटा है, हमारे साथ साझा किया है कि बचपन के दिनों में हमारे गाँव के गरड़िया अपने बकरियों का झुंड लेकर खेतों में और जंगल में जाते थे, तो हम छुप कर किसी बकरी को पकड़ते थे और उसका दूध पलाश के पत्तों को मोड़कर उसमें निकालते थे और खूब पीते थे।
1: क्या बात बचपन की ऐसी शरारतें तो हम लोगों ने भी की हैं, लेकिन अभी हम आज बात करेंगे जो हमारे मोबाइल के कारण घर में पति पत्नी के बीच में
0: तो मोबाइल
1: शरारते कर देता है। तो बस ये सुबह उठो तो लगता है भाई वो तो सबसे पहले उठकर पतिदेव मैसेज किए जा रहे हैं, गुड मॉर्निंग मैसेज हो रही है और कुछ सुन नहीं रहे हैं, कुछ चाय वाय नहीं पीने के लिए आ रहे हैं, तो वो एक आपसी तनाव होता है,
0: झुंझलाहट
1: होती है कि अरे खाने के समय भी साइड में मोबाइल चल रहा है और मैसेज देखे जा रहे हैं, तो वो बड़ी समस्या होती है कि भाई खाने के समय खाना खाइए, मोबाइल चलाने के समय मोबाइल चलाइए।
0: बिल्कुल, हमारे एक श्रोता लिख भी रही हैं कि मोबाइल और इंटरनेट का अत्यधिक उपयोग पति पत्नी के बीच तनाव और दूरियां बढ़ाने का एक प्रमुख कारण बन रहा है, इसे विशेषज्ञ टेक्नोफेरेंस नाम से कह रहे हैं। अब तो बातचीत के बीच में पति पत्नी और वो नाम से इसे संबोधित किया जा रहा है, यानी दाल भात में मुसर्जन।
1: और एक साथी लिखते हैं कि मोबाइल के कारण जीवन साथी से तनाव, इससे कोई नहीं बचा है, मेरे घर भी यही सब है, वो पास बैठे रील देखकर मुस्कुराते रहते हैं और हम चुप्पे से अपना काम करते रहते हैं। वाकई में आप चुपचाप काम कर रही थी, बड़ी अच्छी बात है। और एक साथी लिखते हैं कि मोबाइल ने दूर वालों को नजदीक और नजदीक वालों को दूर कर दिया है, साथ रहने वाले परिवार भी घंटों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। दूसरा अवगुण हैंड राइटिंग और स्पेलिंग याददाश्त का सत्यानाश कर दिया है।
0: एक श्रोता कह रही है कि आज के समय में मोबाइल हमारी जरूरत बन चुका है, लेकिन कई बार यही मोबाइल रिश्तों में दूरियां भी बढ़ा देता है। एक समय था जब परिवार और जीवन साथी के साथ बैठकर बातें होती थी, हंसी बांटी जाती थी, अब अक्सर एक ही कमरे में साथ होकर भी लोग अपने अपने मोबाइल में खोए रहते हैं, धीरे धीरे संवाद कम होने लगता है और वहीं से तनाव जन्म लेने लगता है। रिश्ते समय और अपनापन मांगते हैं, सिर्फ ऑनलाइन मौजूदगी नहीं। कभी कभी मोबाइल को थोड़ी देर के लिए दूर रखकर अपने जीवन साथी की बातें सुन लेना, उनके साथ कुछ पल मुस्कुरा लेना, फिर से रिश्तों को

0: भाई साजन बिना सुहागन का ये गाना पूछ रहा है कि कैसे जीत लेते हैं, और हम वही बात कर रहे हैं कि कैसे जीता जाए, तो मोबाइल में की भूमिका को जरा हाँ थोड़ा कम किया जाए तो जीत लिया जाए दिल। एक श्रोता कह रहे हैं कि पहले तो मोबाइल नौकरी वालों के पास ही रहा करता था, लेकिन अब तो पुरुष बहुत सारी महिलाओं के हाथों तक ये मोबाइल पहुंच चुका है, और चलाते समय बिना किसी सहायता के भी आसानी से अपनी रुचियों के हिसाब से नेट प्लेटफॉर्म्स पर कार्यक्रम देखते रहना उनके शौक भी हो गए हैं। नतीजा साफ है कि एक ही बेड पर दोनों पति पत्नी लोग अक्सर ही आवाज धीमी करने की शिकायत करते हैं, और अगर अलग अलग बेड पर सोए तो इसमें फिर आश्चर्य की क्या बात है। हाँ ये बात तो होती है ना कि सोते समय भी कोई ये देख रहा है, तो
1: जबकि
0: सोते समय थोड़ा मोबाइल से दूरी बरतना अच्छा रहता है।
1: हाँ बेड से आप दूर ही रखिए मोबाइल, मेज पे रखिए तब आप सोइए, उसको पास रखना भी नहीं चाहिए। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारी पत्नी तो रही नहीं, दोनों बहू और बेटों की तू तू मैं कभी न कभी महीने पर सुनता हूँ, क्या कर सकता हूँ। बस नाती नातिन से कह देते हैं मम्मी की मोबाइल पापा को चुपके से दे दो, और पापा की मोबाइल मम्मी को, फिर सब शांत हो जाता है। वाकई में पति पत्नी के साथ जब दोनों बैठे हों तो सबसे जरूरी है कि आप मोबाइल को दूरी रख दें, और जो समय मिला है आपको पास बैठने का बातें करने का तो आप उससे अच्छे से बात कर लें।
0: एक श्रोता ये भी लिख रहे हैं कि मोबाइल काफी चीजों को निगल गया है। आज समाज परिवार के बीच की दूरी का कारण मोबाइल है, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, रिश्ते में तनाव का कारण

0: भी मोबाइल है, आज परिवार भी छोटा हो रहा, समाज के अर्थ को भूल गए हैं। आज कोई व्यक्ति कष्ट में है तो मदद नहीं कर वीडियो बनाते हैं, आज हम अपने असली रिश्ते को भूलकर डिजिटल रिश्ते खोज रहे हैं। तो वाकई बहुत जो ज्वलंत समस्या है वो आज हमने उठाई है, और हमारे श्रोताओं ने उस समस्या को कितनी बुरी तरह से हावी हो चुकी है इस बारे में भी बताया है, लेकिन वक्त की कमी है।
1: बिल्कुल, और चलते चलते यही कहेंगे कि जिन्होंने भी ये प्रोग्राम सुना है वो इस समय जब अपने पति पत्नी साथ में हो तो मोबाइल हटा दें। और हम लोग लेते हैं फिलहाल इस कार्यक्रम से विदा। तो सभी को मंत्री वर्मा और
0: राजुल का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी, लेकर हाजिर हूं सेहतनामा कार्यक्रम में। एक और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मीनल शाह, जो कि सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ हैं, डाइटिशियन हैं, और इनका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में।
1: मुझे यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं सुनने वालों को भी नमस्कार करती हूँ।
0: और आज का जो हमारा विषय है, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व, तो डॉक्टर मीनल बताएंगी आपको इस विषय के बारे में, और आपकी ओर से मैं तमाम सवाल करना चाहूंगा। तो डॉक्टर मीनल, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे ये प्रोटीन और विटामिन्स हैं क्या, और शरीर के लिए इसकी महत्ता या इम्पोर्टेंस क्या है।
1: जी बिल्कुल राजेंद्र जी, प्रोटीन जो है वो बहुत जरूरी होता है अपने शरीर के लिए। ये एक ऐसी चीज है जो हमारे खाने में मौजूद होती है, पर ये चीज जो है, जो प्रोटीन होता है, वो आपके शरीर के लिए इतना जरूरी है कि अगर वो हम ठीक से ना ले तो हम कमजोर पड़ सकते हैं, हम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि हमारा प्रोटीन इंटेक अच्छे से नहीं होता है। ये चीज अगर खाने से निकल जाती है तो हम बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं। हम अपना रोज का जो एक्टिविटीज है, जो रूटीन है, हम वो नहीं फॉलो कर पाते हैं। एंड अगर जोर दे इस चीज पे तो ये बहुत सिंपली अचीव किया जा सकता है, सिर्फ खाने पे थोड़ा ध्यान देने पे। और रही बात विटामिन्स की, विटामिन्स को हम एक्चुअली बोलते हैं वाइटल न्यूट्रिएंट्स। ये चीज ऐसी है जो बहुत छोटे प्रमाण में खाने में जरूरी होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है इनको। लेकिन अगर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाने में कम हो या ना हो तो हमारे बाकी के खाने का असर ही कम हो जाता है। इनकी मात्रा भले छोटी हो पर इनका जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, वो इतना ज्यादा है कि इनकी एब्सेंस में हमारा खाना या हमारा शरीर अपना काम नहीं कर पाता है।
0: बड़ी अच्छी जानकारी बहुत ही सरल शब्दों में आपने सुनने वालों को बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, क्यों ना हम प्रोटीन और विटामिन को अलग अलग डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि प्रोटीन के स्रोत या सोर्सेज जो हैं वो क्या क्या हैं।
1: जी प्रोटीन्स जो है वो खाने में बहुत सारी अलग अलग प्रकार के भी होते हैं, सोर्सेज में उसी हिसाब से बताओगी। प्रोटीन कंप्लीट प्रोटीन होता है, यानी जो हमारे लिए सबसे ज्यादा

0: अच्छा है, जो पूरा है, इनकम्प्लीट नहीं है, वो प्रोटीन्स अलग है, और दूसरे एक टाइप के प्रोटीन जो होते हैं, एक प्रकार का प्रोटीन है, वो थोड़ा इनकम्प्लीट होता है।
1: वो कैसे?
0: वो ऐसे कि उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं, हम हमारा जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड्स एक बहुत छोटे ये विटामिन से उससे बनता है, तो उसमें कुछ अमाइनो एसिड्स मिसिंग होते हैं। तो पहले कंप्लीट प्रोटीन पे फोकस करते, मैं इनकम्प्लीट प्रोटीन पे वापस आऊंगी। कंप्लीट प्रोटीन्स ये है जो शरीर जब हम खाते हैं तब शरीर उसका पूरा फायदा उठा सकता है, उसमें कोई चीज छूटी नहीं है, तो ये हमें सबसे ज्यादा फायदा करता है। कंप्लीट प्रोटीन्स खाने में पहला सोर्स है दूध और दूध के पदार्थ
1: जी।
0: तो दूध हो गया, दही है, छाछ है, पनीर है, ये सारा फर्स्ट क्लास प्रोटीन यानी कंप्लीट प्रोटीन होता है,
1: जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं।
0: यस, जिसे हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। और ये सारी चीजें ऐसी है जो हम बहुत आसानी से और रोज खा सकते हैं और इसका शरीर पूरा फायदा उठा सकता है, तो इसमें कुछ छूटेगा नहीं। जो इनकम्प्लीट प्रोटीन्स मैं बता रही थी, ये वो चीजें हैं जिसमें कुछ मिसिंग है, कोई ऐसी चीज है जो इसमें नहीं है, और इसके लिए हमें ये कॉम्बिनेशन में खानी पड़ती है, दो चीजें साथ में खानी पड़ती है, दाल, मूंग, मटकी, चना, कड़धानिया जो बेसिकली हमारे हैं, वो है हमारा सेकेंड बेस्ट प्रोटीन यानी इनकम्प्लीट प्रोटीन,
1: जिसमें आम भाषा में या गांव में कई इसको कठोर कहा जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कठोर या कड़धानिया जैसे हम बताते हैं, ये जो प्रोटीन है ये बहुत जरूरी प्रोटीन है, बट इसमें कुछ चीजें इनकम्प्लीट है, कुछ चीजें हैं जो पूरा नहीं है वो प्रोटीन, इसके लिए हमें उसके फायदे ज्यादा नहीं मिल पाते हैं। लेकिन अगर ये चीज हम कॉम्बिनेशन में, जैसे बताए, दो चीजें साथ में ले ले, तो ये कम्प्लीट हो जाता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी खिचड़ी।
1: अच्छा,
0: जब हम दाल और चावल कंबाइन करते हैं, जब हम दाल चावल साथ में बनाते हैं या जब हम नॉर्मल दाल चावल साथ में खाते हैं, तब वो कम्प्लीट प्रोटीन बन जाता है, क्योंकि अनाज और कड़धान्य दोनों साथ में आए हैं। तो जो हम बेसिकली अब तक खाते आए हैं पुराने जमाने से, वो एक्चुअली बहुत अच्छी चीज है, और हमें कुछ चीजें ऐसी है जो फॉलो करती रहनी चाहिए। जो इनकम्प्लीट प्रोटीन है, जो मैंने बताया प्रोटीन सोर्सेस, इसमें आपका सोयाबीन भी आ जाता है।
1: अच्छा,
0: तो पहला अगर मैं देखूं तो दूध और दूध के पदार्थ है यानी मेरे डेयरी प्रोडक्ट्स है, दूसरा मेरा सोयाबीन आ जाता है जो करीब करीब कंप्लीट है, और तीसरा है जो मेरे कड़धान्य है, जो अगर मैं कॉम्बिनेशन में खाऊं तो वो उतने ही अच्छे है जितना मेरा दूध अच्छा है
1: अनाज के साथ।
0: बिल्कुल
1: जी जी।
0: और इन सब के अलावा ये सारे मेरे शाकाहारी ऑप्शंस हो गए थे, जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए भी प्रोटीन सोर्सेज है, जो हमारा अंडा, चिकन, मच्छी, ये सारा आ जाता है, ये भी अच्छे प्रोटीन्स है, ये भी कंप्लीट प्रोटीन्स है, ये दूध के बराबर आ जाते हैं, भले दूध और इसकी जो
1: सिमिलरिटी है,
0: हाँ, जो प्रॉपर्टीज है ये थोड़ी डिफर करती है न्यूट्रिएंट कॉम्पोजिशन अगर देखा जाए तो, लेकिन ये कंप्लीट प्रोटीन है, तो इसे भी शरीर पूरी तरह से यूज कर सकता है, इसका भी शरीर पूरा फायदा ले सकता है,
1: शरीर इसका अवशोषण कर सकता है,
0: शरीर इसका अवशोषण कर सकता है
1: जी। आपने प्रोटीन के बारे में जो क्लासिफाइड या वर्गीकृत ढंग से समझाया, बहुत ही अच्छा लगा। हम आगे बढ़ेंगे इसी विषय पर, फिलहाल हम एक संगीत की बात करेंगे और चाहेंगे आपकी पसंद का कोई गाना बजाया जाए। कौन सा गीत आपको पसंद है?
0: हम नहीं बदलेंगे, गोलमाल अगेन से
1: हम सुनवा रहे हैं दोस्तों, डॉक्टर मीनल की पसंद का ये गाना।

0: डॉक्टर मीनल, जैसे कि बात चल रही थी कि प्रोटीन के जो सोर्स हैं वो क्या क्या हैं, आपने वर्गीकृत करके बताया था गीत बजने से पहले, हम ये जानना चाहेंगे डेयरी प्रोडक्ट्स की जहां तक बात होती है, और बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं और एक एज के बाद 40 के बाद या 35 के बाद या आफ्टर 40 वो ये समझते हैं कि भाई ब्लॉकेज का जमाना है और ये नहीं खाना चाहिए वो नहीं खाना चाहिए, तो आखिरकार जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें किस तरह से हम हासिल कर सकते हैं, क्या जो हृदय रोगी होते हैं या इस तरह के मरीज होते हैं उनको भी ये सोर्स काम करते हैं?
1: डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो नुकसान नहीं करते हैं, वो नुकसान तब करते हैं जब हम उसे फैट वाला ले या चर्बी वाला दूध ले। तो जरूरी नहीं है डेयरी नुकसान करेगा, डेयरी तब नुकसान करेगा जब हम वो फुल क्रीम मिल्क या भैंस का पूरा मलाई वाला दूध, वैसे दूध वाली चीजें ले तो वो नुकसान डेफिनेटली करेगा। लेकिन हमें लेना है या तो गाय का दूध या तो टोन्ड मिल्क। एक बहुत सिंपल चीज हम कर सकते हैं, जब हम दूध खरीदे मार्केट से तब सिर्फ पैकेट, आजकल पैकेट का जमाना है, पैकेट में ही दूध रहता है, तो पैकेट में सिर्फ फैट परसेंटेज पढ़ ले, वो 3.2 या 3.5 से नीचे होना चाहिए।
0: अच्छा।
1: अगर वैसे है तो वो फैट परसेंटेज जो है दूध का वो कंट्रोल में है। तो हम जब घर पे उसे गर्म करेंगे, जब वो गर्म करके ऊपर मलाई आती है, वो हल्की सी मलाई भी निकाल लेते हैं तो वो लो फैट दूध हो जाता है। तो उसके लिए हमें बाजार से स्किम मिल्क या लो फैट खरीदने की जरूरत नहीं है, हम वो चीज घर पे ही बना सकते हैं। और वो जो दूध है उसमें कैल्शियम है, उसमें अच्छा वाला प्रोटीन है, तो वो नुकसान कभी नहीं करेगा। अगर वो फुल क्रीम मिल्क है या मलाई वाला दूध है तो वो नुकसान कर सकता है।
0: अच्छा, कुछ लोग जो हैं, आपने जैसे कड़धान्य और अनाज का कॉम्बिनेशन बताया था, एक मिश्रण बताया था, जैसे खिचड़ी का जो उदाहरण है वो बड़ा बेहतरीन रहा है, लेकिन कुछ लोग स्प्राउट खाते हैं, अंकुरित भोजन खाते हैं सुबह के टाइम, या तो वो कितना काम करता है?
1: वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम स्प्राउट करते हैं तब उस जो अनाज है वो ज्यादा बेहतर बन जाता है, उसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वो स्प्राउट करने में और अवेलेबल हो जाते हैं, यानी शरीर उसका पूरी तरह से एब्जॉर्प्शन कर पाता है। तो वो स्प्राउट्स बहुत अच्छे हैं, सिर्फ एक चीज गलत हो जाती है कि वो स्प्राउट्स हम कच्चे लेने की कोशिश करते हैं।
0: अच्छा।
1: तो कच्चे है तो शरीर, हमारा शरीर ये नहीं कर पाता है कि कच्ची चीज है वो एब्जॉर्ब कर पाए, वो हम पूरी तरह से उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते, फायदा नहीं उठा पाते। तो जब हम उसको थोड़ा सा भी बॉइल कर लेंगे, उबाल लेंगे या स्टीम कर लेंगे, भाप देते हैं हम जैसे, अगर थोड़ा सा भी वैसा कर लेते हैं तो वो शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद है, वो एब्जॉर्प्शन के लिए मदद करता है और वो हम पूरी तरह से उसका फायदा उठा सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात बताई। अच्छा ये बताइए कि फायदे तो होते हैं, प्रोटीन जरूरी होता है, नहीं तो जैसे आपने शुरू में ही बताया कि बीमारियां घर में घुस जाती हैं शरीर में, तो शरीर का जो एक घर है इसमें बीमारियां ना घुसें, उसके लिए सुना ये भी जाता है कई बार, ये मिथ है या सच है कि प्रोटीन नुकसान भी कर देता है, वो किस अवस्था में करता है और कैसे करता है?
1: प्रोटीन नुकसान कर सकता है ये बात सच है, लेकिन ये बात सच है जब हम जरूरत से ज्यादा प्रोटीन खाते हैं। अगर हम आज का खाने का तरीका देखें, जिस तरह से हम खाना खाते हैं, जिस तरह से हमारा रूटीन या लाइफस्टाइल हो गया है,

0: हम जनरली प्रोटीन मिस कर देते हैं, या फिर हम ऐसे टाइप का प्रोटीन खाने की कोशिश करते हैं जो नुकसान करेगा। तो प्रोटीन फिलहाल नुकसान नहीं कर रहा है, वो फिलहाल खाने में बहुत कम है और उसे बढ़ाने पे जोर देना है। हाँ, कुछ शारीरिक कंडीशंस ऐसी है जहां पे प्रोटीन नुकसान करता है।
1: वो कौन सी हैं?
0: जैसे किडनी की डिसीजेस होते हैं, उन केसेस में, उन पेशेंट्स के लिए, उन रोगियों के लिए प्रोटीन बहुत ही कंट्रोल या नियमित होना चाहिए। उनके लिए हम एग्जैक्टली उनके हिसाब से वो प्रोटीन कैलकुलेट करते हैं और फिर उनको बताते हैं कि कितना खाना है। बट जब तक ये तकलीफ नहीं है हमारे लिए, जो नॉर्मल पेशेंट्स नॉर्मल है, जिनका नॉर्मल रूटीन चल रहा है, उन सब के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है और वो नुकसान नहीं कर सकता है।
1: बतौर एक आहार विशेषज्ञ आप क्या प्रोवाइड करेंगी एक मरीज को जिनकी एक किडनी में यदि पथरी है, तो कितना प्रोटीन उन्हें लेना चाहिए?
0: ये वापस से एक मिथ है, ये नहीं है सच, क्योंकि पथरी जब होती है तब प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब नहीं बनता है। जब हम किडनी डिसीजेस बोलते हैं तब वैसी कंडीशंस होती है जहां पे उनकी किडनियां काम नहीं कर रही है, जब वो फेलियर में जा रही है, तब ये प्रॉब्लम आता है। पथरी के लिए एक ही ट्रीटमेंट है जो नई रिसर्चेस बताती है, जो नए पेपर्स आए हैं वो बताते हैं कि सिर्फ पानी पीना है उनको। जब तक वो पानी अच्छे से पी रहे हैं उनको खाने में कोई चीज परहेज नहीं करनी है।
1: प्रोटीन ले सकते हैं?
0: बिल्कुल ले सकते हैं, और जरूरी है वो ले, ताकि वो भी बीमार है, भले वो पथरी की वजह से है लेकिन उन्हें भी रिकवर करना है, तो उनको इंश्योर करना है कि जितना जरूरी है वो उतना प्रोटीन खाए। जरूरत से ज्यादा नहीं खाना है लेकिन कम भी नहीं खाना है, कम खाने की वजह से ज्यादा नुकसान होगा। उनको सिर्फ पानी पीना है अच्छे से, जब तक वो पानी अच्छे से पी रहे। इनफैक्ट सीड्स वाला भी कुछ बंद करने की जरूरत नहीं है, जो हम बोलते हैं कि
1: बीज वाले बंद कर दीजिए, टमाटर बंद कर दीजिए,
0: बीज वाली चीजें बंद कर दो, पर वो कंडीशन के हिसाब से चेंज हो जाता है। तो इन पेशेंट्स के लिए हम बोलते हैं कि आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखा दो, डायटिशियन से मिल लो, वो आपकी कंडीशन पहले चेक करेंगे फिर बताएंगे कि क्या रिस्ट्रिक्ट करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ये चीजें बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होती है, यानी एक बंदे से दूसरे बंदे वो चेंज हो जाती है।
1: जी जी, ये व्यक्तिगत क्षमताओं पर भी निर्भर करता है।
0: हाँ, और स्टोन के प्रकार पे भी डिपेंड करता है।
1: जी, बहुत ही अच्छी बात बताई। तो यहाँ गाने की कोई ऐसी गुंजाइश बनती है, आपकी पसंद का कोई गाना हो जाए?
0: ये वादा रहा, इस मूवी से ये वादा रहा
1: टाइटल सॉन्ग सुनना है आपको।
0: जी बिल्कुल,
1: ऋषि कपूर ने इसमें काम किया था। हम सुनवा रहे हैं।

0: डॉक्टर साहब, गीत तो आपने बहुत अच्छा सुना दिया, ये वादा रहा, लेकिन श्रोताओं से एक वादा तो हम लेंगे कि भाई प्रोटीन की कमी मत होने दीजिए अपने शरीर में। डॉक्टर मीनल, ये बताइए कि प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए?
1: प्रोटीन हमें पूरे दिन चाहिए, उसे लेने का आइडियली कोई समय नहीं होता है। वो हमें पूरे दिन चाहिए। हम ये बोलते हैं कि प्रोटीन

0: पूरे दिन में एक साथ नहीं ले सकते हो.
1: अच्छा.
0: वो डिफिकल्ट हो जाता है, वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम इतना सारा एक साथ खा नहीं सकते. और खाएंगे भी तो इतना सारा शरीर एक साथ, वो लोड हो जाता है एक टाइम पे कि इतना सारा पचा नहीं पाएगा. और इतना सारा पचा के एब्जॉर्ब भी हो गया तो बहुत सारा प्रोटीन एक टाइम पे आ जाता है और फिर पूरे दिन हमारे पास कुछ नहीं होता है. तो हमेशा प्रोटीन डिवाइडेड डोसेज, मतलब पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके लेना है, एक साथ नहीं लेना है. अगर हम उसे पूरे दिन में हर एक खाने में थोड़ा थोड़ा करके बांट दे तो वो शरीर के लिए भी ज्यादा अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है कि हम उतना वो खा पाएंगे आसानी से. अगर हम एक छोटा सा उदाहरण ले, अगर मैं किसी को बोलूं कि एक ही टाइम पे आप आधा लीटर दूध और दो कटोरी दाल और साथ में दो अंडे खा लो, तो वो कितना मुश्किल हो जाएगा.
1: वो हैवी हो जाएगा.
0: बिल्कुल, वो नहीं खा पाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है चीज. तो उसकी जगह पे अगर हम पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा करके ले, जैसे सुबह और शाम हमने एक एक ग्लास दूध ले लिया, दोपहर को और रात को खाने के साथ दाल ले ली, बीच में कभी या सुबह नाश्ते में अंडे ले लिए, तो वो पूरे दिन में तोड़ के प्रोटीन खाते हैं तो वो पॉसिबल भी है और वो तब शरीर ज्यादा आसानी से यूज कर पाएगा. शरीर को बचाने के लिए समय मिल जाता है और उसे वो स्टोरेज में नहीं डालेगा, वो यूज करेगा, जिससे आप चुस्ती फुर्ती महसूस करेंगे. वरना होगा ये कि खा सब रहे हैं सही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारा एक साथ खा रहे हैं और शरीर वो सारी चीजें स्टोरेज में डाल देता है, क्योंकि हमें उतनी सारी चीजों की एक साथ जरूरत नहीं होती, पूरे दिन में थोड़े थोड़े करके होती है.
1: जी जी जी. तो इसका मतलब ये प्रोटीन कब लिया जाना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा करके विभाजित करके लिया जाना चाहिए.
0: और एक सिर्फ छोटी सी चीज ये की जा सकती है कि जब भी हम खाना खाएं, वो सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है, शाम का खाना है या रात का खाना है, हर एक मेजर मील है जो खाने वाला टाइम है, वहां पे हम थोड़ा प्रोटीन हमेशा रखें. तो अगर हम उतना सा भी करते हैं तो जितनी हमारी प्रोटीन की जरूरत है वो भी मीट हो जाएगी, यानी हम उतना खा लेंगे प्रोटीन, और जब हम तोड़ के खाएंगे तब वो पचने में भी आसान हो जाता है.
1: अच्छा, कुछ लोगों ने अपनी एक डाइट को फिक्स किया होता है अकॉर्डिंग टू हेल्थ, और हेल्थ कॉन्शियस होते हैं कि भाई सुबह तो हम टाइट खा लें और लंच जो है बहुत हल्का या आधा खा लें और शाम को जो मिला खा लें. तो शाम के टाइम प्रोटीन उस दौरान किस तरह से लिया जाना चाहिए?
0: शाम को अगर हम खाना कम खा रहे हैं, ठीक है, हल्का खा रहे हैं, तो भी प्रोटीन होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कुछ कम करना चाहूँ रात के खाने से तो वो मेरा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हो जाता है. मतलब अगर हम चावल खा रहे हैं तो चावल ना खाइए, पर अगर मैं स्प्राउट्स शाम को खाती हूँ तो वो अच्छी चीज है खाने के लिए, या फिर एक रोटी और थोड़ी सी दाल खा ली. तो प्रोटीन हमेशा रहना चाहिए. आपको कम करना है तो उसे सिंपल कार्ब्स जो बोलते हैं हम, यानी चावल हो गया, या अगर मैं चार रोटी खा रही हूँ तो मैं दो रोटी खाऊंगी, अगर मैं भाकरी खा रही हूँ तो मैं एक या आधी खा लूंगी, वो हम कम करेंगे चलेगा. कुछ मीठा खा रहे हो तो वो अवॉइड कर लो शाम को चलेगा, लेकिन प्रोटीन कभी नहीं कम करना.
1: डॉक्टर साहब, प्रोटीन बीमारी में लेना चाहिए या नहीं, या किस तरह की बीमारी में है, इसका डिटेल बताइए आप.
0: ज्यादातर देखा जाए तो जब हम बीमार होते हैं हमें प्रोटीन लेना चाहिए. अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमें ठीक होने में ज्यादा टाइम लग जाएगा, दवाई अपना असर नहीं कर पाएगी, और हम जो तंदुरुस्त बनना है वो प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है. तो प्रोटीन तो बहुत जरूरी है. जैसे मैंने बताया कि कुछ ही कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे प्रोटीन हमें कम करना पड़ता है, और वो टाइम पे जब स्पेशलिस्ट होते हैं वो इंटरवीन करते हैं, वो बताते हैं कि भाई अब प्रोटीन कम कर देना है. पर 90% केसेस देखा जाए तो प्रोटीन की जरूरत बहुत ज्यादा है, और ये डेफिनेटली इंश्योर करना है कि अगर हम प्रोटीन अच्छे से खाएं और जितनी जरूरत है उतनी खाएं, तो आपका रिकवरी, आपका जो ठीक होने का समय है वो जल्द से जल्द होगा, टाइम कम लगेगा आपको ठीक होने में.
1: लेकिन उन बीमारियों के बारे में भी तो बताइए कि ये पर्टिकुलर बीमारी है तो फिलहाल प्रोटीन कम कर दें और धीरे धीरे उसको बढ़ाएं.
0: जी, बीमारियां अगर देखी जाए तो दो मेजर कंडीशंस ऐसी हैं जहां पे प्रोटीन कम करने की जरूरत पड़ती है. एक है जब लिवर इन्वॉल्व है. अब इसमें हमेशा प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करना ऐसा नहीं है, सिर्फ एक समय आएगा जब शरीर, क्योंकि वो जो टॉक्सिन्स है वो बाहर नहीं थ्रो कर पाता है, तो अमोनिया लेवल जो है शरीर में बढ़ जाता है. अमोनिया एक ऐसा टॉक्सिक प्रोडक्ट है जो बॉडी फेंक देता है बाहर, और उसमें लिवर की मदद लगती है. तो जब लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तब वो शरीर में जमा होने लगता है. जब ये अमोनिया लेवल्स बढ़ जाते हैं तब वो एक ही कंडीशन है जहां पे हमें प्रोटीन कम करना पड़ता है. ये जितना वो प्रोटीन ज्यादा खाएंगे उतना अमोनिया का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटीन बाहर फेंकने का जो फॉर्म है वो एक तरह से अमोनिया के थ्रू होता है, अमोनिया और यूरिया. तो ये जब बढ़ जाता है शरीर में तब प्रोटीन कम करना पड़ता है, तब इनफैक्ट हम बहुत कम प्रोटीन देते हैं.

0: और दूसरा है जैसे मैंने बताया किडनी कंडीशंस, मतलब अक्यूट किडनी डिसीज या क्रॉनिक किडनी डिसीजेज जो होती है. अब इसमें जो क्रॉनिक किडनी डिसीज होती है उसमें एक स्टेज ऐसा होता है जब क्रिएटिनिन करके एक लेवल होता है शरीर में, वो बढ़ता है.
1: सीरम क्रिएटिनिन,
0: करेक्ट. तो जब ये बढ़ता है तब एक टाइम ऐसा होता है जब वो बढ़ रहा है पर पेशेंट डायलिसिस पे नहीं है. ये एक टाइम पीरियड है जहां पे प्रोटीन बहुत रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, पर अगेन बहुत कम नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं, वो बंदे के शरीर के हिसाब से होता है, उनके वेट के हिसाब से होता है, तो वो कैलकुलेट करना पड़ता है. तो ये कंडीशंस ऐसी है जहां पे प्रोटीन कम रखना पड़ता है या मॉडरेट रखना पड़ता है और उस पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो ना बढ़े ना कम हो.
1: अच्छा, प्रोटीन के फॉर्म चेंज कर सकते हैं जैसे सॉलिडिटी से लेकर उसको लिक्विफाइड ढंग से ले लिया जाए?
0: बिल्कुल बिल्कुल, प्रोटीन का बेस्ट बेनिफिट ये है कि हम किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं. अगर आपकी ऐसी कोई कंडीशन है, अगर हम ऐसे बीमार है कि हम खाना ज्यादा नहीं खा पाते, तो उसको लिक्विड्स के फॉर्म में भी लिया जा सकता है.
1: जैसे दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से?
0: बिल्कुल, दाल पिला दी जाए सूप के माध्यम से. आप सूप में पनीर क्रश करके डाल सकते हो. आप दूध मिल्क शेक्स लेते हैं वो आपका प्रोटीन हो जाता है. आप छाछ या लस्सी लेते हैं वो आपका प्रोटीन हो जाता है. आप उसमें थोड़े और ड्राई फ्रूट्स मिला दीजिए तो वो और डेंस हो जाएगा. बहुत सारे तरीके हैं जिससे प्रोटीन और डेंस बनाया जा सकता है.
1: जी जी जी भैया, बहुत सारे तरीके आपने बताए, लेकिन क्या होता है कि जब कार्यक्रम में बातचीत चलती है तो तरीकों में थोड़ा सा तालमेल होना चाहिए, थोड़ी बातचीत उसके बाद फिर संगीत. तो यहाँ मेरा इशारा समझ गई हैं डॉक्टर मीनल, और आप कौन सा गाना सुनवा रही हैं?
0: अब हम सुनते हैं जूली मूवी का दिल क्या करे गाना,
1: जब किसी को किसी से प्यार हो जाए. बहुत ही अच्छी फिल्म थी, और गाना आपको सुनवाते हैं.

0: सब्जेक्ट है दोस्तों वो है प्रोटीन और विटामिन का महत्व, और इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर मीनल शाह के साथ जो कि सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ। तो हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर मीनल कि विटामिन की बात अब की जाए, प्रोटीन की बात बहुत हो गई है, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं?
1: विटामिन अगर हम देखे जाए तो दो मेजर प्रकार है, दो बड़े क्लासिफिकेशंस है। एक विटामिन वो जो वाटर सोल्युबल विटामिन्स होता है,
0: मतलब जो पानी में घुल जाते हैं,
1: यस, जिसको एब्जॉर्ब करने के लिए, जिसको शरीर के लिए जरूरी है कि वो वाटर के माध्यम से आए, तो वो वाटर सोल्युबल विटामिन्स हो जाते हैं। जो दूसरे प्रकार के विटामिन्स है वो है फैट सोल्युबल विटामिन्स। तो ये विटामिन्स के लिए जरूरी है कि हम थोड़े मात्रा में फैट्स रखें खाने में। तो जो फैट सोल्युबल विटामिन्स है, ठीक है, वो ऐसे विटामिन्स है जो शरीर में स्टोर हो सकते हैं, बॉडी उसे जमा करके रखा जा सकता है क्योंकि वो फैट्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो इसमें बेसिकली आ जाता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ये मेरे फैट सोल्युबल विटामिन्स हो जाते हैं। जो वाटर सोल्युबल विटामिन्स है वो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स है, ये शरीर में स्टोर नहीं किए जा सकते क्योंकि ये वाटर सोल्युबल है, ये पानी की मात्रा से अगर हम कभी ज्यादा लेते हैं तो बॉडी उसे फेंक देगा बाहर।
0: अच्छा।
1: तो ये हमें रेगुलरली लेना जरूरी बन जाता है क्योंकि फैट सोल्युबल शरीर में बैकअप हो सकता है लेकिन वाटर सोल्युबल का कोई बैकअप नहीं है, ये हमें रोज के रोज लेना है।
0: ये तो अच्छी बात बताई, अपने प्रकार भी बताए। कुल मिला के ये बात हुई कि जिस तरह से प्रोटीन की आवश्यकता शरीर को होती है उतनी ही विटामिन की भी होती है, लेकिन कई बार कुछ लोग बड़े नेचुरल ढंग से प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से भी बात करते हैं कि भाई हम तो धूप में खड़े हो जाएंगे सुबह सुबह तो विटामिन डी मिल जाएगा, तो ये कितना सच है कि उतना एब्जॉर्प्शन हो पाता है या खाना भी जरूरी है?
1: एब्जॉर्प्शन हो सकता है विटामिन डी का, एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो सही है, हमें सनलाइट चाहिए विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए क्योंकि वो एक ऐसा न्यूट्रिएंट है, ऐसा विटामिन है जो दो तरीके से काम करता है। वो खाने से तो मिलता है लेकिन जब सनलाइट होती है तब उसका जो फॉर्मेशन है वो बदल जाता है। तो सनलाइट बहुत जरूरी है विटामिन डी के लिए, और इसके लिए जरूरी है कि हम थोड़ा एक्सपोजर रखें सनलाइट में, हम थोड़ा मॉर्निंग वॉक करें या थोड़ा टहल के आए, जब अच्छी धूप हो तब टहल के आए। जो हम काम करते हैं तब हम काम करने की स्थिति में होते हैं तो हम बहुत इंटेंसिव वॉक में रहते हैं पैटर्न में, एक बहुत हल्का सा मॉर्निंग वॉक, एक बहुत हल्का सा स्ट्रोल जो शांति से करे, ये जरूरी होता है विटामिन डी के लिए। तो विटामिन डी के लिए सनलाइट जरूरी है।
0: और भी जो सोर्सेस हैं विटामिन प्राप्त करने के स्रोत हैं वो क्या क्या हैं?
1: अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग विटामिन्स और अलग अलग सोर्सेस है, और ऐसे जरूरी नहीं है कि एक चीज से एक ही विटामिन आएगा। हमारे काफी सारे खाने की चीजें ऐसी है
0: जैसे
1: फल हो गए जिसमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक से ज्यादा विटामिन्स होते हैं, ठीक है। आपका दूध हो गया, उसमें भी प्रोटीन्स के अलावा कैल्शियम है, भले वो मिनरल्स है, विटामिन्स नहीं है, बट वो उतने ही जरूरी है जितना आपका प्रोटीन हो जाता है। खाने के बारे में ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये एक चीज कभी काम नहीं करेगी। अगर मैं सिर्फ प्रोटीन खा रही हूँ तो सिर्फ प्रोटीन कभी काम नहीं करेगा, अगर मैं सिर्फ विटामिन खा रही हूँ तो वो काम नहीं करेगा। ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ होनी चाहिए, जब तक वो कॉम्बिनेशन नहीं है तब तक आपका प्रोटीन खाने का मतलब नहीं है। इसका भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा जाए तो अगर आपका बी कॉम्प्लेक्स विटामिन मिसिंग है खाने में से, अगर हम नहीं ले रहे वो अच्छे से रोज से, तो आपका प्रोटीन किसी काम का नहीं है क्योंकि शरीर उसको पूरी तरह से फॉर्म नहीं कर पाता है। वो जो रीजन है प्रोटीन खाने का वो रीजन नहीं हो पाता है कंप्लीट क्योंकि हमारे पास वो विटामिन ही नहीं है। तो ये सारे छोटी छोटी जो चीजें हैं वो अपनी खुद के फॉर्म में इंपॉर्टेंट हो जाती है। और सोर्सेज देखा जाए तो सोर्सेज भी ऐसे ही बने हैं, नेचुरली प्रकृति ने अपना काम बहुत अच्छे से करा है। तो एक अगर फल देखा जाए, एक फल में एक से ज्यादा विटामिन्स होते हैं, जैसे अगर हम पीले या लाल कलर के फल देखें तो उसमें विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है, वो कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होता है।
0: जैसे ऑरेंज है,
1: जैसे पपाया है, इसमें मेरा विटामिन ए भी आ जाता है, विटामिन सी भी आ जाता है, मेरा नट्स है तो उसमें विटामिन ई भी आ जाता है, और अगर मैं सब्जियां लूं तो जितनी कलरफुल सब्जियां ले, तो अगर मेरी वो पर्पल कैबेज भी हो सकती है, वो मेरी हरी कैबेज भी हो सकती है, टमाटर भी हो सकते हैं, कोई भी फॉर्म ले लो, अलग अलग कलर्स, जितने अलग अलग कलर्स लेंगे उतने अलग अलग विटामिन्स मिलेंगे हमें। जितनी ज्यादा रंग हो गया आपके खाने में, जितने ज्यादा रंग हो गया आपके प्लेट पे, उतने ज्यादा विटामिन्स हमें मिल रहे हैं। वो एक बहुत आसान तरीका है ये आइडेंटिफाई करने का, ये ना

0: करने का कि हम कितने अलग अलग विटामिन्स ले रहे हैं, क्योंकि विटामिन्स की जानकारी सबको नहीं होती है, वो उनको ही होगी जो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो एक आम आदमी के लिए, एक पेशेंट के लिए वो जरूरी, बहुत सिंपल हिंट हो जाता है कि कलर्स रखिए, कि हम जितने अलग अलग रंगों के फ्रूट्स, जितने अलग अलग रंगों के वेजिटेबल्स खाने में रखेंगे, उतने अलग अलग विटामिन्स आप इंश्योर कर रहे हैं।
1: बराबर है। तो भाई देखिए, ये तमाम रंगों की बातें हो रही हैं, तो हमारे इस सेहत नामक कार्यक्रम का भी रंग है कि बातचीत होती है, फिर म्यूजिक होता है, और उसी को बैलेंस करने के लिए आपकी पसंद का जो अगला गीत है वो कौन सा है?
0: अगला गीत होगा है अपना दिल तो आवारा, 16 साल मूवी से
1: हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना है।

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई में आपने बहुत अच्छा सुनवा दिया और हमारे सुनने वालों को भी पसंद आया होगा, उम्मीद है। हमारी बातचीत चल रही थी इस गीत के पहले विटामिन के सोर्सेस के बारे में, कहां से प्राप्त होते हैं, तो उसको कंटिन्यू करते हुए हम एक प्रश्न आपको बताते हैं कि भाई ये भी एक जिज्ञासा है, विटामिन विशेष या पर्टिकुलर विटामिन की कमी जब हो जाती है तो शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इस बारे में भी सोर्सेस के बाद आप बताइए।
1: जो विटामिन है, जैसे मैंने क्लासिफाई किया वाटर सोल्युबल एंड फैट सोल्युबल, तो अगर सोर्सेज देखा जाए तो एक बहुत सिंपल चीज है कि अगर विटामिन ए है तो वो मेरी आंखों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो जब मेरी आंखें ड्राई हो रही है या कमजोर पड़ रही है, अगर विटामिन ए बहुत मात्रा में कम पड़ जाए तो उस

0: ये ब्लाइंडनेस या फिर नाइट ब्लाइंडनेस यानी
1: या धुंधलापन,
0: धुंधलापन वो प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, ये एक साइन है, ये एक सिम्टम है कि विटामिन कम है। और जो सोर्सेज अगर देखा जाए विटामिन ए के, जैसे वो फैट सोलबल सोर्सेस है, तो वो शरीर में स्टोर करके रखे जा सकते हैं। तो इसमें मेरे रेड येलो कलर फ्रूट्स आ जाते हैं, सब्जी आ जाती है। जितनी मेरी ब्राइट कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, जैसे पपाया हो गया, मैंगो हो गया, पाइनएप्पल हो गया, फिर ऑरेंजेस हो गए, इन सब में अच्छे खासे विटामिन्स होते हैं विटामिन ए के फॉर्म में।
1: जी जी।
0: दूसरा विटामिन जो बहुत जरूरी हो जाता है वो है विटामिन ई। अब ये भी एक फैट सोलबल विटामिन है जो शरीर स्टोर कर सकता है।
1: इसका क्या काम होता है?
0: ये जरूरी है आपकी स्किन के लिए, जब स्किन ड्राई होने लगती है या फिर बहुत और ये ड्राइनेस सिर्फ ऐसा नहीं है कि सीजन है ठंडी का और स्किन ड्राई हो गई है, ये ड्राइनेस इतना ज्यादा बढ़ सकता है कि वो ड्राई स्किन की वजह से शरीर में इन्फेक्शन आ सकते हैं, क्योंकि इसकी त्वचा इतनी टूट जाती है कि वो इन्फेक्शन इन्वाइट करने के लिए एक बेस्ट चीज बन जाती है। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ये सिर्फ अच्छे दिखने वाली ड्राई स्किन की बात नहीं हो रही है, ये तब होता है जब बहुत कम विटामिन्स होते हैं शरीर में और उसकी वजह से हम बीमार पड़ने लगते हैं। तो विटामिन ई सिर्फ त्वचा के लिए, इसके लिए जरूरी नहीं होता है कि वो हम अच्छे दिखे, बट वो इसके लिए ताकि हम सेहतमंद रहे।
1: जी।
0: तो विटामिन ई बेसिकली आपके नट्स में होता है ज्यादातर, तो बादाम हो गया, पीनट्स हो गया, सींग जो हम खाते हैं, ये नट्स जो है वो अच्छे खासे विटामिन के सोर्सेस है। इसके अलावा आप उसे फिश में भी पा सकते हो, तो जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए मच्छी अच्छा सोर्स है विटामिन ई का, और नट्स है जो विटामिन ई के लिए वेजिटेरियन सोर्स है यानी शाकाहारी सोर्सेस है।
1: जी।
0: ये मेजर सोर्सेस है, इसके अलावा भी काफी सारे हैं बट ये तो ज्यादा जरूरी है। और विटामिन सी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो आपका इन्फेक्शन फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, वो आपका रोग प्रतिकारक शक्ति इंप्रूव करता है,
1: मतलब शरीर में किसी भी प्रकार का जो संक्रमण आने वाला होता है उससे हमारी सुरक्षा करता है।
0: जी। और जब हम बीमार होते हैं तब वो वापस वही काम करता है, तब वो जो बीमारी है, जो कीटाणु है, उसे तोड़ने में, उसे फेंकने में मदद करता है। तो विटामिन सी आपके खटास वाली चीजों में रहती है जो सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं, तो इसमें मेरा ऑरेंज और मैंगो वापस आ जाता है क्योंकि वो सिट्रस भी है, पपाया टू एन एक्सटेंट, कीवी आ जाता है, तो जितने भी खटास वाले फ्रूट्स
1: है,
0: नींबू, मौसम्बी, पेरू जो सीजन में पूरे 12 महीने मिलता है, गुआवा जिसे हम बोलते हैं, ये सारा फ्रूट्स है जो विटामिन सी के लिए बहुत अच्छा है। सब्जियों में भी एक परसेंटेज ऑफ विटामिन सी होता है। अगर हम बेस्ट एग्जांपल ले तो ड्रमस्टिक्स जो सींग होती है उसमें भी विटामिन सी का अच्छा खासा परसेंटेज होता है। इसके अलावा एक सिंपलेस्ट चीज देखी जाए तो मिर्ची, मिर्ची में अच्छा खासा विटामिन सी होता है, हरी मिर्च में। तो ये चीजें है हमारे पास, सिर्फ हम उसका इस तरह से इस्तेमाल नहीं करें कि वो विटामिन सी के लिए हेल्प करे।
1: जी जी। और देखिए आहार जो आपने बताया कि पर्टिकुलर फलों को खाने से, सब्जी के खाने से ये पूर्तियां होती है, लेकिन विटामिन की जो मात्रा है कई बार ज्यादा भी हो जाती है, ये भी आपके मरीजों में आपने देखा होगा।
0: जी, ये होता है कुछ मरीजों में, बट ये तब होता है जब विटामिन का उन्होंने कोई एक्स्ट्रा या दवाई ली हो उसे ठीक करने के लिए।
1: अच्छा।
0: क्योंकि अगर हम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन देखे जाए तो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन वाटर सोल्युबल होते हैं, जैसे मैंने बताया वो शरीर स्टोर नहीं कर सकता है, तो टॉक्सिसिटी का तो सवाल ही नहीं उठता है। और रही बात फैट सोल्युबल विटामिन की, तो वो तब बढ़ जाता है जब हम कोई करेक्टिव डोसेज ले रहे या हम कोई चीज जरूरत से ज्यादा खा रहे। जैसे कुछ हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होने के रीजन से या कारण से जरूरत से ज्यादा फ्रूट्स या विटामिन्स खाने की कोशिश करते हैं, वो मल्टीविटामिन्स भी ले सकते हैं या फिर फ्रूट्स भी भरपूर मात्रा में खा रहे हैं, या फिर वैसी कोई चीज नट्स हो गया जिसे भी वो समझते हैं कि वो सेहत के लिए अच्छी है, पर जब आप जरूरत से ज्यादा खाओगे तब वो नुकसान करेगा। तो वो टॉक्सिसिटी पाई गई है बहुत कम केसेस में, लेकिन डेफिनेटली एक प्रॉब्लम है। इसके लिए हम बोलते हैं कि जरूरत से ज्यादा कोई चीज कभी नहीं खानी चाहिए, हर चीज रोटेशन पे रखो, हर फ्रूट्स हर सब्जी रोटेशन पे रखो, जितना आप उसे अलग अलग चीजें खाएंगे अलग अलग समय पे उनके अलग अलग बेनिफिट्स मिलेंगे।
1: तो बातचीत का जो तालमेल है वो यहाँ थोड़ा सा विराम देंगे और संगीत को यहाँ पर उभारेंगे आपकी पसंद के गाने के जरिए।
0: इश्क भुलावा हंसी तो फंसी पिक्चर से।

0: विटामिन की बात चल रही थी, एक आपने कहा था कि विटामिन की जो अधिकतम मात्रा हो जाती है तो वो नुकसान भी करती है, और वैसे कहा जाता है ना कि अति किसी भी चीज की हो वो नुकसान ही करती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात आती है बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट आप संतुलित आहार लीजिए स्वस्थ रहेंगे
1: जी। संतुलित आहार जो होता है बैलेंस डाइट जिसे हम बोलते हैं, बेसिकली अगर हम आम आदमी के लिए देखा जाए तो एक पांच चीजों से बनता है। सिर्फ ये पांच चीज अगर आपके खाने में है तो आपका आहार संतुलित है, ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कही जा सकती है। वो पांच चीजें क्या है? पहला है आपका अनाज, तो आप चावल ले लीजिए या गेहूं ले लीजिए या ज्वारी बाजरी ले लीजिए, आप जो खाते हो वो खाइए, पर अनाज होना चाहिए खाने में जब आप खाना खाते हो, ठीक है। कड़धान्य जैसे मैंने बताया वो भी इम्पोर्टेंट प्रोटीन हो जाता है,
0: कठोर,
1: तो कठोर हो गया, दाल हो गई, स्प्राउट्स हो गए, ये आपका सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। तीसरा है आपकी सब्जियां,
0: कोई भी सब्जी हो,
1: कोई भी सब्जी हो, और वो सब्जी के फॉर्म में भी हो सकती है और सलाद के फॉर्म में भी हो सकती है।
0: क्या बात है,
1: तो सब्जियां होनी चाहिए, आप जैसे मर्जी आए वो खा लो, बट ये जरूरी है, इसमें विटामिन्स भी है और आपका फाइबर भी है जो आपके खाने के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा हो गया आपका प्रोटीन सोर्स जो पल्सेस नहीं है, यानी आपका दही, छाछ, जो मांसाहार खाते हैं उनके लिए चिकन,

सारी चीजें मेरा चौथा कंपोनेंट है, और आ जाता है मेरा फैट यानी ऑयल या चर्बी जो होती है. नाउ फैट्स जो है वो बेसिकली इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारे विटामिन्स बिना फैट के किसी काम के नहीं है. और फैट्स बुरे नहीं है, ये हमें ताकत भी देते हैं. तो जब हम सही टाइप के फैट्स चूज करें तब वो नुकसान नहीं करेंगे, तब वो फायदा करेगा. तो ये जब कंपोनेंट्स है मैं ये सारा सिंक में लेती हूँ. और इसके साथ एक और बहुत जरूरी चीज है, वो है पानी, जिसे हम ज्यादातर ओवरलुक कर लेते हैं, जिसे हम ज्यादातर दुर्लक्ष करते हैं.

0: है, मैं ये सारा सिंक में लेती हूँ। और इसके साथ एक और बहुत जरूरी चीज है, वो है पानी, जिसे हम ज्यादातर ओवरलुक कर लेते हैं, जिसे हम ज्यादातर दुर्लक्ष करते हैं, जिसे हम ज्यादातर ध्यान नहीं देते हैं। तो पानी एक बहुत जरूरी चीज बन जाती है, जो मेरे डाइट का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो जब तक ये चीजें, पांचों चीजें बैलेंस में रह रही है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, तब तक हम गड़बड़ नहीं कर रहे, हम परफेक्टली डाइट फॉलो कर रहे हैं। फिर आप उसमें रोटी सब्जी ले लो, या फिर आप उसमें भाकरी ले लो, या आजकल मॉडर्न जमाना है, पास्ताज एंड पिज्जाज का जमाना है, तो वो पास्ताज एंड पिज्जाज भी बहुत संतुलित बनाए जा सकते हैं। सिर्फ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि हम आग बंद करके ये फॉलो ना करें जो इंटरनेट पे पढ़ते हैं, पर हम खुद की समझ लगाए इस चीज के पीछे
1: कितनी हमें आवश्यकता है।
0: बिल्कुल।
1: अच्छा, एक यहाँ पर बैलेंस डाइट की बात चल रही, तो एक कॉमन सी बात है कि हम लंच में जब लेते हैं तो सलाद पहले खाना चाहिए और पानी बहुत देर से पीना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या?
0: एक तरीके से हाँ, सलाद पहले इसलिए खाना है वो करेक्ट है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सलाद हम जब पहले खाते हैं तब हम फाइबर इंश्योर करते हैं, जो हमारे खाने के लिए बहुत जरूरी है। और फिर हमें जितनी भूख होगी हम उतनी ही खाएंगे, तो ये हमें ज्यादा खाने से भी रोकता है। और ये ज्यादा जरूरी उन पेशेंट्स के लिए हो जाता है, उन रोगियों के लिए हो जाता है जिनको शुगर की तकलीफ है, डायबिटीज, उनके लिए ये चीज बहुत काम करती है। उनके लिए भी ये चीज बहुत काम की है जिनको वजन कम करना है
1: जी,
0: तो उनके लिए ये फाइबर बहुत जरूरी हो जाता है, और खाने से पहले इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, इसकी जरूरी वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। और पानी खाने के बाद इसके लिए लेना बोलते हैं कि पानी पी के आप पेट भर लोगे तो कुछ नहीं खाओगे, और प्लस वो एक टू एक्सटेंड एक तरीके से वो आपका विटामिन या मिनरल्स या खाना जो आपने खाया है उसको डाइल्यूट कर देता है, तो जो एसिड्स है स्टमक के वो उनको डिफिकल्ट बना देता है कि वो चीजें पचा दे, क्योंकि वो डाइल्यूट हो गई है, डिजोल्व हो गई है। तो जनरली हम बोलते हैं खाने के साथ ज्यादा पानी ना पिए, मना नहीं है, लेकिन हो सके तो खाने के बाद अच्छे से पानी पी लीजिए या खाने से पहले ले लीजिए, तो वो पहले वापस वही काम करेगा जो मेरा सलाद करता है, मेरा पेट भर देगा, तो मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी, लेकिन खाने के दौरान थोड़ा कम रखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
1: डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि किस तरह से संतुलित आहार को डिफाइन किया आपने, सरल भाषा में परिभाषित किया, और बहुत सारे भ्रम भी तोड़े कि ऐसा नहीं है। अच्छा, अब हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति अगर अपनी डाइट ले रहा है पर्टिकुलर बीमारी के दौरान, तो और जैसे डायबिटीज के मरीज हैं, हृदय रोगी हैं, किडनी के रोगी हैं, पर्टिकुलर जो इस तरह के रोगी हैं, वो अपना आहार लेते हैं, तो उसमें प्रोटीन और विटामिन की पूर्ति किस तरह से की जाए, वो चिकित्सक की सलाह से की जाए या स्वयं ही अपने आहार से ली जाए?
0: हम स्वयं ये कर सकते हैं जब तक हम बीमार नहीं है। अगर आप बीमार हो तो आपको चिकित्सक की जरूरत है, पर अगर आप ठीक हो,
1: जैसे बीपी की गोलियां चल रही है,
0: तो मिलना जरूरी है, एक बार मिलना जरूरी है, आपको रेगुलर विजिट्स या कंसल्टेशंस की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन एक बार मिलके समझना जरूरी है कि आपके लिए क्या जरूरी है और क्या नुकसान कर सकता है। काफी बार हम चीजें खाते हैं ये सोच के कि ये हमें फायदा कर रहा है, या ये चीजें हम अवॉइड कर देते, जैसे आपने मेरे को पहले पूछा था कि दूध हम मना कर देते हैं क्योंकि दूध में चर्बी है ये कंसिडर करके, बट अगर वो गाय का दूध है तो उसमें इतनी चर्बी नहीं है, और
1: या फिर वो बिना मलाई का दूध,
0: एग्जैक्टली, अगर वो बिना मलाई का दूध है तो उसमें इतनी चर्बी नहीं है। तो हर चीज के लेने का तरीका होता है, वो एक बार समझना बहुत जरूरी है, एक बार आप वो समझ ले फिर आप खुद से चीजें कर सकते हो, लेकिन क्या सही है क्या गलत ये पहले जानना, और वो भी किसी चिकित्सक से या किसी डायटिशियन से जानना जरूरी है, क्योंकि वो उन्हें पता है, वो क्वालिफाइड पीपल है, वो इंटरनेट से पड़ी हुई जानकारी या फिर सुनी सुनाई बातें नहीं बोलते हैं, उन्हें उस चीज का नॉलेज है, उस चीज की इंफॉर्मेशन रहती है।
1: और ये भी नहीं करना चाहिए कि उस व्यक्ति को ये सूट करता है तो मुझे भी करेगा,
0: बिल्कुल,
1: व्यक्ति व्यक्ति पर डिपेंड करता है,
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति अलग होता है, उनका शरीर अलग होता है,
1: उसकी प्रकृति अलग होती है,
0: उसकी प्रकृति अलग होती है, और एज के हिसाब से भी चीजें चेंज हो जाती है। आपकी एज और दूसरे बंदे की एज में भी अगर समानता भी है तो मेडिकल कंडीशंस अलग हो जाती है, उनके चीज पे नहीं मापी जा सकती। और अगर सिंपल चीजें देखी जाए कि हम क्या करें ये चीजें इंश्योर करने के लिए, तो दो तीन सिंपल रूल्स अगर हम फॉलो कर ले तो वो बहुत मदद करेगा। तो सिंपल रूल्स में ये रख सकते हैं कि जैसे विटामिन्स अगर हम चाहिए कि हम रोज खाएं, तो एक नियम ये बना लीजिए कि रोज खाने में सलाद खाएं और अलग अलग कलर्स के सब्जियों वाला सलाद खाएं, तो हमारे अलग अलग विटामिन्स आ जाएंगे। रोज दो फल खाएं, सीजन्स के हिसाब से फल चेंज करें, क्योंकि हर फल का अपना इंपॉर्टेंस होता है।

0: जैसे गर्मी का मौसम है तो कौन से फल प्रेफर करने चाहिए?
1: आम गर्मी के मौसम में सबसे अच्छा आम रहेगा, और आम अच्छा है जब हम कंट्रोल में खाएं। कुछ ही ऐसे रोगी होते हैं जिनके लिए वो नुकसान करता है, तो जैसे मैंने बताया रोगियों के लिए तो चिकित्सक या डाइटिशियन की सलाह लगेगी
0: जी।
1: बट हमारे लिए वो बहुत अच्छा है, उसमें अच्छे खासे विटामिन है। तो वाटरमेलन भी अच्छा है, गर्मी में अभी वाटरमेलन की भी सीजन है तो वो भी खा सकते हो। तो जैसे जैसे आपकी सीजन चेंज होगी वैसे वैसे आपके फल चेंज होने चाहिए, और जितना हो सके उतना सीजन को फॉलो करिए। ऐसे नहीं कि कोई चीज प्रिजर्व्ड है और मेरे को आम अगर गर्मी की सीजन छोड़ के अगर ठंडी की सीजन में भी मिलने लगे तो मैं आम चूज करूंगी, तो वैसा नहीं करना है। उसे जितना हो सके फ्रेश लाइए, हमें प्रोसेस्ड या प्रिजर्व्ड फूड नहीं चाहिए। और तीसरा ये किया जा सकता है कि प्रोटीन इंश्योर करने के लिए हर एक मील में जब भी हम खाना खाएं, बी इट ब्रेकफास्ट या दोपहर का खाना या शाम का खाना या रात का खाना, तो उसमें प्रोटीन का एक सोर्स, एक खाने की ऐसी चीज तो कम से कम रखनी है। एक से ज्यादा हो सकती है पर एक से कम नहीं करना है। जब हम थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में खाएंगे तब हमारी जरूरत पूरी होगी, तब तक हमारी जरूरत नहीं पूरी होने वाली है।
0: वक्त हो चला है कि कार्यक्रम को समापन की ओर मोड़ दिया जाए, कि चलते चलते समापन के पहले अपनी ओर से आप हमारे सुनने वालों को एक क्या मैसेज देना चाहेंगी?
1: छोटे से ड्यूरेशन में ये सुना कि प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है, विटामिन्स इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज इंपॉर्टेंट है, और एक छोटा सा हल्का सा पॉइंट कवर किया जहाँ पे बैलेंस डाइट की जरूरत, और बैलेंस डाइट का पहले तो समझा कि क्या होता है। अब इन सब चीजों में एक चीज रह जाती है, वो है खाने का समय। अगर हम ये चीजें खाने वाले हैं तो कब खाने वाले ये भी जरूरी है। तो आप खाना अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आप काम कर रहे हो, आप घर पे हो, आप हो हाउसवाइफ हो या फिर आप ऑफिस में काम करते हो, तो आप वो चूज कर सकते हो कब खाना खाना है। सिर्फ एक ग्राउंड रूल ये रखना है, यानी एक नियम रखना है रोज का, कि 4 घंटे से ज्यादा खाली पेट नहीं रहेंगे। तो 4 घंटे के बाद हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप कुछ खा रहे हो, क्योंकि उतना देर खाली पेट रहना नुकसान कर सकता है। और रही बात कुछ ये बोलते हैं कि 2-2 घंटे पे लेना चाहिए, तो 2-2 घंटे पे खाने की हमें जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन 2-2 घंटे पे लिपिया जा सकता है, यानी लिक्विड्स हाइड्रेशन मेंटेन किया जा सकता है। स्पेशली अभी गर्मी की सीजन है, हम पानी को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, तो वो प्लेन पानी भी हो सकता है या फिर कोई लिक्विड भी हो सकता है, जैसे नींबू पानी हो गया या छाछ हो गया, नारियल पानी हो गया या फ्रूट जूसेस हो गए। तो अलग अलग लिक्विड्स हर 2 घंटे पे नियमित तौर से ले, और खाना 4-4 घंटे पे अपने समय से, भले वो बहुत ज्यादा ना हो बट एक हल्का सा छोटा सा स्नैक भी हो गया, पर 4 घंटे के बाद हमेशा खाना है, तो वो आपका सेहत बनाए रखेगा। और जो हमें चीजें विटामिन प्रोटीन मिनरल्स जितनी भी चीजें चाहिए वो हम थोड़ी थोड़ी करके पूरे दिन में लेते रहे, ताकि ऐसा ना हो कि पूरे दिन कुछ नहीं खाया और दिन के एंड में पूरे दिन की रिक्वायरमेंट एक ही साथ खत्म कर ली, जिसकी हमें जरूरत नहीं है।
0: तो डॉक्टर साहब, बहुत सारी जानकारी आपने दी, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व बताया। आज के इस कार्यक्रम में हम सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
1: मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और ये अवसर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात सुप्रसिद्ध आहार विशेषज्ञ डॉक्टर मीनल शाह से। आज का विषय था प्रोग्राम का, प्रोटीन और विटामिन्स का महत्व। आज के इस कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी रहे महेश वर्मा, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा, और आज के इस प्रोग्राम से अब दीजिए इजाजत अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को। नमस्कार।

0: गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोरा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। श्री मोदी इस समय संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: श्री मोदी आज नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे, जहां उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री कल तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं, जो आपसी संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत विधि और न्याय मंत्रालय कल से गुजरात के गांधीनगर में ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारियों SOM की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। विधि और न्याय मंत्रालय ने कहा कि SOM बैठक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के वरिष्ठ अधिकारी वैकल्पिक विवाद समाधान ADR से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। वहीं विदेश मंत्रालय खाड़ी के अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास 2400 घंटे हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं, ताकि समय पर सहायता प्रदान की जा सके और वे देश के नागरिकों की सक्रिय रूप से सहायता कर रहे हैं। केरला में नई UDF सरकार ने राज्य परिवहन की बसों में महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए अन्य निर्णयों में आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायकों और रसोईया कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करना शामिल है। राज्य में नई विधानसभा का सत्र इस महीने की 21 तारीख को आयोजित किया जाएगा, जिसमें नए सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और अध्यक्ष का चुनाव होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रियसिस से मुलाकात की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री नड्डा ने वैश्विक

स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। बैठक के दौरान WHO के महानिदेशक ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों और वैश्विक स्वास्थ्य साझेदारियों में नेतृत्व की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे। वे आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस दौरान सामरिक सहयोग बढ़ाने, रक्षा औद्योगिक साझेदारी मजबूत करने, समुद्री सहयोग सुदृढ़ करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद जीत दर्ज कर प्ले ऑफ के और करीब आना चाहेगी, जबकि चेन्नई की नजर शीर्ष चार में प्रवेश करने पर होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

अभी से थोड़ी देर बाद यानी शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन, कार्यक्रम घर आंगन। बहनों के लिए ये हमारा कार्यक्रम आप सुन सकते हैं शाम 5:30 पर। शाम 6:00 आप सुनेंगे लोकगीत। भोजपुरी समाचार हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले करेंगे शाम 6:05 पर। 6:10 पर हम प्रस्तुत करेंगे ग्रामीण कार्यक्रम गांव घर। भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत की प्रस्तुति होगी शाम 6:40 पर। शाम 7:00 सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। शाम 7:15 पर सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास की प्रस्तुति होगी। प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल के लिए हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र की सभा में। समय होगा शाम 7:25। वापिस स्टूडियो आकाशवाणी सासाराम से हम शाम 7:50 पर प्रस्तुत करेंगे ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मन पसंद। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 8:45 पर हम रिले करेंगे समाचार संध्या।

आकाशवाणी सासाराम में स्टूडियो से रात्रि 9 बजे प्रस्तुत करेंगे भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। कार्यक्रम बंदगी की प्रस्तुति होगी रात्रि 9:15 पर। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती का प्रसारण, जिसे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किया जाएगा। रात्रि 10 बजे आकाशवाणी सासाराम स्टूडियो से हम प्रस्तुत करेंगे हिंदी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रस रंग। चित्रपट तराने, हिंदी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात्रि 10:30 पर।

हिंदी समाचार रात्रि 11 बजे और अंग्रेजी समाचार रात्रि 11 बजकर 5 मिनट पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बारी बारी से रिले किए जाएंगे।

ये थी संक्षिप्त जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

राम तेरे घर आएंगे। एल्बम का ये टाइटल भजन अभी आप सुन रहे थे अनूप जलोटा की आवाज में। रवि चोपड़ा के लिखे इस भजन की धुन खुद अनूप जलोटा ने बनाई थी। श्रोता दोस्तों, आप सबों ने अपने रेडियो और मोबाइल सेट को ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, यानी आकाशवाणी का सासाराम केंद्र, और इस वक्त आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

लागी लगन विंध्यवासिनी चरण एल्बम का ये टाइटल भजन अभी आप सुन रहे थे राकेश तिवारी की आवाज में। अब आइए वंदन कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं कबीर अमृतवाणी।

जुबिन नौटियाल की आवाज में भी आप ये सुन रहे थे कबीर अमृत बाणी। इसी के साथ वंदन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम घर आंगन।

सभी श्रोता बहनों को मंजू बाला का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम घर आंगन में। हर बार की तरह आज भी हमारे कार्यक्रम का गुलदस्ता सजा है विविध रंगों के फूलों से, जिनमें है ढेर सारी जानकारी की बातें और मधुर मधुर गीत। तो चलिए, अब देर किस बात की, हम निकल पड़ते हैं अपने सुहाने सफर पर अपनी बातों के साथ। बहनों, बच्चे हमारे घर आंगन रूपी बगिया के वो फूल हैं, जिनकी मुस्कान से हमारे घर में खुशियां ही खुशियां बिखरती हैं और उनकी मासूमियत परिवार में प्रेम और अपनापन भर देती है। इसलिए आज हर माता पिता की यह चाहत होती है कि उनका बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे, संस्कारवान हो, अनुशासन सीखे। यह हर माता पिता की इच्छा होती है। मानो बच्चे तो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, जैसा वातावरण उन्हें घर में मिलता है वैसा ही उनका स्वभाव बन जाता है। इसलिए बच्चों की परवरिश बहुत मायने रखती है। बच्चों की परवरिश में घर का माहौल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यह सच है कि बच्चों की पहली पाठशाला उनका अपना घर होता है और माता पिता उनके पहले शिक्षक। यदि घर का वातावरण प्रेम वाला हो, सम्मान वाला हो, अनुशासन से भरा हो, तो बच्चे भी वही सीखते हैं जो घर में देखते हैं। संस्कार तो बनता है आदतों से और ये आदतें विकसित होती हैं अपने घर से। इसलिए हर माता पिता को चाहिए कि घर का वातावरण सकारात्मक रखें ताकि बच्चा जो भी सीखे वह अच्छा सीखे, वह उसके व्यक्तित्व के लिए सही हो। बच्चों को छोटी छोटी बातों से संस्कार सिखाए जा सकते हैं बहनों, जैसे बड़ों का सम्मान करना, सच बोलना, धन्यवाद कहना, समय पर

अपना काम पूरा करना और जरूरतमंदों की मदद करना। इसके लिए माता पिता को चाहिए कि वे स्वयं भी अच्छे व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करें, क्योंकि बच्चा वही करेगा जो आपको करते हुए देखेगा। बच्चे सुनने से ज्यादा देखकर सीखते हैं, क्योंकि बच्चे तो अनुकरणीय होते हैं। घर के परिवार में सदस्यों को जो भी करते वो देखते हैं, वो देर से बेर वो उसी की नकल करते हैं। बहनों, आज के समय में मोबाइल और टीवी का प्रभाव इस कदर बढ़ गया है कि छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल लेकर कहीं कोने में दुब के मिल जाएंगे आपको, दीन दुनिया से बेखबर। उनको कोई मतलब ही नहीं है, उनकी दुनिया बस मोबाइल तक ही सिमट कर रह गई है। तो आज हमारी यह बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि उनकी इस लत को छुड़ाएं, उनकी इस आदत को कम करें, क्योंकि आगे चलकर यह बहुत ही हानिकारक सिद्ध होगी। बच्चों के साथ समय बिताएं। यह सच है कि आज के समय में जहां माता पिता दोनों कामकाजी हो गए हैं, वहां तो वक्त की थोड़ी कमी तो है ही, लेकिन उसी वक्त में से आप बच्चे के लिए थोड़ा वक्त जरूर निकालिए। आप अपने उस व्यस्त दिनचर्या में से बच्चों के लिए समय निकालिए और सुबह से लेकर शाम तक उनकी सारी दिनचर्या को जरूर पूछिए। अपने दोस्तों के साथ वो कैसे समय बिताए, स्कूल में क्या हुआ, या भी और भी तरह तरह की बातें आप उनसे पूछिए। यानी हर दिन उनके साथ थोड़ा वक्त बिताना जरूरी है। उन्हें कहानियां सुनाइए, उन्हें महापुरुषों की जीवनी के बारे में बताइए, एक साथ बैठकर भोजन करने की आदत डलवाइए। बच्चों की छोटी छोटी अच्छी आदतों की प्रशंसा करिए, इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे अच्छे काम करने के लिए प्रेरित होंगे। तो बहनों, याद रखिए कि अच्छे संस्कार ही बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव है। यदि हम आज बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे संस्कार देंगे, तभी वो कल जाकर समाज और देश का नाम रोशन करेंगे।

साल 18 मई को मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य है लोगों को एचआईवी एड्स के प्रति जागरूक करना और वैक्सीन शोध में लगे वैज्ञानिकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों के प्रयासों का सम्मान करना। एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देता है और यदि समय पर इलाज न हो तो यह एड्स का रूप ले सकता है। आज का दिन हमें यह याद दिलाता है कि एचआईवी से बचाव और इसकी वैक्सीन खोजने के लिए लगातार शोध चल रहा है। हालांकि अभी तक पूरी तरह प्रभावी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, लेकिन जागरूकता और सावधानी से इस बीमारी से बचा जा सकता है। बहनों, एचआईवी फैलने के मुख्य कारण हैं असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई का उपयोग, संक्रमित रक्त चढ़ाना और गर्भावस्था के दौरान मां से बच्चे में संक्रमण होना। लेकिन ध्यान रखें, इस बात को जानना भी जरूरी है कि एचआईवी छूने से, साथ बैठने से, हाथ मिलाने से या साथ भोजन करने से नहीं फैलता। इसलिए संक्रमित लोगों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। जानकारी नहीं होने के अभाव में लोग ऐसा करते हैं, भेदभाव करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सुरक्षित जीवन शैली अपनाएं, समय समय पर जांच करवाएं और सही जानकारी रखें। यही एड्स से बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है। तो आइए इस विश्व एड्स वैक्सीन दिवस पर हम सभी जागरूकता फैलाने और भेदभाव मिटाने का संकल्प लें, क्योंकि सही जानकारी और संवेदनशीलता ही सुरक्षित समाज की पहचान है।

0: ये वो भी ऐप से, वाह।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: बहनों, हम हमेशा अपने कार्यक्रम में कुछ ऐसी प्रेरक महिलाओं से आपको रूबरू करवाते हैं जिनके बारे में जानकर सुनकर हमें प्रेरणा मिलती है। आज हम बात करेंगे भारत की एक ऐसी ही वीर महिला की जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। जी हाँ बहनों, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मी सहगल की, जिनके मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। डॉक्टर लक्ष्मी सहगल का जन्म 24 अक्टूबर 1914 को हुआ था। वे पेशे से डॉक्टर थीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित होकर वे आजाद हिंद फौज से जुड़ गईं। बहनों, वह दौर था, वह समय था जब महिलाओं को घर की चार दीवारी तक सीमित माना जाता था। तब डॉक्टर लक्ष्मी सहगल ने साहस और नेतृत्व का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने महिलाओं की रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व किया। उन्होंने महिलाओं को देश की सेवा और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। आजादी के बाद भी

उन्होंने समाज सेवा जारी रखी और गरीबों का इलाज करती रहीं। उनका पूरा जीवन देश और मानवता की सेवा को समर्पित रहा। रूढ़ियों को तोड़ने वाली उन्होंने एक पारिवारिक परिवार में जन्म लेकर भी सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ा और पुरुष प्रधान स्वतंत्रता संग्राम में अपनी एक अलग पहचान बनाई। डॉक्टर लक्ष्मी सहगल, जिनका मूल नाम लक्ष्मी स्वामीनाथन था, वे न केवल भारत की आजादी की लड़ाई में भाग लिया, बल्कि वे सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज की पहली महिला कैप्टन बनी और रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का नेतृत्व किया। 1938 में मद्रास मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सिंगापुर में मरीजों की सेवा की, लेकिन देश के प्रति प्रेम उन्हें युद्ध के मैदान तक ले आया, जहां उन्होंने घायल सैनिकों का उपचार करने के साथ साथ हथियार भी उठाए। आजादी के बाद वह कानपुर आकर बस गईं और वहां बसकर जीवन भर गरीब और जरूरतमंद मरीजों की सेवा करती रहीं। उन्होंने चिकित्सा के माध्यम से भी देश की सेवा जारी रखी। भारत सरकार ने उन्हें 1998 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। बहनों, कैप्टन लक्ष्मी सहगल का वास्तव में एक अत्यंत प्रेरक महिला और भारतीय इतिहास की सबसे साहसी क्रांतिकारियों में से एक थी। उनका जीवन देश प्रेम, साहस, नारी सशक्तिकरण और मानवता की सेवा का अद्भुत उदाहरण है। कैप्टन लक्ष्मी सहगल का जीवन हमें सिखाता है कि निस्वार्थ भाव से देश और मानवता की सेवा कैसे की जाती है। उनके साहस और दृढ़ संकल्प ने लाखों महिलाओं को प्रेरित किया है।

और बहनों, चलते चलते अब हम बात करेंगे एक ऐसी छोटी सी चीज की जो हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, आयोडीन युक्त नमक। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आयोडीन एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है बहनों। इसकी कमी से शरीर में कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे घेंघा रोग, बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास रुकना तथा कमजोरी और थकान। नमक तो हम सभी रोज खाते हैं, लेकिन सही नमक चुनना स्वास्थ्य के लिए कितना जरूरी है अब तो आप समझ ही गई होंगी। आयोडीन वाला नमक यानी वैसा नमक खरीदें जिसके पैकेट पर आयोडीन युक्त लिखा हो। आयोडीन हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक तत्व है जो दिमाग के विकास और शरीर की सही वृद्धि में मदद करता है। विशेषकर गर्भवती महिला और बच्चों को खास तौर पर आयोडीन नमक खाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों का दिमाग और शरीर दोनों स्वस्थ रहता है। तो बहनों, आयोडीन नमक का इस्तेमाल यानी परिवार के स्वास्थ्य की खुशहाली का राज। इसलिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और अब आपसे विदा लेने का वक्त

हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे बहनों के लिए हमारा कार्यक्रम घर आंगन। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है भोजपुरी लोकगीत।

न टूटत गांठ न छूटत डोरी, न टूटत गांठ न छूटत डोरी, न छूटत गांठ न टूट

0: ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के पटना केंद्र से भोजपुरी समाचार।
1: प्रणाम, ये आकाशवाणी पटना है। अब रउआ सभी संजय सिंह से भोजपुरी में समाचार सुनी। आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश आज से भोजपुरी समाचार के प्रसारण शुरू कइले बा। भोजपुरी समाचार आकाशवाणी के पटना केंद्र के साथे साथे राज्य के दोसर केंद्रन से सांझ के 6:05 पर प्रसारित कइल जाई। बुलेटिन के शुरुआत के मौका पर वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहले। एकर अलावा आकाशवाणी के केंद्राध्यक्ष HD सीडाम, उपनिदेशक समाचार अजय कुमार के संगे आकाशवाणी के अधिकारीगण और कर्मचारीगण के गरिमामयी उपस्थिति रहल। भोजपुरी समाचार बुलेटिन के न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुनल जा सकेला। एकर अलावा ई प्रादेशिक समाचार एकांश के बुलेटिन यूट्यूब चैनल AIR न्यूज _ पटना पर भी उपलब्ध रही। बताते चले कि आकाशवाणी पटना से पहले से ही हिंदी, उर्दू और मैथिली भाषा में प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के प्रसारण हो रहल बा। राज्य में आम जनता के समस्या के तुरंते और बढ़िया से निपटारा करे खातिर काल से पंचायत स्तर पर राज्यव्यापी सहयोग शिविर के शुरुआत हो रहल बा। 7 निश्चय 3 के सबका सम्मान जीवन आसान विजन के तहत ई पहल कल गई बा, जेकर मुख्य मकसद सरकारी सुविधा और प्रशासनिक सिस्टम के सीधे जनता के द्वार तक पहुंचावे के बा। इस शिविर हर महीना के पहला और तीसरा मंगलवार के राज्य के सब ग्राम पंचायतन में लगावल जाई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहले बाड़न की सहयोग कार्यक्रम के तहत जवन भी आवेदन मिली ओकर 30 दिन के भीतर निपटारा कइल एकदम जरूरी बा। मुख्यमंत्री अधिकारी लोगन के एह मामले में सचेत कइले। उ कहले कि समय पर काम के रिपोर्ट न देवे वाला अधिकारी लोगन के खिलाफ बड़ा एक्शन कइल जाई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहले बाड़न कि राज्य के औद्योगिक ढांचा के विकास हो रहल बाटे और अब लोगन के रोजगार खातिर बाहर जाए के कोनो जरूरत नहीं है। पटना के गांधी मैदान में अग्निशमन गाड़ी और AI आधारित आधुनिक अग्निशमन नियंत्रण कक्ष के उद्घाटन समारोह के संबोधित करत श्री चौधरी कहलन कि प्रदेश में नया उद्योग धंधा खातिर माहौल तैयार हो रहल बा। उ कहले कि राज्य में बुनियादी सुविधा के व्यवस्था पक्का कैला के बाद अब उद्योगन के स्थापना पर खास जोर दिहल जा रहल बा और बड़ बड़ औद्योगिक घराना प्रदेश में निवेश करे खातिर आ रहल बाणे। मुख्यमंत्री बिहार के लोगन से राज्य के तरक्की खातिर वापस बिहार लौटे के अपील भी कैले। केंद्रीय खनन और कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे आज नरकटियागंज रेलवे स्टेशन से दरभंगा जाए वाली मेमू सवारी गाड़ी के हरी झंडी दिखा के रवाना कैले। नरकटियागंज दरभंगा मेमू ट्रेन सेवा शुरू होला से चंपारण और मिथिलांचल के एक बड़कन आबादी के बहुत फायदा मिली। इस मौका पर वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील कुमार और कई गणमान्य लोग उपस्थित रहले। रोहतास जिला के सासाराम रेलवे स्टेशन पर आज सवेरे पटना सासाराम पैसेंजर ट्रेन के एगो बोगी में आग लग गई। इस दुर्घटना में कौनो जान माल के नुकसान भाकेहू के हताहत होके के कौनो खबर नहीं खे। पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारी सरस्वती चंद्र जनौले की फायर ब्रिगेड और रेल कर्मचारी लोगन के मदद से आग पर काबू पा लिहल गई बा। श्री चंद्र कहले कि आग लागे के कारण के जांच कल जा रहल बा। राज्य के ज्यादातर हिस्सा में भारी गर्मी और उमस की स्थिति बनल बा। मौसम विभाग आज रोहतास, भभुआ और बक्सर जिला के कई गो जगह लू चले के आशंका के देखत येलो अलर्ट जारी कैले बा। विभाग अपन पूर्वानुमान में कहले बा कि पटना, नालंदा, जहानाबाद, जमुई, मुंगेर, औरंगाबाद समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य, उत्तर दक्षिण पूर्व इलाका में ज्यादातर जगह मौसम सूखा रही। एकरा वजह से अधिकतम तापमान में औसतन 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के बढ़त दर्ज कल जा सकेला। वही जे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सुपौल, अररिया समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व हिस्सा में कई जगहन पर आज बारिश गिरे के संभावना बा। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन समाहरणालय सभागार में आवे वाला बाढ़ और सुखाड़ के स्थिति से निपटे खातिर कैल गई तैयारी के समीक्षा कैलन। सिवान मैरवा थाना क्षेत्र में पुलिस के साथ भइल मुठभेड़ में गहना दुकान में लूटपाट करे के मुख्य आरोपी अंकित कुमार घायल हो गई। ओकरा दोनों पैर में गोली लागल बा। पुलिस के देखरेख में सदर अस्पताल में ओकर इलाज चल रहल बा। रोहतास जिलाधिकारी उदिता सिंह आज जनजातीय गरिमा उत्सव के उद्घाटन कैली। काल से 25 मई तक जिला के 5 गो प्रखंड के 19 जनजातीय बहुल गांव में ई उत्सव के तहत कैंप लगावल जाई। शिविर में लोगन के सरकारी योजना के जानकारी देवे के साथ साथ जरूरतमंद लोगन के पहचान करके

0: अलग अलग कल्याणकारी योजना से जोड़ल जाए। एकरे साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एही जे समाप्त भइल।
1: आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गांव घर।

सम्राट अशोक का शिलालेख, ताराचंडी मंदिर, चंदन शहीद वीर, बूढ़न पहाड़ी, शेरशाह के पिता हसनसूर शाह का मकबरा आदि इस बात के प्रमाण हैं कि हजारों सालों में सासाराम बसता और उजड़ता रहा है। अरब के शहीद चंदन पीर 1160 में बिहार पर हमला करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के साथ आए थे। बूढ़न पहाड़ी पर फकीर बुरहान से मिलने तुलसीदास कालसी से आया करते थे। तुलसीदास ने लिखा भी है, सहर मुहर्रम 29 सहस 44 जान, बूढ़न शाह बैकुंठ को ताओ किन्ह प्यान। कैमूर पहाड़ी पर ही चेनारी से 15 किलोमीटर दूर अद्भुत विशाल गुफा गुप्ता धाम के नाम से प्रसिद्ध है। इससे बकासुर भस्मासुर की एक किंवदंती जुड़ी है। भरतमुनि के नाट्यशास्त्र पर आधिकारिक कार्य करने वाले नाटककार डॉक्टर ब्रजवल्लभ मिश्र ने माना है कि भस्मासुर बद्ध भारत भूमि का सबसे प्राचीन या प्रथम नाटक है, जिसका मंचन भारतीय सभ्यता के आरंभिक काल में मनोरंजन के लिए लोग करते थे। उस गुफा के भीतर एक नाचघर है जहां सैकड़ों लोगों के एक साथ बैठने की जगह आज भी मौजूद है। इस गुफा को सभ्यता के विकास और आदमी के आदिम जीवन के संधिकाल से जोड़कर भी देखा जा सकता है। रोहतास में सैकड़ों की संख्या में धरोहरें हैं जो अतीत की गवाही दे रही हैं। अनेक ऐसे स्थल मौजूद हैं जो प्रागैतिहासिक काल के हैं, भारतीय सभ्यता के वैदिक और हड़प्पा मोहनजोदड़ो काल से भी पहले के। कैमूर पहाड़ की अनेक गुफाओं में आदमी के रहने के चिन्ह और मानव निर्मित शैलचित्र मिले हैं। फरवरी 1999 में सेना की मदद से 20-30 हज़ार साल पुराने कई शैलाश्रय व गुफाचित्र खोजे गए थे। अघौरा से उत्तर प्रदेश के विंध्य तक उस खोज अभियान में थल सेना के ब्रिगेडियर AK दत्ता, कर्नल उमेश प्रसाद के साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व निदेशक डॉक्टर प्रकाश चंद्र प्रसाद भी शामिल थे। कुद्रा नदी पर सासाराम से 7 किलोमीटर दक्षिण सिनवार ऐसा स्थान है जहां कैमूर विंध्य के वंशजों ने गुफाओं से नंग धड़ंग बाहर निकलकर पहाड़ी की तलहटी में बसेरा बनाया, तंडकने की तमीज सीखी, बांस सरकंडे पर मिट्टी का लेप कर झोपड़ी बनाई और खेती करने के लिए हड्डियों एवं पत्थरों के नुकीले औजार विकसित किए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहास पुरातत्व विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह ने 20 वर्ष पहले सेनवार टीले की परीक्षण खुदाई कराई थी। दशकों पहले जब किराद चिरांद सारण की खोज और खुदाई हुई, उसके पहले सवाल उठा कि बिहार में तो मानव का प्रसार नवपाषाण काल में मैदानी क्षेत्र में तो हुआ ही नहीं था। चिरांद से उस बहस को विराम मिला था जिसे सेनवार ने और पुख्ता किया। सेनवार के परीक्षण उत्खनन से इस बात को बल मिला कि आदमी के पाँव पहाड़ से उतरकर कुदरा काँव तुतही तुम्बा जैसे छोटी और सोन जैसे बड़ी नदियों के किनारे किनारे अर्जुन बिगहा दनवार आदि होते हुए गंगा के मैदान की ओर बेहतर आवास और भोजन की तलाश में आगे बढ़े। डेहरियानसोन से 12 किलोमीटर उत्तर सोन नदी के तट पर अर्जुन बिगहा से पत्थर की परिष्कृत कुल्हाड़ी, मौर्यकाल की मिट्टी के बर्तन के टुकड़े, लंबी चौड़ी ईंटें आदि प्राप्त हुई हैं। इस गाँव के ढीबर की खोज वर्ष 2000 में सोन घाटी पुरातत्व परिषद के सचिव कृष्ण किसले और अवधेश कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई थी। रोहतास की अमूल्य धरोहरों को संभाल कर रखने की जरूरत है। एक खोज प्रसंग इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। वर्ष 1168-69 के राजा प्रताप धौल के एक शिलालेख की खोज प्रोफेसर बिल हर्न ने 1898 में की थी। 1927 में यह शिलालेख सहायक पुरातत्व अधीक्षक M कुरैसी को नहीं मिला। 1931 में जो पुरातत्व विभाग की जो सूची प्रकाशित हुई उसमें इसे शामिल नहीं किया गया था और इसके गुम होने का जिक्र शाहबाद जिला गजेटियर और द एंटीक्वेरियन रिमेंस में भी है। इसे प्रोफेसर डॉक्टर नंदकिशोर तिवारी और डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी की टीम ने फुलवरिया गाँव के सीता चूहा के पास ढूंढ निकाला है। इस खोज प्रसंग की चर्चा इसलिए की जा रही है कि सैकड़ों हजारों सालों बाद हमारे अपने अतीत अपने इतिहास का प्रामाणिक साक्ष्य नहीं रहता यदि यह शिलालेख सदा के लिए गुम हो जाता। इसे वैदिक पौराणिक काल के आख्यानों की तरह जनश्रुति भर माना जाता, जैसे कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा स्थल की खोज से पहले पश्चिमी विद्वान भारतीय सभ्यता को बहुत बाद में विकसित हुई सभ्यता मानते थे।
मगर हड़प

0: पापा ने बता दिया कि भारतीय सभ्यता भी विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी, इसलिए धरोहरों का व्यापक महत्व है। रोहतास में तो अकूत ऐतिहासिक पुरातात्विक धरोहरें भरी पड़ी हैं। समाज के प्रबुद्ध लोगों को सक्रिय पहल करनी होगी कि नई पीढ़ी अपने आसपास के सांस्कृतिक वैभव और धरोहरों से एकात्म स्थापित कर सके। धरोहरें इमारत स्थापित के रूप में दिखने वाली ही नहीं, जमीन दोज भी हो सकती हैं और लोक कथा, लोकगीत और जीवन शैली में भी। केवल इनकी यादें रह जाएंगी यदि इन्हें सहेजा नहीं गया। विरासत जो अतीत का आईना है, इसकी थाती वर्तमान के हाथ में है और वर्तमान ही भविष्य की जिम्मेदारी सौंपता है। संस्कृति की यही प्रक्रिया है जिसमें धरोहरें नई पीढ़ी को नई शक्ति प्रदान करती हैं।
1: देखी कितना नीमन जानकारी दिली कृष्ण किसले, आ इतना नीमन जानकारी दिहला खाती यहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद। देखी श्रोता भाई, आज जौन बा विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनावल जा रहल बा, कारण कि आज 18 मई के दिन है। तो देखी श्रोता भाई, कहल जाला कि जान बा त जहान बा, मतलब कि हमनी के निरोग रहल बहुते जरूरी बा। आ देखी जब हमनी के निरोग रहल जाई तो अपना परिवार के देखरेख कल जाइ, अपना परिवार में शिक्षा के व्यवस्था कल जाइ, आर्थिक व्यवस्था कल जाइ, आ एकरा साथे साथे हमनी के समाज के भी सेवा कल जाइ या देश के सेवा कल जाइ। ई तब संभव बा जब हमनी के जौन काया बा तो निरोग होके, तो ऐसे समाज में कुछ नियम आ कानून बनावल बा जौन कि हमनी के पालन करे के चाही। देखी हमनी के जीवन में कुछ रोग ऐसा होला जवन कि एक तो ईश्वर द्वारा मानल जो कि हो जाला, आ कुछ ऐसा खतरनाक रोग बा जवन कि हमनी के लापरवाही से हमनी के ना समझ से होला, आ उ जवन बीमारी बा तवन ला इलाज बीमारी कहल जाला। मतलब हमार इशारा ई बा कि हमनी के सुरक्षित जीवन खाती सुरक्षित दाम्पत्य जीवन सेवा, मतलब कि HIV संक्रमण से बचाव कैल जाओ। आज के समय में जरूरी बा कि मतलब हमनी के कभी भी जीवन में HIV पॉजिटिव मत होखल जाओ। हालांकि ई जौन बा एड्स जौन रोग बा, ई हमनी के शरीर में जब प्रवेश करेला तो रोग प्रतिरोधक जौन क्षमता बा ओकरे पर ही हमला करेला। विशेष रूप से हमनी के CD4 जौन श्वेत रक्त कोशिका शरीर में होला ओकरा के ही नष्ट कर देवेला, जवना से कि शरीर के अन्य संक्रमण आ बीमारी से लड़े के जौन शरीर के क्षमता होला उ खत्म हो जाला। अब रह गेल कि HIV जौन फैलेला, एकर मुख्य कारण ई बा असुरक्षित यौन संबंध बनावे से। देखी श्रोता भाई, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित शारीरिक संबंध यदि कोई बनावता तो ओकरा HIV होखे के संभावना अधिक बा। ऐसे हमनी के जीवन में कोशिश करे के चाही कि सुरक्षित दाम्पत्य जीवन अपन जियल जाओ। एकरा साथे साथे कभी कभी एड्स जौन बा संक्रमित सुई अथवा इंजेक्शन से भी एक दूसरा में फैल जाला, जिससे नशीली दवाई अथवा टैटू बनावे के से भी जौन हनी के संक्रमित सुई होला, एक आदमी जौन संक्रमित बा यदि वह आदमी से सुई ले करके या टैटू बन गई ओकरा पर से फिर दूसरा में प्रयोग कर जाओ वह सुई के या टैटू जौन बनावल जाला खुद के, तो दूसरा के शरीर में प्रवेश कर सकेला। एकरा साथे साथे संक्रमित रक्त जौन बा ई ब्लड चढ़ावे से भी होला, अथवा कोई महतारी जौन HIV पहले से संक्रमित माई बाड़ी उन्हीं समझी कि गर्भावस्था में बाड़ी तो प्रसव या स्तन पान के करावे के दौरान शिशु के भी हो सकेला। तो एक तरह से हमने के कोशिश करे के चाहे कि अपन जीवन के सुरक्षित रखल जाओ। अब रह गेल कि एकरा खाती हमने के कोशिश करे के चाहे कि हर समय जे भी संक्रमित व्यक्ति बा ओकरा से बच के रह जाओ। तो देखी हमने के और चर्चा कर ली, ओकरा पहले आई थोड़ा संदेश सुन लिया।
2: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभे खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: देखी श्रोता भाई, चले गए अब थोड़ा खेती बारी हमने के अपन देख लिया कि का हाल चाल बा खेत में। तो देखी फसल संबंधी विशेष सलाह हमने के किसान भाई खाती ही बा कि मूंग के जे भी किसान भाई खेती के लिए बनी, मूंग आ उड़द के फसल में रस चूसक कीट के प्रकोप होला या कहीं कहीं पौधा में हरा फुदका सफ़ेद मक्खी अथवा थिप्स जौन कीट होला सन उ लाग जाला सन, एकरा के बचाव करे खातिर हमने के हेतु मैला थियान 50 EC चाहे डाइमेथोएट 30 EC के 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से पानी में मिला के फसल पर छिड़काव करे के चाहिए। छिड़काव तब करे के चाहिए जबकि वर्षा ना होके की स्थिति में होके। एकरा साथे साथे बहुत सा किसान भाई तोरी के खेती कैले बनी, तो फल मक्खी लत्तर मक्खी जैसन जैसे कि लत्तरदार जौन पौधा बा जैसे नेनुआ भेल करैला भेल लौका या खीरा भेल, एकरा के फल मक्खी जौन होली सन तौन नुकसान कर ली सन। एक कीट के प्रकोप तब शुरू होला जबकि 1 किलोग्राम छुआ 2 लीटर मैलाथियन 50 CC के 1000 लीटर पानी में घोल बना के 15 दिन के अंतराल पर 2 बार हमने के छिड़काव करे के चाहिए। बहुत सा हमने के किसान भाई ऐसन बने जौन भिंडी के खेती के लिए बनी, तो भिंडी के फसल पर लीप हापर कीट के प्रकोप होला, एकरा खातिर हमने के एमिडाइक्लोप्रिंट 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना के हमने के छिड़काव करे के चाहिए। भिंडी के फसल पर माइक कीट यदि लागल होगा सन तो ओकरा खातिर हमने के इथियान 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के दर से छिड़काव करे के चाहिए। गर्मा सब्जी जैसे भिंडी नेनुआ करेला लौका बा या खीरा के फसल बा तो एकर अभी हमने के निकाई या गुड़ाई कर देवे के चाहिए। एकरा साथे साथे अभी हमने के बहुत सा किसान भाई ऐसन बने जौन की पशुपालन भी कैले बनी, तो जौन पशु प्रसूति मतलब बच्चा देवे की स्थिति में होगस तो ओकरा में ओकरा यदि बुखार लागत होके तो ओकरा में खनिज मिश्रण के रूप में 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन हमने के देवे के चाहिए। दूध देवे वाला पशु के खनिज मिश्रण के 10 ग्राम प्रति लीटर दूध के दर से, गाय में 400 ग्राम दाना प्रति किलो आ भैंस के 500 ग्राम दाना हमने के हरा चारा के रूप में 20 से 25 किलोग्राम पशु जौन आहार बा ये हमने के पशु के देवे के चाहिए। तो देखी श्रोता भाई बहन लोग, अब स्टूडियो के घड़ी और अधिक कुछ कहे के इजाज़त नहीं दे, चलत चलत सब श्रोता भाई बहन लोग के रज्जू भाई के तरफ से नमस्कार।

हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम गांव घर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत।

धरती कहे पुकार के फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। पामेला जैन, कल्पना और साथियों की आवाज़ों में विनय बिहारी के लिखे गीत की धुन बनाई थी धनंजय मिश्रा ने।

ससुरा बड़ा पैसा वाला। इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे मनोज तिवारी और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। विनय बिहारी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी लाल सिन्हा ने।

इसी के साथ भोजपुरी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सांझ गीत यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4।

0: मेगाहर्ट्ज़ पर। समय मिलाइए, शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।
1: कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

0: नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से आप सबों के घर आंगन में आ गया। जैसा कि जानते हैं आप कि आज है सोमवार का दिन और आज के दिन हम कार्यक्रम लेकर आते हैं पूरे बिहार और झारखंड के एक बहुत बड़े हिस्से में युवा साथियों के लिए बुनियाद। हम चाहते हैं कि टेक्निकल पढ़ाई से उनकी बुनियाद इतनी मजबूत हो जाए जीवन की ऊंचाइयों को वो आसानी से छू सकें। भैया, आज तो टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, अपनी मर्जी का क्षेत्र चुनने का समय है, क्षेत्र भी बहुत ज्यादा है। हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। अगर आपने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है तो बहुत सारे ऑप्शन है, मेडिकल है, एग्रीकल्चर है, पैरामेडिकल है, नर्सिंग है, फार्मेसी है। ओ माय गॉड, कितने रास्ते खुल जाते हैं। इसके अलावे टेक्निकल पढ़ाई में आप मैनेजमेंट कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, लॉ कर सकते हैं, जर्नलिज्म कर सकते हैं। ढेर सारे क्षेत्र हैं जहां आप अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकते हैं। और बिहार में जिनकी तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, हमने कहा गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार, जी हाँ, ये विश्वविद्यालय है जहाँ टेक्निकल पढ़ाई कराई जाती है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बताया था कि तीन नए कोर्स आए हैं, खास करके जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है, उसमें पहला कोर्स है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी। दूसरा कोर्स है बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, हमने कहा बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। और तीसरा है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। लगातार आने वाले एपिसोड्स में इसकी जानकारी देंगे और सीट बहुत कम है। आपको अगर इसमें दाखिला लेना है तो तेजी दिखानी होगी। अपना नंबर यानी गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का नंबर हम बता रहे हैं, हाँ, आप जो है चाहे तो इस पर बातचीत कर सकते हैं। नोट कीजिए, नंबर है 9431899002। और दूसरा नंबर है 1800121001, 1800121001। ये नंबर है, इन दोनों नंबरों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल हमारे साथ बैठे हैं इस विभाग बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी पर बातचीत करने के लिए प्रोफेसर साहब, क्या हैं यहाँ गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में क्या जानकारियाँ देंगे। आइए सबसे पहले उनका परिचय लेते हैं और फिर सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं।
1: मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार है, मैं नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज का डायरेक्टर हूँ।
0: सर जी, सबसे पहले आप इसके विषय में बताइए, बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए हमारे सुनने वालों को।
1: जी, ये बीएससी इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी ये एक अलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज का एक कोर्स है, स्पेशल कोर्स है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा एक नेशनल कमीशन बना था सेंट्रल लेवल पे, उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज को उन्होंने हाईलाइट किया है, जिसके अंदर एक हमारा यह कोर्स भी है, बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी। यह एक 4 साल का कोर्स है जिसमें 3 साल की पढ़ाई और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। इस कोर्स के जो बच्चे इस कोर्स को करने के बाद वो जैसे आजकल जैसे आपको पता है कि बहुत सारे हार्ट की समस्या हो रही है, ब्लड वेसल्स की

0: प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उससे रिलेटेड सर्जरीज भी बढ़ रहे हैं। तो उन सारे सर्जरी में ऑपरेशन के दौरान उनको असिस्ट करना, सर्जन को, ये इनका रोल है। और साथ ही साथ उनको उसकी टेस्टिंग करनी, काइंड ऑफ हार्ट में या लंग ब्लड वेसल्स में कोई अगर परेशानी है उसको जांच करना, यह भी इनका पार्ट आ जाता है।
1: नीरज जी, मुझे जहां तक समझ में आया तो ये बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी ये जो कोर्स है, मैं इतना समझ पा रहा हूं कि जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, जो हृदय रोग विशेषज्ञ होते हैं, जब वो ऑपरेशन करते हैं या किसी पेशेंट के साथ होते हैं, तो ये बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी किए हुए जो बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, वो उनको असिस्ट करते हैं। जैसे ऑप्थल्मोलॉजी में आई सर्जन को जो लोग असिस्ट करते हैं तो वो पढ़ाई किए हुए होते हैं। आप अपनी तरफ से बताइए तो ज़्यादा हमें समझ में आएगा और लोगों को समझ में आएगा, क्या यही सच है?
0: ये बिल्कुल, क्योंकि आजकल आपको जैसे पता है ये बहुत सारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, और आप हर गली नुक्कड़ पे देखेंगे तो कार्डियक सर्जरी के पेशेंट्स आपको बहुत मिल रहे हैं। कार्डियक नर्सिंग होम्स भी खुले हुए हैं जहाँ कार्डियक सर्जरी हो रही है। तो ऐसे केसेस में इनकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हुई है, ताकि उनको ड्यूरिंग देयर ऑपरेशन ऑफ द पेशेंट्स दे कैन असिस्ट द सर्जन।
1: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, जी हाँ, बुनियाद कार्यक्रम है युवा साथियों। टेक्निकल पढ़ाई के विषय में जानकारी इस कार्यक्रम में हम देते हैं, और आज इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ जिन्होंने किया है उनके लिए जानकारियां हैं बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में। जी हाँ, नंबर नोट करें, अगर कार्यक्रम के बाद आपको ऐसा लगे कि हमें जानकारी लेनी चाहिए तो आप ये नंबर डायल करें 9431899002, 9431899002, और दूसरा नंबर है 1800121001, ये नंबर है। अच्छा नीरज जी, एक बात बताइए, ये जो है बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी, क्या आप ऐसा समझते हैं कि इसको कर लेने के बाद रोजगार की अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी, या रोजगार है ऐसा आपका मानना है? आप बताइए पहले, क्योंकि रोजगार मिलना पढ़ाई के लिए पहला ऑप्शन होता है। एंड ऑफ द डे हमें क्या मिला ये जरूर हम देखते हैं।
0: जी, क्योंकि जैसे पहले बताया है कि बहुत ही ज्यादा प्राइवेट नर्सिंग होम्स एंड प्राइवेट हॉस्पिटल में इनकी डिमांड तो है ही है ही, साथ ही साथ सरकारी अस्पतालों में भी इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। और जो बच्चा ये कोर्स करने के बाद अगर विदेश में अपना करियर का ऑप्शन ढूंढ रहा है, उनके लिए भी बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होती है, क्योंकि विदेशों में भी इसकी बहुत ही ज्यादा डिमांड।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। एंड ऑफ द डे रोजगार है कि नहीं यही जानना चाहते हैं लोग। हाँ, लोग में माता पिता, छोटे भाई बहन और युवा जिन्हें पढ़ना है उन्हें तो जानना ही है। कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, मैं हूँ राजेश, और इस वक्त बातचीत चल रही है बीएससी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में। कार्डियक सर्जन के साथ इनकी बहुत आवश्यकता होती है, और बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है, और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में आया है ये। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का नंबर हम बता रहे हैं 9431899002, 9431899002, और दूसरा नंबर है 1800121001। नीरज जी, एक सवाल सहज, ये लोग भी पूछते रहे हैं कि क्या गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में तरह तरह के कोर्स को इनोवेट किया जाता है, जैसे अभी बीएड स्पेशल एडुकेशन की पढ़ाई शुरू हुई है, और बहुत ही उम्दा कोर्स है वो भी, और अब तीन तरीके के ये जो कोर्स हैं आज चर्चा हो रही है बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी पर, दूसरा कोर्स है हमारा यहाँ जो अभी आया है बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडी पर, और तीसरा है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी पर। तो क्या आपको नहीं लगता है कि गोपाल नारायण सिंह लगातार ये यूनिवर्सिटी जो है स्टूडेंट के बिहाव में, स्टूडेंट के लिए कुछ न कुछ करते रहती है?
0: सर, बात यह है कि बहुत सारे कोर्सेस ऐसे भी हैं जो रोजगार वाले, रोजगार परक कोर्सेस ऐसे हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी भी नहीं होती है, और उस वैसे वैसे कोर्सेस को हमारे मैनेजमेंट, वो हमारे को वैसे वैसे कोर्सेस लाकर हमारे को बोलते हैं कि दिस काइंड ऑफ कोर्सेस वी कैन स्टार्ट विच अदर पीपल्स डू नॉट नो। और ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है कि हमें अपने मैनेजमेंट को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ ये सारे कोर्सेज भी हैं जिसको कि हमें स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑलरेडी कन्विंस्ड कि उनको पता है ये सारे कोर्सेज की बहुत ही ज्यादा डिमांड है हमारे यहाँ।
1: ये तो

0: आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, और खास करके हेल्थ सेक्टर में तो गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, दूसरे सेक्टर में भी, लेकिन यहाँ तो अपना जो हॉस्पिटल है ना, उनमें इन बच्चों के लिए भी क्या स्कोप होता है क्या, या अपॉर्चुनिटी मिलती है?
1: हमारे पास अपना एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर, क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए हमारे बच्चों को कहीं और भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो जितने भी कोर्सेज रिलेटेड टू मेडिकल एंड अलाइड हैं, वो सब अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे बच्चों को कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, साथ ही साथ उनको सीखने को सब कुछ मिल रहा है प्रैक्टिकल, और करियर अपॉर्चुनिटीज उनकी डबल हो जाए,
0: करियर अपॉर्चुनिटी दूसरे जगह की तुलना में दुगनी हो जाएगी गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में। जी हाँ, बात चल रही है टेक्निकल पढ़ाई की इस कार्यक्रम बुनियाद में, और हमेशा से, सालों से बुनियाद कार्यक्रम आ रहा है, और इसे सुनकर न जाने कितने युवाओं ने टेक्निकल पढ़ाई चुना है, चाहे वो गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में या बाहर। हाँ, हम ये कभी नहीं कहते हैं कि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटी में ये है, ब्ला ब्ला ब्ला, नहीं। आपको कहते हैं कि ये नंबर है जो हमारा 9431899002 और 1800120051 डायल करें, या गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जो है जमुहार सासाराम रोहतास बिहार में है, वहाँ आएं, देखें, पढ़ें, समझें और फिर दाखिला लें, हम ये कहते हैं। लेकिन एक बात तो एकदम डंके की चोट पर कहता है राजेश, और आज नहीं, वर्षों से कहता रहा है, बीसियों साल से, हाँ, कि युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप टेक्निकल पढ़ाई कीजिए, जिंदगी आराम से आगे बढ़ेगी। चलिए आगे आगे बातचीत का सिलसिला नीरज जी से जारी रखते हैं। प्रोफेसर साहब, ये बातें तो हो रही हैं, लेकिन हम लोग युवाओं को कहते हैं, ढेर सारी बातें होती हैं कि कहीं भी अगर जो आप एडमिशन लेने जा रहे हो, हाँ, तो दो तीन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। पहली ये कि वो कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, इसको जरूर देखना चाहिए। तो इसका जवाब तो मिल गया कि अपना गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय खुद का। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हाँ, जहां पढ़ाई होगी। और तीसरा कि टीचर्स यानी प्रोफेसर, शिक्षक गण के विषय में जानकारी जरूर ले लेनी चाहिए। क्या कहेंगे आप?
1: सर, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वेल इक्विप्ड है, और फैकल्टी जो हमारे हैं, अपने जो प्रोफेशनल है कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी के, उसके अलावा मेडिकल कॉलेज के हमारे जो प्रोफेशनल फिजिशियन हैं, वो भी हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो इसलिए हमारे को अपने फैकल्टी के साथ साथ एडवांटेज है मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी का भी, जो हमारे बच्चों की क्लासेस लेंगे।
0: नीरज जी, समय भागता चला जा रहा है और मेरी निगाहें स्टूडियो के घड़ी पर हैं, ज्यादा वक्त नहीं है। एक नया कोर्स जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, बीएससी कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी की, इसके विषय में अभी जानकारी आज हमने विस्तार से आपके साथ दी है। अगला एपिसोड भी आप ही के साथ बातचीत होगी, जो लोग हमें सुन रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे सवाल आएंगे, खास करके कि एक बार फिर बताया जाए कि कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी होती क्या है, और ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें, हाँ, हमारे युवा साथी, उनके गार्जियन ज़रूर पूछेंगे। ये भी पूछेंगे कि रोज़गार की क्या संभावनाएं, हालांकि आपने अभी जवाब दिया है बीते मिनट्स के अंदर, लेकिन हम एक बार चलते चलते एक बार फिर से कहेंगे कि रोज़गार की क्या संभावनाएं हैं, जवाब दे दें, क्योंकि लोग इसके विषय में ज़्यादा चिंतित होते हैं।
1: जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सरकारी में भी इसकी वैकेंसी निकल रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल में तो चाहिए ही चाहिए इनको, बहुत सारे छोटे छोटे नर्सिंग होम भी हैं जो कार्डियक सर्जरी कर रहे हैं, वहाँ भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है, और कई दफ़ा तो ये लोग अब इस कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स को ऑन कॉल भी बुलाते हैं, लाइक दे कैन अटैच विद मोर देन 10 or 20 हॉस्पिटल्स एंड ऑन कॉल दे कैन गो देयर एंड डू देयर ड्यूटीज। और इसके अलावा बाहर भी, विदेशों में भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, और अगर ये एकेडमिक्स में आना चाहते हैं तो दे हैव द स्कोप टू गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, एमएससी करके फिर दे कैन कम इनटू एकेडमिक्स।
0: थैंक यू नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, बीएससी इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। अगले एपिसोड में भी आपसे ही बात होगी, क्योंकि सवाल आएंगे, मुझे पता है। चलने से पहले हम नंबर बता दें, 9431899002, 9431899002, और दूसरा नंबर है 1800120051। टेक्निकल पढ़ाई को चुनिए। थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय कि आपने बुनियाद जैसा कार्यक्रम लेकर आने

0: को राजेश को मौका दिया, तो राजेश को दें इजाजत, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
2: हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

इस कार्यक्रम में आप सुनते हैं स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में। बात सबसे पहले जिला कैमूर की। कैमूर के विभिन्न प्रखंडों में कल 19 मई को आयोजित होंगे सहयोग शिविर। आम जन की समस्याओं का होगा त्वरित निपटारा। जिला प्रशासन द्वारा आम जनता की समस्याओं के त्वरित निष्पादन और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उन तक पहुंचाने के उद्देश्य से कल यानी 19 मई 2026 मंगलवार को जिले के विभिन्न प्रखंडों में सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम पूर्वाह्न 11 बजे से आयोजित किया जाएगा। इस दौरान स्थानीय ग्रामीण अपनी समस्याओं, शिकायतों और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े मामलों को लेकर शिविर में पहुँच सकते हैं। कैमूर जिले में लगातार बढ़ रहे तापमान, दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनज़र एक बड़ा फैसला लिया है। जिला दंडाधिकारी श्री नितिन कुमार सिंह द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों के समय में बदलाव करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका को देखते हुए प्रतिबंध लगाए गए हैं। प्री स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्र पूर्वाह्न 10:30 से दस बजकर तीस मिनट के बाद सभी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। सभी विद्यालय, सरकारी व निजी एवं कोचिंग संस्थान पूर्वाह्न 11:30 बजे के बाद सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियां के संचालन पर रोक रहेगी। जिला प्रशासन द्वारा जनता की समस्याओं के त्वरित निष्पादन और सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कैमूर जिले के सभी कार्यालयों में जन संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में जिला मुख्यालय से लेकर सुदूर पंचायतों तक के अधिकारियों ने हिस्सा लिया और आम नागरिकों की सीधी संवाद हुई। गणित सीखें, आत्मविश्वास बढ़ाएं। महिला एवं बाल विकास निगम बिहार तथा शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में हमारी लाड़ो कार्यक्रम के अंतर्गत कैमूर जिले की मेधावी छात्राओं के लिए गणित ज्योति शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह विशेष आवासीय शिविर गणित विषय में रुचि रखने वाली छात्राओं के लिए ज्ञान कौशल और आत्मविश्वास विकसित करने का एक उत्कृष्ट अवसर है। आज दिनांक 18/5/2026 को स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन सिविल सर्जन रोहतास की अध्यक्षता में की गई, जिसमें निम्न बिंदुओं पर समीक्षा की गई। वैसे डॉक्टर जिनका ओपीडी पूरे महीने में 500 से कम है उनसे स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया। इंजुरी का रिपोर्ट ऑनलाइन जहाँ नहीं हो रहा है उसके लिए सिविल सर्जन के द्वारा फटकार लगाई गई। SDH

डिहरी, विक्रमगंज, नासरीगंज, दिनारा, कोचस ने पुनः ट्रेनिंग देने का आग्रह किया। नील में पीएमएसए कार्यक्रम को और सुदृढ़ करने का निर्देश दिया गया, जिसमें हाई रिस्क वाली महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। सासाराम और करगहर के स्वास्थ्य उपकेंद्रों HWC पर दवाओं की उपलब्धता कम रहने पर फटकार लगाई गई तथा सुधार करने का निर्देश दिया गया। MOIC संझौली को ANC कम रहने के कारण परीक्षा की गई तथा सुधार करने का निर्देश दिया गया। और अब आइए हम आपको लिए चलते हैं गीत और संगीत की दुनिया में और सुनवा रहे हैं आंधी फिल्म का एक गीत।

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: फंसा।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: इसी के साथ सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास यहीं संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:25 हुए हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: समझ है हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222502। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
4: शुभ वाणी,
3: लाभ वाणी,
2: आकाशवाणी।
5: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रदेश में औद्योगिक निवेश का बन रहा है वातावरण, प्रवासियों से प्रदेश की समृद्धि में योगदान की अपील की। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए प्रदेश की सभी पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के जनजातीय गांवों में गरिमा उत्सव की शुरुआत, सबसे दूर सबसे पहले अभियान के तहत सरकारी योजनाओं का दिया जा रहा है लाभ। और आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश ने शुरू किया भोजपुरी बुलेटिन, प्रत्येक दिन शाम 6:05 पर होगा प्रसारण। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में औद्योगिक संरचना का विकास हो रहा है और अब लोगों को रोजगार के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पटना के गांधी मैदान में अग्निशमन वाहनों और एआई आधारित आधुनिक अग्निशमन नियंत्रण कक्ष का लोकार्पण एवं उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि प्रदेश में नए उद्योगों के लिए वातावरण तैयार हो रहा है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक घराने प्रदेश में निवेश के लिए आगे आ रहे हैं
1: और अभी तक जो इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जब एक साल का कार्यकाल एनडीए सरकार 20 नवंबर 2026 को पूरा करे तो लगभग 5,00,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस बिहार की धरती पर इन्वेस्ट कराने का काम की शुरुआत करने का काम किया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री ने प्रवासी बिहारवासियों से बिहार लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य में सुशासन की सरकार है।
1: बिहार के लोग जो बाहर में हैं, उनसे जरूर आग्रह करूंगा कि ये बिहार आपका है, अब बिहार लौटने का समय है। बिहार लौटकर आइए और बिहार, क्योंकि जन्मभूमि, इस जन्मभूमि को समृद्ध बनाना है और ये तभी बन पाएगा जब बिहार के लोग बिहार में वापस लौटकर आकर यहाँ उद्योग धंधे को स्थापित करना शुरू कर देंगे।
0: प्रदेश में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निष्पादन के लिए कल से पंचायत स्तर पर राज्यव्यापी सहयोग शिविर की शुरुआत हो रही है। 7 निश्चय 3 के सबका सम्मान जीवन आसान विजन के तहत इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं और प्रशासनिक तंत्र को सीधे जनता के द्वार तक पहुंचाना है। ये शिविर प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित की जाएगी। जन शिकायत संबंधी आवेदन देने की प्रक्रिया शिविर के 30 दिन पहले शुरू करने की व्यवस्था की गई है। वहीं शिविर के दिन भी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। राज्य सरकार ने कल से आयोजित होने वाले सहयोग शिविर को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव अरविंद कुमार वर्मा ने सभी जिलों के प्रभारी मंत्रियों और प्रभारी सचिवों को पत्र लिखकर शिविर के प्रथम दिन सहभागिता देने का अनुरोध किया है। प्रभारी मंत्री और सचिव कम से कम 3 प्रखंडों के सहयोग शिविरों में उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सहयोग कार्यक्रम के तहत प्राप्त आवेदनों का 30 दिनों के भीतर निष्पादन किया जाना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस संबंध में सचेत किया। उन्होंने कहा कि निष्पादित कार्यों की रिपोर्ट समय अवधि के भीतर नहीं देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
1: आपको अटकाना और भटकाना नहीं है। 19 तारीख से यह जब शुरुआत होगा, अगले 20 जून को 31वां दिन होगा साथियों, और जो पदाधिकारी 30 दिन में इसको ऑर्डर नहीं करेंगे, अंतरिम ऑर्डर भी नहीं करेंगे क्योंकि कई चीजें न्यायालय से जुड़े होंगे, तो 30 दिन में जो भी पदाधिकारी आदेश नहीं जारी करेगा वो 31वां दिन स्वयं निलंबित हो जाएगा।
0: भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक आज पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश संगठन महामंत्री भीखुभाई दलसानिया, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में आगामी विधान परिषद चुनाव को लेकर पार्टी और एनडीए की रणनीति तथा कोर समिति के विस्तार पर विचार किया गया। केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य

0: मंत्रालय के तत्वावधान में आज से प्रदेश भर में जनजातीय गरिमा उत्सव की शुरुआत हो गई है। जन भागीदारी राष्ट्रव्यापी अभियान सबसे दूर सबसे पहले के तहत विभिन्न जिलों में जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: जनजातीय गरिमा उत्सव के तहत 25 मई तक विभिन्न चयनित प्रखंडों में शिविर लगाकर जनजातीय समुदाय के लोगों को राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। शिविर में पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बैंक खाता जैसी योजनाओं से वंचित परिवारों को चिन्हित कर सहायता दी जाएगी। इस कड़ी में रोहतास जिले के 5 प्रखंडों के 19 गांवों में शिविर की आज से शुरुआत हुई। जिलाधिकारी उदिता सिंह ने उत्सव का उद्घाटन किया।
2: पहले दिन हम लोग मेडिकल कैंप लगाया जाएगा और फिर 19 तारीख से 25 तारीख हम लोग डोर टू डोर विजिट करेंगे जनजाति बहुल्य गांव में, और हर एक घर में जो भी सरकार की योजनाओं से जो भी वंचित हैं या बैंक अकाउंट उनका नहीं है तो वो सैचुरेशन मोड में उनको प्रोवाइड किया जाए। तो ये हम लोग का 18 से लेकर 25 तक ये चलेगा। जो जनजाति बहुल्य गांव है उनके हर एक घर में हम लोग के कर्मी जाएंगे और हर प्रकार का जो सरकारी सहायता मिल रहा है, सरकारी योजना चल रही, हर योजना का लाभ हर परिवार को मिले, यही हमारा उद्देश्य।
1: सिवान जिले के आंदर प्रखंड के 31 जनजातीय टोलों में राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत घर घर जाकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। वहीं मुंगेर के हवेली खड़गपुर, बरियारपुर और धरहरा प्रखंड के 20 चयनित गांवों में विशेष शिविर के माध्यम से पात्र लाभुकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अन्य जिलों में भी इस उत्सव की शुरुआत हो गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से निधिश्री।
0: केंद्रीय सूक्ष्म और लघु उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि जनजातीय गरिमा महोत्सव के तहत जन भागीदारी अभियान से आदिवासियों को काफी लाभ होगा। श्री मांझी ने गया के समाहरणालय सभागार में अभियान का शुभारंभ करते हुए कहा कि आदिवासी समुदाय का देश के संसाधनों पर पहला अधिकार है। इस अवसर पर उन्होंने जनजातीय समूहों के चयनित लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना और वनाधिकार अधिनियम के तहत जमीन का पट्टा प्रदान किया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: कहाँ चलती है? इधर तो आओ।
4: इधर आइए, इधर।
5: इधर?
4: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
6: शुभवाणी,
5: लाभवाणी,
6: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_पटना को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट में जारी गतिरोध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि मुश्किलों के बावजूद देश में सभी रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार हमारे पास मौजूद है।
7: स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो सिचुएशन है वो नॉर्मल नहीं है, जिसकी वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें क्रूड और बाकी नेचुरल गैस एलपीजी के प्राइसेस में बहुत उछाल देखा जा रहा है, और इस सब के चलते हमारा जो इंपोर्ट है क्रूड एलपीजी और नेचुरल गैस का वो भी अफेक्ट हुआ है। परंतु हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर है और हमारे पास सफिशियंट क्रूड इन्वेंट्रीज है। अगर प्रोडक्ट का सप्लाई देखें तो पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं।
0: एनटीपीसी की बाढ़ इकाई सौर ऊर्जा आधारित नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रही है। एनटीपीसी के परियोजना प्रमुख सत्य रामकृष्ण ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि इसके तहत उपभोक्ताओं को 4 मेगावाट तक सोलर एनर्जी की आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि

0: अतिरिक्त बिजली को बैटरी में संग्रहित किया जाएगा और जरूरत के अनुसार उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा। आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से आज से भोजपुरी समाचार का प्रसारण शुरू कर दिया गया है। आकाशवाणी के पटना केंद्र समेत राज्य के विभिन्न केंद्रों से आज शाम 6:05 पर प्रथम भोजपुरी बुलेटिन का प्रसारण किया गया। इस अवसर पर वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। श्री कुमार ने आंचलिक भाषा में समाचार प्रसारण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है।
1: बहुत दिन से मांग चलत रहा कि भोजपुरी भाषा में बुलेटिन शुरुआत हो, जौना के शुरुआत आज भइल बा। ऐसे कि जन जन तक ये बात पहुंची और भोजपुरी बहुत लोग बोलेला, बिहार के साथ साथ विदेश में भी लोग बोलेला। ये जो काम भइल बा ये बड़ा बधाई के पात्र बा। भारत सरकार के हम बधाई देते बानी, बिहार सरकार के बधाई देते बानी, और ये आकाशवाणी के जितना भी अधिकारी लोग बा सब लोग के जो सोच बा ओकरा के सैल्यूट कर देने कि इतना अच्छा काम के अच्छा से हम सुननी भी है। जन आज प्रसारण भइल 5 मिनट के बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: इस अवसर पर आकाशवाणी पटना के केंद्राध्यक्ष एचडी सिडाम, उप निदेशक सह समाचार प्रमुख अजय कुमार, समाचार संपादक डॉक्टर सविता पारीक और निधि श्री समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। भोजपुरी समाचार बुलेटिन को न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुना जा सकता है। इसके अलावा यह प्रादेशिक समाचार एकांश के यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज _ पटना पर भी उपलब्ध होगा। गौरतलब है कि आकाशवाणी पटना से पहले से ही हिंदी, उर्दू और मैथिली भाषा में प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों का प्रसारण किया जा रहा है। राज्य के अधिकतर हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के 10 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान रोहतास, भभुआ और बक्सर जिले में लू चलने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।
2: दिनांक 19 मई राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के भभुआ, बक्सर एवं रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है।
0: विभाग ने पूर्वानुमान में कहा है कि पटना, नालंदा, जहानाबाद, जमुई, मुंगेर, औरंगाबाद समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भागों में अधिकतर स्थानों पर मौसम शुष्क बना रहेगा और अधिकतम तापमान में औसतन 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की जा सकती है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज बिहार दौरे पर पटना पहुंचे। श्री मान ने तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब में मत्था टेका और देश प्रदेश में सुख शांति की प्रार्थना की। गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की ओर से उन्हें सिरोपा भेंट कर सम्मानित किया गया। पटना स्थित नियोजन भवन में कल पूर्वाह्न 11 बजे से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। राज्य सरकार के युवा रोजगार एवं कौशल विकास के तत्वावधान में आयोजित मेले में 12वीं पास 18 से 40 वर्ष के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने योग्य अभ्यर्थियों से मेले में शामिल होकर लाभ उठाने की अपील की है। शेखपुरा जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत लोदीपुर गांव में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की एक दर्जन से अधिक छात्राओं की आज अचानक तबीयत बिगड़ गई। इन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने बताया कि गर्मी के कारण छात्राओं की तबीयत बिगड़ी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 2 दिन पहले भी जिले के एक स्कूल में प्रार्थना सत्र के दौरान 27 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई थी। केंद्रीय खनन एवं कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद दुबे ने आज नरकटियागंज रेलवे स्टेशन से दरभंगा जाने वाली नई मेमू सवारी गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पूर्वी चंपारण जिले के आदापुर थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने चोरी की 2 मोटरसाइकिल के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रदेश में औद्योगिक निवेश का बन रहा है वातावरण। प्रवासियों से प्रदेश की समृद्धि में योगदान की अपील की। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए प्रदेश की सभी पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के जनजातीय गांवों में गरिमा उत्सव की शुरुआत। सबसे दूर सबसे पहले अभियान के तहत सरकारी योजनाओं का दिया जा रहा है लाभ। और आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश ने शुरू किया भोजपुरी बुलेटिन। प्रत्येक दिन शाम 6:05 पर होगा प्रसारण। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: इधर आइए, इधर।
4: इधर?
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए, और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021।
6: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, प्रस्तुत है पटना जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष रंजन।
7: पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली बिहार सरकार के मंत्रिमंडल का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस विशाल समारोह में 30 से अधिक मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा जदयू प्रमुख नीतीश कुमार सहित एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। समारोह के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भी उपस्थिति देखने को मिली। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से 19 मई से प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को पंचायतवार सहयोग शिविर लगाए जाएंगे। पटना जिले के विभिन्न प्रखंडों की 40 पंचायतों में ये शिविर आयोजित होंगे। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि शिविरों में प्राप्त आवेदनों का निष्पादन 30 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा।
8: आपको अटकाना और भटकाना नहीं है। 19 तारीख से यह जब शुरुआत होगा, अगले 20 जून को 31वां दिन होगा साथियों, और जो पदाधिकारी 30 दिन में इसको ऑर्डर नहीं करेंगे, अंतरिम ऑर्डर भी नहीं करेंगे, क्योंकि कई चीजें न्यायालय से जुड़े होंगे, तो 30 दिन में जो भी पदाधिकारी आदेश नहीं जारी करेगा वो 31वां दिन स्वयं निलंबित हो जाएगा।
7: जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत जिले में मकान सूचीकरण और आवास गणना का कार्य तेजी से जारी है। यह अभियान 2 मई से शुरू होकर 31 मई तक चलेगा। जिलाधिकारी ने सभी वरीय नोडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पदाधिकारियों, प्रगणकों और पर्यवेक्षकों के साथ नियमित समीक्षा बैठक करने का निर्देश दिया है। खराब प्रदर्शन करने वाले 4 अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कार्य में तत्काल सुधार लाने को कहा गया है। एम्स पटना के द्वितीय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को डिग्री एवं मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि एम्स जैसे सम्मानजनक संस्थान से पास होकर स्वास्थ्य क्षेत्र में समाज सेवा करना ही सबसे बड़ी करियर ग्रोथ मानी जाती है।
9: एक तो होता है कि अपने प्रोफेशन में बढ़ोतरी करना, करियर ग्रोथ करना, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली रिसर्च करें आप, एनालिसिस करें आप, बहुत कॉम्पिटेंस पाए, बट एज बिफोर जो इंपॉर्टेंस होती है समाज को वापस देना, नॉलेज ज्ञान प्राप्त इंसान करता है टू गिव बैक टू सोसाइटी। जहां पर भी आपको वो चांस मिले उसको वापस देने का, उसको उससे मुकरिएगा मत।
7: पटना के मीठापुर स्थित कृषि भवन सभागार में एग्री स्टैक फार्मर रजिस्ट्री के द्वितीय चरण का शुभारंभ कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया। इस दौरान जिले के सभी अंचल के किसानों के लिए फार्मर आईडी निर्माण की शुरुआत भी की गई। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया विजन के तहत यह पहल किसानों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अपराध नियंत्रण को लेकर पटना पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। बेटा थाना क्षेत्र में एसटीएफ और पटना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान पुलिस मुठभेड़ में दो वांछित अपराधी घायल हो गए, जबकि एक अन्य अपराधी को गिरफ्तार किया गया। एसएसपी कार्तिकेय कुमार शर्मा ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में गिरफ्तार अपराधियों ने एक पूर्व हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है।
1: जब इनसे पूछताछ किया गया तो बताया कि ये एक बड़ी घटना वर्चक में करने जा रहे हैं, इसके लिए ये हथियार यहाँ पर बेटा थाना क्षेत्र के एरिया में रखे हुए हैं। हथियार की रिकवरी के लिए जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे दोनों के द्वारा अवधेश साहु उर्फ विदेशिया और पप्पू राय, इनके द्वारा फायरिंग किया गया पुलिस के ऊपर। पुलिस के द्वारा इनको रोकने का प्रयास किया गया और आत्मरक्षा में कंट्रोल फायरिंग करते हुए इनको रुद्ध किया गया, जिसमें इन दोनों के पैर में गोली लगी है। गोली लगने के तुरंत बाद इन लोगों को उपचार हेतु हॉस्पिटल भेज दिया गया है, जहां ये उपचाररत है। जो तीसरा व्यक्ति है दीपक कुमार, उसे अंडक दिया है और इन तीनों को अभी वहाँ पर इलाज करा के फिर आगे कार्रवाई की।
0: जिले में हाल के दिनों में हुई तेज

0: रोकने का प्रयास किया गया और आत्मरक्षा में कंट्रोल फायरिंग करते हुए इनको युद्ध किया गया, जिसमें इन दोनों के पैर में गोली लगी है। गोली लगने के तुरंत बाद इन लोगों को उपचार हेतु हॉस्पिटल भेज दिया गया है, जहाँ ये उपचाररत है। जो तीसरा व्यक्ति है दीपक कुमार, उसे अंडर किया है और इन तीनों को अभी वहाँ पे इलाज करा के फिर आगे कार्रवाई की।
1: जिले में हाल के दिनों में हुई तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का असर जनजीवन और कारोबार पर भी पड़ा है। बिजली बाधित रहने, जल जमाव और ट्रैफिक अव्यवस्था के कारण शहर के प्रमुख बाजारों में व्यापार प्रभावित हुआ। ग्रामीण इलाकों में भी मौसम की मार देखने को मिली है। आम और मौसमी सब्जियों की फसल को नुकसान पहुंचने की सूचना प्राप्त हुई है। इसे देखते हुए उद्यान और कृषि विभाग ने सभी प्रखंड स्तरीय अधिकारियों को सर्वे कर वास्तविक क्षति का आकलन करने का निर्देश दिया है।
2: अभी आप सुन रहे थे पटना जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता आशीष रंजन।
3: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है, प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज सुनिए तनु गांगली के स्वर में गीत।

आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद।

सुनने वाले आप तमाम श्रोता दोस्तों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ हूँ मैं, आपका अपना ओम प्रकाश जी। नमस्ते।

आज इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं हमारे ये श्रोता, फुटानी चौक नरहन स्टेट समस्तीपुर से ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, गुंजन, छोटू, अमित, सुमित, अमन परासर, आराध्या और लल्लू पंडित, भूपाल बाड़ी उदयपुर राजस्थान से ललित चौरड़िया और स्नेहलता जैन, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाहकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मुरहेरकर और नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से आप हैं अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी जी और पायल जोशी। आप सबों की पसंद पर हम अपने तमाम श्रोता दोस्तों तक पहुंचा रहे हैं खिलौना फिल्म का ये गीत।

गांव फरांसी, जिला हिसार से आप हैं राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, सौरभ डुड्डी। आप सबों की पसंद पर हम अपने तमाम श्रोता दोस्तों को सुनवा रहे हैं धर्मवीर फिल्म का एक गीत। जिस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोताओं की लिस्ट में ये भी शामिल हैं, पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश, दतरंगी से भगवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा, और आप हैं अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला श्याम कुंवर, नटखट आसमा, दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री श्याम कुंवर, टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से। ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से आप हैं कारी राय कारी, मीना कारी, पुंजराज, आरती, आकर्षण, जयश्री और सकीबा, आलिया, इब्राहिम, कमाल, मिराज, निसार, पंकज कुमार, आकाशी, सासाराम से।

अपना जो कुछ है सब आधा आधा है, दुख सुख के हम साथी है ये वादा है। अपना जो कुछ है सब आधा आधा है, जो ये सच्चा वादा है तो सब कुछ आधा आधा है तो। अरे रानी माँ से मुझको भी ममता।

ई मनपसंद कार्यक्रम में अब जो हमारे श्रोता शामिल होने वाले हैं, उनके मेल से ये लगता है कि इनका दिल लगता ही नहीं है। चलिए, तो हमारे ये प्रिय श्रोता दोस्त हैं और इनका दिल नहीं लग रहा है, तो हमारा काम है और हम चाहते हैं कि इनका दिल लगने लगे, और फिलहाल तो हम चाहते हैं कि इनका दिल हम ही से लग जाए, और कोशिश यही है कि इनका दिल लगे, और वो इसलिए कि इनकी ख्वाहिश हम इन तक पहुंचा दें, तो हमें बहुत उम्मीद है कि इनका दिल लगने लगेगा। तो ये श्रोता हैं, पहले ये बता दें कि ये कहाँ के श्रोता हैं, इनका नाम क्या है,

ये नगर पंचायत दिनारा से हैं। नाम है जयराम सिंह, सुषमा सिंह, कंचन मिश्रा, श्वेता रानी पांडे, रुचि पांडे, मदनेश्वर सिंह, प्रभात कुमार, पुरुषोत्तम, सौरभ, अर्पित, हर्षित, वैभव, सीता मुनि देवी, जयराम बिंद और वीरेंद्र पांडे। आप सबों की ख्वाहिश है कि आपको इज्जत फिल्म का एक गीत सुनवाया जाए, तो लीजिए। आपके साथ हम अपने तमाम श्रोता दोस्तों तक पहुंचा रहे हैं इज्जत फिल्म का ये खूबसूरत गीत।

अब आइए सुना जाए फर्ज फिल्म का एक गीत, पसंद आप समो की है। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा।

वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से हुसैन प्रिंस, डाक बाबू बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, क्वाथ बिहार से शेख जफर हसन, नरगिस जफर, कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निकहत प्रवीण। आप सबों की पसंद पर हम तमाम श्रोता दोस्तों तक पहुंचाने जा रहे हैं फ़र्ज़ फिल्म का ये गीत।

छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से अहमद भाई फूलवाले दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूलवाले, इमरान अहमद फूलवाले कापस हेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आप हैं बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी राबिया मंतशा, आशु अहमद फूलवाले लखमिनिया जिला बेगूसराय से शमी अहमद राइन, अखलाक अहमद फूलवाले और फूलवाले परिवार के सभी सदस्य। आप सबों की पसंद पर हम सुनवा रहे हैं अपनापन फिल्म का ये गीत।

लीजिए श्रोता दोस्तों, अब इस कार्यक्रम में मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ का एक खूबसूरत जादू हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, जिसे हमने चुना है फिल्म धरती से। इसके लिए मेल हमें मिले हैं ओल्ड लिसनर्स राजनगर कांति निकेतन से। भेजने वाले हैं हमारे श्रोता दोस्त कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, रुद्र गुप्ता, रिद्धि गुप्ता, ऐशबाग लखनऊ से, मुकेश गुप्ता, रानी गुप्ता, कुसुम गुप्ता, नीलम गुप्ता और रूपा इलाहाबादी।

रोटी फिल्म का ये गाना सुनिए, पसंद आप सबों की है। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद, नसीम पलक लुबना और यश मंसूरी।

हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे, अंबेडकर चौक वाकोड़ी से उत्तम जमदाड़े और स्वराज जमदाड़े। आप सबों की पसंद है आज की फिल्म का ये गीत।

इस गीत को सुनना चाहते हैं करणवीर हाउस भुजो कैंचिया भटिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा मनजीत कौर जोड़ा करणवीर करण दपिंदर वरिंदर कुलदीप सीमू एकम दमन और अभिजोत। बक्सर बिहार से आप हैं शरफुद्दीन अंसारी फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य अभयानंद आर्य और परमानंद आर्य। समस्तीपुर बक्सर से राज एसडी अंसारी माफ़ कीजिएगा सारिमपुर बक्सर से राज एसडी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। गढ़नोखा लालगंज रोहतास से राजकिशोर सिंह बड़क सिंह। ग्राम खरवत गढ़नोखा से मोतीलाल गुप्ता लाल बिहारी सिंह विजेंद्र पासवान और इनके ढेर सारे दोस्त।

इस गीत को सुनना चाहते हैं पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बेन शाह और राजेंद्र जी शाह।

0: इसी के साथ ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मन पसंद यहीं संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचार संध्या।
1: नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गॉर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2

0: जांच आयोग गठित किए और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनास गोरस्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
1: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्वभर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यह सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन के उनके यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। यह यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों

0: से भी बातचीत करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 और 20 तारीख को इटली में होंगे। यह दौरा 5 देशों की यात्रा का अंतिम चरण है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुँच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण

0: पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह पांच देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, एआई साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले पांच वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे में अमरीकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमरीका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमरीका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
3: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
1: इस बीच सरकार ने YouTube के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और

महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए दो जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नाशिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है भोजपुरी लोकगीत का कार्यक्रम लोकधारा।

लोकधारा में अभी आप सुन रहे थे टुक्कू पाठक को, और अब आइए सुनते हैं नीलेश्वर मिश्रा की आवाज में ये भोजपुरी लोकगीत।

श्रोता दोस्तों, आप सबों ने अपने रेडियो और मोबाइल सेट को ट्वीन किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर, यानी आकाशवाणी का सासाराम केंद्र, और इस वक्त आप सुन रहे हैं भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। आइए अब हम आपको सुनवाएं ये भोजपुरी गीत।

0: आकाशवाणी पटना रउआ सभे खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभे खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।
1: इसी के साथ भोजपुरी लोकगीतों का ये कार्यक्रम लोकधारा यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम बंदगी।

0: वलियों का करम एल्बम का ये हमद अभी आप सुन रहे थे। राजा और सोनू अली खां और इनके साथियों की आवाज़ों में तस्लीम खां के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी आनंद राज आनंद ने।
1: आकाशवाणी पटना रउआ सभी खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभी खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।

सोनू अली और विधि शर्मा को सुनिए। तस्लीम खां के लिखे इस गीत की धुन बनाई है आनंद राज आनंद ने और एल्बम का नाम है वलियों का करम।

इसी के साथ बंदगी कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: तुमको मुझसे प्यार है। बागों में बहार है।
1: वो जो बहुत खूबसूरत हैं, चुलबुली हैं, भोली हैं, भोले भोले चेहरे से बड़ी सहजता से संवाद बोल देती हैं, जो कभी सहनायिका थी अभिनेता राजेश खन्ना की। प्यारी भोली मासूम आवाज में बोलने वाली फनकार, आज उन्हीं पर केंद्रित है हमारा ये कार्यक्रम। इनका नाम है फरीदा जलाल।

0: प्यार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: अगर आपने फिल्म आराधना देखी होगी तो इस दृश्य को जरूर देखा होगा। इनके साथ अभिनेता थे राजेश खन्ना। इस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था। फरीदा जलाल का फिल्मी कैरियर सन 1967 से फिल्म तकदीर से शुरू हुआ।

सन 1949 में फरीदा जलाल का जन्म हुआ था नई दिल्ली में। शुरू की युवा आयु में जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो इन्होंने कई फिल्मों में अलग अलग भूमिकाएं की, सखी के रूप में, बहन के रूप में, और ये भूमिकाएं सराही गईं। फिल्म तकदीर में गोपाल की छोटी लड़की की भूमिका निभाई।

0: चर्चित फिल्में बहारों की मंजिल 1968 में, महल 1969 में, आराधना पुरस्कार, नया रास्ता 1970 में, गोपी देवी, पारस में बेला देवी नाम से भूमिका को जीवंत किया और इस फिल्म पारस के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का इन्हें अवार्ड दिया गया। एक और पुरस्कार इन्हें दिया गया BFJA अवार्ड। इस फिल्म में अभिनेता संजीव कुमार की बहन की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाई थी। आइए सुनते हैं पारस फिल्म का गाना।
1: अरे या, या, या, या।

हीरा बॉबी, जिसमें इन्होंने चरित्र अभिनेत्री के रूप में काम किया, जिसे फरीदा जलाल ने बहुत ही सहजता से निभाया। बॉबी फिल्म में एक ऐसी धनी लड़की की भूमिका निभाई जो मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। उस अमीर लड़की को हीरो पसंद इसलिए करता है क्योंकि उसके पिताजी चाहते हैं कि इस अमीर लड़की से उनका बेटा शादी कर ले। फिल्म में पारस के बाद इन्हें एक और पुरस्कार दिया गया, फिल्म मजबूर के लिए, यानी कि मजबूर फिल्म की कहानी सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखा था। अभिनेता अमिताभ बच्चन इसमें हीरो थे। इस फिल्म में फरीदा जलाल ने उनकी बहन की भूमिका निभाई थी। बहुत ही बेबसी और मजबूरी का अभिनय किया था फरीदा जलाल ने, जो बहुत लाजवाब था।

फरीदा जलाल ने 40 वर्ष की उम्र तक सिने जगत में अभिनय किया। 1983 और 1990 के बीच में फिल्मों से ब्रेक लिया और बेंगलोर जाकर शिफ्ट हो गईं। 1990 वर्ष के दौरान फरीदा जलाल ने अपना फिल्मी करियर फिर से शुरू किया और कई मेजर हिट फिल्म में चरित्र अभिनेत्री का किरदार निभाया। 1991 में हिना फिल्म में बीबी गुल की भूमिका निभाई और इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड से नवाजा गया। 1991 के बाद भी कई फिल्में आईं जिसमें इन्होंने तरह तरह की चरित्र अभिनेत्री की भूमिका निभाई। फिल्म पायल, बेखुदी, कल की आवाज, दिल आशना है। 1993 में गर्दिश। सन 1994 में फिल्म आई थी मम्मो, जिसमें फरीदा जलाल ने महमूदा बेगम अनवर अली

उर्फ मम्मू का किरदार निभाया था। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, बहुत ही दमदार अभिनय था। इस फिल्म के लिए फरीदा जलाल को 2 अवार्ड मिले, एक तो फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए और दूसरा अवार्ड बंगाल की जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया। सन 1995 में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म रिलीज हुई, जिसमें लाजवंती यानी लाजों की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाया और इन्हें अवार्ड दिया गया फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का।

सन 2000 में हे राम फिल्म में कस्तूरबा गांधी की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाई। इस भूमिका को बहुत सराहा गया। यही फिल्म हिंदी और तमिल में साथ साथ बनाई गई। ये फिल्म थी हे राम। सहनायिका बहन, पत्नी, माँ, धाई माँ, दादी माँ, इस तरह की भूमिकाएं आगे चलकर फरीदा जलाल को मिली और सभी भूमिकाओं में इन्होंने अपने खास अंदाज में जान फूंक दी। सन 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर, 2015 तक अनेक चरित्रों को पर्दे पर इन्होंने साकार किया। सन 2012 में फरीदा जलाल को ए ग्रैंड प्लान फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया हार्लेम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल।

1990 के बाद की कई फिल्में बहुत चर्चित रही। फिल्म राजा हिंदुस्तानी, कहो ना प्यार है, कभी खुशी कभी गम। फरीदा जलाल ने कई टेलीविजन सीरियल में भी काम किया जिसमें देख भाई देख हिट सीरियल था। फरीदा जलाल ने कॉमेडी रोल भी अदा किए। थोड़ा जादू थोड़ी नजाकत, इसमें आपने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया, यूं कह सकते हैं कि लीडिंग रोल था। सन 2005 में मुंबई में 50वें फिल्म फेयर अवार्ड के स्टेज पर इन्होंने एंकरिंग की। साथ में थे सैफ अली खान और सोनाली बेंद्रे। पंजाबी फिल्म यारिया में एक विशेष भूमिका में फरीदा जलाल नजर आई। सन 1978 में इनका विवाह एक्टर तब्रेज बर्मावर के साथ हुआ जो कि भटकल के थे। इन दोनों की मुलाकात फिल्म जीवन रेखा की शूटिंग के दौरान हुई थी और दोनों में प्यार हो गया और फिर इन्होंने शादी कर ली। फिल्म आराधना के बाद जीवन रेखा इनकी दूसरी फिल्म थी जिसमें इन्होंने हीरोइन की भूमिका निभाई थी और साथ में थे उनके पति तब्रेज। इस फिल्म का एक गाना बहुत ही मकबूल हुआ।

जलाल का एक बेटा है यासीन। अभिनेत्री फरीदा जलाल के अभिनय को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। फरीदा जलाल हमेशा उन्नति करें। हम सब विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें शुभकामनाएं देते हैं।

आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित था अभिनेत्री फरीदा जलाल पर। शोध, आलेख और स्वर शहनाज अख्तरी का। कार्यक्रम का संपादन किया आकांक्षा सिंह ने। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। आज के फनकार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओ पी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओ पी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती।
2: हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे आकाशवाणी मुंबई का प्रसारण विविध भारती के कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है हिंदी एल्बम सॉन्ग्स का कार्यक्रम रसरंग।

आकाशवाणी पटना रउआ सभे खातिर लेके आ रहल बा भोजपुरी में समाचार। आकाशवाणी पटना 18 मई से रउआ सभे खातिर भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण करे जा रहल बा। इस समाचार बुलेटिन रोज शाम 6:05 से सुनल जा सकेला।

रसरंग कार्यक्रम में विज्ञापन से पहले अभी आप सुन रहे थे आओ इस करें एल्बम का ये गीत सुनिधि चौहान की आवाज़ में। और अब आइए अब के बरस एल्बम का एक गीत सुना जाए। सुनीता राव की आवाज़ है, श्याम अनुरागी हैं गीतकार और संगीतकार हैं आनंद राज आनंद।

अब के बरस एल्बम का ये गीत अभी आप सुन रहे थे सुनीता राव की आवाज़ में। रसरंग कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं ये गीत।

अबीदा के गाए इस अबीदा परवीन के गाए इस गीत के साथ ही गैर फिल्मी हिंदी गानों का ये कार्यक्रम रसरंग यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हिंदी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम चित्रपट तराने।

सुनने वाले आप तमाम श्रोता दोस्तों का चित्रपट तराने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बस तुरंत की बात है, बीते हुए लम्हों में नहीं तो बीते हुए समय में, बीते हुए कल में। जरूर आपके आसपास भी, या आपके घर भी, या आपके गांव में, आपके शहर में गाजे बाजों की शोर जरूर सुनाई दी होगी, है ना? मिठाइयां बटी होंगी, आप भी झूमे होंगे, आपके साथ लोग भी खुशियों में झूमे होंगे। बहुत मजा आया ना? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पिछले दिनों शादियों का जो माहौल था, बहुत खूबसूरत जैसे चांद।

जमी पर रोज रोज उतर रहा हो, है ना। कहीं मंच सजे थे तो कहीं पंडाल सजे थे, और कहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में गाजे बाजे के साथ मिठाइयाँ बांटी जाती थी, लोग बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। तो आज का ये कार्यक्रम समर्पित है और उन नए जोड़े की शान में हम प्रस्तुत कर रहे हैं आज का ये कार्यक्रम चित्रपट तराने। दो दिल मिले, दो वंश मिले, सपनों ने श्रृंगार किया, दो परिवारों ने संग चलना स्वीकार किया। दिल से दिल तक जो बंधन है, प्यार का वो अद्भुत संयोग है, हर फेरे में हो खुशियों की बरसात, बस बस यही है शादी की सबसे बड़ी सौगात।

ये प्यार का बंधन है, दो दिलों का मिलन है, बना रहे ये रिश्ता जन्मों जन्मों तक। इसी दुआ के साथ शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ तमाम नए जोड़ों की। हैप्पी मैरिड लाइफ।